सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि तदनुसार 10 मई सन 2026 सुबह के 7:01 हुए हैं। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए बताते हैं आपको आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। जीवन सौरभ कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा अब से कुछ ही देर के बाद, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे भगवान बुद्ध के सुविचार। 7:10 का समय रहेगा अक्षय निधि कार्यक्रम का। इन दिनों आप सुन रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल से वाचन। आज आप सुनेंगे सूक्त 107। 7:20 का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। वतन का राग, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे। श्रोताओं, आज ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा महादेव विनायक रानाडे की शहादत पर। दादी नानी की कहानियां आप सुनेंगे बाल सभा कार्यक्रम में सुबह 8:30 से। 9 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम टेक गुरु का, जिसमें आज आप सुनेंगे साइबर क्राइम विषय पर बातचीत। विशेषज्ञ होंगे शिवेंद्र कुंभकार। भारत पाकिस्तान युद्ध का 1971 भाग 2, ये सुनेंगे आप हमारी सेना हमारा गर्व कार्यक्रम में। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से पूर्वाखली की चर्चा को सुना जा सकेगा सुबह 9:30 से। दिन में 10 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम देश के संस्थान का। आज आप सुनेंगे रेडियो नाटक सरहदों की अटूट ढाल भारतीय थल सेना। पर समय होगा कार्यक्रम आजाद हिंद का। ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा लाला लाजपत राय पर। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां आप सुनेंगे परिक्रमा कार्यक्रम में दिन में 11 बजे से। और 11:30 पर होगा कार्यक्रम काव्य कुंजन, जिसमें आप सुनेंगे यशोधरा का भाग 2। तो श्रोताओं, ये थे हमारे प्रमुख कार्यक्रम जिन्हें आज आप सुनेंगे रेडियो आजाद हिंद से। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ। हम इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं भगवान बुद्ध के सुविचार।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ। भगवान बुद्ध के सुविचार। अगर आप अपने जीवन में असफल हैं, तो इसका यह अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। जिस प्रकार मोमबत्ती आग के बिना जल नहीं सकती, उसी प्रकार मनुष्य भी बिना आध्यात्मिकता के नहीं जी सकता। आप अपनी स्वयं की क्षमता से कार्य करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। अगर आप पानी को हाथ से पकड़ोगे, तो आपके हाथ से छूट जाएगा, इसीलिए उसे बहने दो, क्योंकि वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। उसी प्रकार जब आपको अपने जीवन में घटित होने वाली परिस्थितियां समझ में ना आए, तो शांत और तटस्थ भाव से उसे देखें, क्योंकि समय आने पर वो अपना मार्ग स्वयं बना लेगा। भगवान बुद्ध के सुविचार। इन सुविचारों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जीवन सौरभ।

0: भगवान बुद्ध के सुविचार अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीवन सौरभ में। सुबह 7:08 हुए हैं। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 107 से वाचन। ऋषि हैं कुत्सांगिरस, देवता हैं विश्वेदेवा, छंद त्रिष्टु।
2: यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृणयन्तः आ वोर्वाची सुमतिर ववृत्या दंहोश्चिद्या वरिवो वित्तरासत। यज्ञ देवगणों के लिए सुखदायक हैं। हे आदित्यगण, आप हमारे लिए कल्याणकारी हों। आपकी श्रेष्ठ विवेकशील प्रेरणा हमें प्राप्त हो, जो हमें कष्टों से संरक्षित करते हुए श्रेष्ठ संपदा प्रदान करे। उपनो देवा अवसा गमन्त्वंगिरसाम सामभिः स्तूयमानाः इन्द्र इन्द्रियैर् मरुतो मरुद्भिरादित्यैर् नो अदितिः शर्मयंसत। अंगिराओं के सामो गेय मंत्रों से प्रशंसित हुए सभी देवता संरक्षण साधनों से युक्त होकर हमारे यहाँ आगमन करें। इंद्रदेव अपनी शक्ति सामर्थ्यों, मरुत अपने वीरों तथा अदिति अपनी आदित्य शक्तियों के सहित हमें सुख प्रदान करें। तन्न इंद्रस्तद वरुणस्तद अग्निस्तद अर्यमा तत्सविता चनोधात। तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदिति सिंधुः पृथ्वी उत द्यौः। इंद्र, वरुण, अग्नि, अर्यमा और सूर्य देवगण हमारे लिए मधुर अन्न प्रदान करें। हमारी कामना को मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक आदि देव अनुमोदित करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने ऋग्वेद के प्रथम मंडल की सूक्त 107 को सुना। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल से सूक्त 107 का वाचन।

हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। 7:12 हुए हैं, आप समय मिला सकते हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत।

भगवान के प्रति श्रद्धा का अर्थ है उन पर अटूट विश्वास, प्रेम और समर्पण रखना, जो जीवन में संतोष और आत्मिक शांति लेकर आता है। इसे विकसित करने के लिए कर्मों को ईश्वर को समर्पित करें, नियमित सुमिरन करें और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करें। सच्चा विश्वास ही श्रद्धा का मूल है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है।

हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करें। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उसे उनकी इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए।

श्रद्धा, जिसमें अक्सर भगवान की महानता के सामने हमारी अपनी तुच्छता की भावना सम्मिलित है। ईश्वर के प्रति गहरा सम्मान, विस्मय और अक्सर डर का एक संकेत, प्रेम और प्रशंसा के साथ मिला हुआ भगवान की ओर हमें निर्देशित करता है।

रेडियो आजाद हिंद से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत। श्रोताओं, श्रद्धा का भाव अनायास ही हृदय में उत्पन्न नहीं होता। पवित्र शास्त्र इसी क्षणिक भावना या मन के उतार चढ़ाव के साथ आने जाने वाली तीव्र भावना के रूप में भी नहीं देखता। श्रद्धा वह भाव है जो तब उत्पन्न होता है जब हृदय ईश्वर को उनके वास्तविक स्वरूप में देखता है और उस सत्य के भार के नीचे प्रतिरोध के बजाय आनंद से नतमस्तक होता है।

दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, उसे हम भगवान कहते हैं। हमने भगवान को कभी देखा नहीं, फिर भी हम उन पर विश्वास करते हैं। संसार के कण कण में ईश्वर का वास है। जो भी व्यक्ति भगवान में सच्ची आस्था रखता है एवं उन पर पूर्ण विश्वास रखता है, वो अपनी जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करता है।

और श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम वतन का राग। श्रोताओं, आज ये कार्यक्रम केंद्रित है महादेव विनायक रानाडे की शहादत पर।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

19वीं शताब्दी का अंतिम दशक, जब भारत भूमि एक मौन ज्वालामुखी की तरह थी, ऊपर से चुप लेकिन भीतर धधकती हुई, एक सुलगता हुआ समय कि जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम ने एक अत्यंत संवेदनशील और उग्र मोड़ ले लिया था। इस कालखंड में दो स्पष्ट धाराएं उभर रही थीं। एक का रवैया नर्म था, संवैधानिक दायरे में रहते हुए सुधारात्मक मार्ग था ये, और दूसरा रास्ता था सशस्त्र क्रांति का। इसके अग्रदूत थे चाफेकर बंधु और उनके अत्यंत निष्ठावान सहयोगी महादेव विनायक रानाडे, जो एक क्रांतिकारी छात्र थे तथा मात्र 20 वर्ष की आयु में भारत भूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वतन का राग कार्यक्रम में आज एक आत्मीय स्मरण इन्हीं महादेव विनायक रानाडे का। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद पुणे का ब्राह्मण समुदाय, विशेषकर चित्पावन ब्राह्मण समुदाय, अपनी राजनीतिक शक्ति खो चुका था, लेकिन उनकी बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना अब भी अत्यंत तेज थी। 1870 के दशक में वासुदेव बलवंत फड़के के सशस्त्र विद्रोह ने महाराष्ट्र के युवाओं के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। 1890 के दशक में पुणे वैचारिक संघर्ष का अखाड़ा बन चुका था। एक ओर सुधारवादी गुट सक्रिय था तो दूसरी ओर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में युवा आगे बढ़ रहे थे। ये विचारधारा स्वधर्म और स्वराज की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष को आवश्यक मानती थी। महादेव विनायक रानाडे इसी राष्ट्रवादी विचारधारा के गर्भ से निकले एक महान योद्धा थे। उनका जन्म सन 1878-79 के आसपास एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक रानाडे एक साधारण किंतु संस्कारवान व्यक्ति थे। महादेव विनायक रानाडे अपनी शिक्षा के दौरान ही पुणे के उस क्रांतिकारी प्रभाव में आ गए थे जो पुणे की तत्कालीन ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध पनप रहा था। युवा महादेव विनायक रानाडे की आंखों में अपने जीवन को लेकर कोमल स्वप्न नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में भारत की आजादी का संकल्प था। यही कारण है कि शिक्षा के साथ साथ उनका मन क्रांति की ओर झुकने लगा था।

महादेव विनायक रानाडे के क्रांतिकारी जीवन की औपचारिक शुरुआत हिंदू धर्म संरक्षण सभा के माध्यम से हुई थी। इस संगठन की स्थापना सन 1893-94 में चाफेकर बंधुओं द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदू परंपराओं, संस्कृति और मंदिरों की रक्षा करना था। ये संगठन सार्वजनिक रूप से एक धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में कार्य करता था, लेकिन गुप्त रूप से इसमें युवाओं को सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। संगठन की सदस्यता अत्यंत कठोर नियमों के तहत प्राप्त की जाती थी। गीता और तलवार पर हाथ रखकर क्रांतिकारी शपथ लेते थे। ये शपथ केवल शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का व्रत था जिसका पालन वो हर हाल में करते थे। इस संगठन के प्रारंभिक और सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे महादेव विनायक रानाडे। वो न केवल शारीरिक प्रशिक्षण में अग्रणी थे, बल्कि चाफेकर बंधुओं के बीच एक सेतु की भांति कार्य किया करते थे। ये मिलकर जैसे एक ही लक्ष्य के चार स्तंभ थे। इनकी गतिविधियां केवल शस्त्र तक सीमित नहीं थीं, ये जन जागरण का कार्य भी करते थे। संस्था शिवाजी महाराज और गणपति उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार करती थी। इसके साथ ही धर्मांतरण का भी विरोध करती थी। ईसाई मिशनरियों को भारतीय संस्कृति के लिए खतरा मानते हुए उनका विरोध करती थी। महादेव विनायक रानाडे का युवा मन केवल आक्रोश से नहीं भरा था, बल्कि वो प्रतिशोध की ज्वाला भी बन चुका था। उनके जीवन का लक्ष्य था अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंकना। इसी बीच एक महामारी ने ब्रिटिश राज का अत्यंत क्रूर चेहरा जनता के सामने रख दिया। सन 1896 में पुणे में प्लेग फैला। धीरे धीरे इसने एक महामारी का रूप ले लिया। फरवरी 1897 में ब्रिटिश सरकार ने विशेष प्लेग समिति का गठन किया। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी W.C. रेंड को इसका अध्यक्ष बनाया गया। रेंड का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से सैन्य कार्रवाई के पक्ष में था। उसका रवैया अत्यंत संवेदनहीन रहा। रेंड ने प्लेग नियंत्रण के लिए डॉक्टर्स के स्थान पर 800 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को पुणे की गलियों में उतार दिया। इन सैनिकों ने प्लेग की जांच के नाम पर जो कार्रवाई की वो अत्यंत घृणित थी। ये सैनिक आधी रात को लोगों के घर में घुस जाते और घर के सामान को नष्ट कर देते। ये सैनिक पूजा घरों में भी घुस जाते, पूजा स्थान को अपवित्र करते, धार्मिक प्रतीकों का तिरस्कार करते, मूर्तियों को तोड़ते और उन्हें अपमानित करने का कृत्य करते। प्लेग जांच के नाम पर सैनिक महिलाओं को निर्वस्त्र करवाते और उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जाता। लोगों को शिविरों में भेज दिया जाता और अत्यंत अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता था। इन घटनाओं ने महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी।

प्लेग नियंत्रण के बहाने रैंड के अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मच गया था। अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी बुलंद स्वर में आलोचना की। महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं ने रैंड को अत्याचारी और धर्म का शत्रु घोषित कर दिया तथा उसे समाप्त करने की योजना बनाई। 22 जून सन 1897 को रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर पुणे के गवर्नमेंट हाउस में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें रैंड को भी शामिल होना था। क्रांतिकारियों ने रैंड की हत्या के लिए इसी दिन को चुना। क्रांतिकारियों ने सारी आवश्यक जानकारियां जुटाई। वासुदेव हरी चाफेकर ने रैंड की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। महादेव विनायक रानाडे ने प्रमुख सहायक, क्रियान्वयनकर्ता और निगरानी की जिम्मेदारी संभाली। 22 जून को सभी क्रांतिकारी नियत समय और स्थान पर अपने अपने दायित्वों के साथ तैनात हो गए। जैसे ही रैंड की बग्घी निकली, दामोदर चाफेकर ने संकेत दिया। वो बग्घी के पीछे दौड़ने लगे और बग्घी के पर्दे हटाकर रैंड के सिर पर गोली मार दी। रैंड गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में 3 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। रैंड की बग्घी के ठीक पीछे उसके सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आरिस्ट की बग्घी भी थी। बालकृष्ण चाफेकर ने उस पर गोली चलाई और वो घटनास्थल पर ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। महादेव विनायक रानाडे हथियार बंद होकर निगरानी करते हुए वहां मौजूद थे। उन्होंने रैंड और आयर्स्ट की हत्या में सक्रिय सहयोग दिया। अंधेरे और उत्सव के शोर का लाभ उठाते हुए क्रांतिकारी वहां से सुरक्षित निकल गए। इसे 1857 के बाद भारतीय उग्र राष्ट्रवाद की पहली बड़ी घटना के रूप में देखा गया। ये घटना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक जबरदस्त झटका थी। ब्रिटिश प्रशासन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया तथा पुणे में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू की, लेकिन क्रांतिकारी अब तक पकड़े नहीं गए थे। इसी बीच द्रविड़ बंधु गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र शंकर द्रविड़, जो पहले से ही चाफेकर बंधुओं के साथ थे, उन्होंने 20,000 रुपए के लालच में पुलिस को सारी जानकारी दे दी। इसी आधार पर दामोदर हरी चाफेकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने स्वीकार किया कि हिंदू धर्म के अपमान और मूर्तियों को तोड़े जाने का बदला लेने के लिए उन्होंने रैंड की हत्या की। 18 अप्रैल सन 1898 को उन्हें फांसी दे दी गई। बालकृष्ण हरी चाफेकर कुछ समय तक फरार रहे, लेकिन अंततः 1899 में वो भी पकड़े गए। द्रविड़ बंधुओं के विश्वासघात ने महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर को क्रोध से भर दिया। 9 फरवरी सन 1899 को महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर ने खांडो विष्णु साठे के साथ मिलकर द्रविड़ भाइयों को समाप्त कर दिया। उसी रात उन्होंने पुलिस के एक प्रमुख मुखबिर और एजेंट रामा पांडू को भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला। महादेव विनायक रानाडे ने मुकदमे के दौरान जो साहस दिखाया, वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने अपनी याचिका में खुलासा किया कि पुलिस ने उन पर अमानवीय अत्याचार किए। पुलिस चाहती थी कि वो स्वीकार करें कि रैंड की हत्या के पीछे तिलक जी का हाथ है, लेकिन अनगिनत यातनाएं सहने के बावजूद उन्होंने तिलक जी जैसे राष्ट्रीय नेताओं का नाम नहीं लिया। मुकदमे का फैसला आया। किशोर क्रांतिकारी खांडो विष्णु साठे को 10 वर्ष कारावास की सजा दी गई और शेष तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 8 मई सन 1899 को वासुदेव हरी चाफेकर को, 10 मई को महादेव विनायक रानाडे को और 12 मई को बालकृष्ण हरी चाफेकर को पुणे की यरवदा जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। नमन ऐसे अमर बलिदानियों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है दादी नानी की कहानियाँ।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, और बच्चों के मम्मी पापा को भी मनीषा का नमस्कार। बाल सभा जैसे ही शुरू होती है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे रेडियो के थोड़ा सा और करीब आ जाते हैं ये सोचते हुए आज कौन सा विषय है। आज बहुत ही मस्त और बहुत ही प्यारा और बहुत जानकारियों से भरा हुआ विषय है बच्चों। आज हम आपकी दादी नानी की कहानियों की बात करने वाले हैं, और आज मैंने इसीलिए बच्चों के मम्मी पापा को भी नमस्ते किया है, क्योंकि ये हर उम्र के इंसान से जुड़ा हुआ विषय है जिसे सुनते ही हमारे मन में बचपन की ढेर सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और आज का विषय है नानी दादी की कहानियाँ। अब देखिए ना दोस्तों, समय कितना बदल गया है। पहले शाम होते ही घरों में बच्चों की आवाज़ें गूंजती थी, आंगन में चारपाइयाँ डाली जाती थी, रसोइयों से रोटियों की खुशबू आने लगती थी, और रात का सबसे सुंदर समय होता था जब बच्चे अपनी दादी, अपने दादा या फिर नाना नानी के आसपास बैठकर कहानियां सुनते थे। कोई बच्चा दादी की गोद में सिर रखे होता था, कोई तकिए को पकड़कर बैठा रहता था, कोई बीच बीच में सवाल पूछता था, फिर क्या हुआ, और दादी भी कहानी ऐसे सुनाती थी जैसे सब कुछ ना उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। ऐसे बताती थी हर बात को, लगता था जैसे सामने आकर खड़े हो गए हैं किरदार। लेकिन आज वही घर, वही बच्चे, पर माहौल बिल्कुल बदल गया है। अब रात को बच्चों के हाथों में मोबाइल होता है, कानों में ईयरफोन होते हैं, आंखों के सामने स्क्रीन होती है। कहानियां अब सुनाई कम जाती हैं, दिखाई ज्यादा जाती हैं। पर क्या सचमुच मोबाइल किए ये छोटे छोटे वीडियो उस अपनेपन की जगह ले सकते हैं जो दादी की आवाज में होता था? क्या कोई कार्टून उस एहसास को दे सकता है जो नानी की गोद में सिर रखकर मिलता था? या कोई पीछे से एक आवाज मोबाइल में ऐसी आ सकती है, अच्छा जरा पास में आ जाओ, आज कहानी सुनाने के बाद तुम सबको बेसन के लड्डू दूंगी, है ना? नहीं आएगी ना ऐसी आवाज, नहीं आएगी, क्योंकि इंसानी रिश्तों में और मशीनरीज में कुछ बेसिक अंतर होते हैं बच्चों। और आज हम इन्हीं बातों पर लंबी और प्यारी बातचीत करेंगे। और आपको पता है इस बातचीत में मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में भी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची, मेरी दोस्त मातृका मौजूद है। मातृका, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्ते दीदी, और बाल सभा सुन रहे सभी दोस्तों को मेरा भी बहुत सारा प्यार। दीदी, आज का विषय सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से अपने नानी के घर पहुंच गई हूँ। मुझे आज भी याद है, गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होते ही मैं सबसे पहले यह पूछती थी कि हम नानी के घर कब जाएंगे, और जैसे ही वहाँ पहुँचते थे लगता था जैसे पूरी दुनिया बदल गई। ना कोई जल्दी, ना कोई टेंशन, बस खेलना, हंसना और रात को कहानी सुनना। मेरी नानी हर रात नई नई कहानी सुनाती थी। मैं कई बार सोचती थी कि आखिर उनके पास इतनी सारी कहानियाँ आती कहाँ से हैं? कभी राजा रानी की कहानी, कभी जंगल की कहानी, कभी अपने बचपन की बातें। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि वो हर कहानी को इतने भाव से सुनाती थी कि लगता था जैसे सब कुछ हमारे सामने हो रहा है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो मातृका तुम। मुझे तो लगता है कि ये दादी नानी की कहानियाँ सिर्फ शब्दों में गुथी हुई पूरे संसार भर के लिए एक माला के समान है। एक ऐसा संसार है जहाँ बच्चे कल्पना करना सीखते हैं, जहाँ एक छोटी सी कहानी के जरिए जीवन की बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा दी जाती हैं। और मुझे तो याद है, पता है क्या
3: क्या दीदी,
1: मेरी दादी रात को खाना खिलाने के बाद सबको बोलती थी, सारे भाई बहन मेरे पास आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके इधर आइए सब लोग। फिर हम लोग भी भड़ भड़ भड़ भड़ भड़ भड़ भड़ सारा काम खत्म करते थे। और अगर किसी दिन दादी ने ये कह दिया कि वो बहुत थक गई हैं और वो कल कहानी सुनाएंगी, तो बस हम सब के चेहरे लटक जाते थे मातृका। और फिर हम उन्हें मनाते थे, दादी प्लीज़ छोटी सी कहानी सुना दीजिए, छोटी सी दादी, छोटी सी। और फिर बस दादी मुस्कुरा देती थी, अच्छा चलो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, ज़्यादा पीछे मत पढ़ना। लेकिन पता है बच्चे, वो छोटी कहानी भी इतनी मज़ेदार होती थी कि कब वो आधा घंटा निकल जाता था हम लोग को पता ही नहीं चलता था।
3: दीदी, मुझे लगता है कि कहानियों का सबसे सुंदर हिस्सा ये होता था कि उनमें सिर्फ मनोरंजन नहीं होता था, हर कहानी कुछ सिखा कर जाती थी। जैसे मेरी नानी एक कहानी सुनाती थी दो दोस्तों की। एक दोस्त हमेशा मेहनत करता था और दूसरा काम से बचता था। शुरू में तो आलसी दोस्त को बहुत मज़ा आता था, लेकिन बाद में जब मुश्किल समय आया तो वही मेहनती दोस्त सबकी मदद कर पाया। उस दिन नानी ने हमसे कहा था, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और सच बताऊं दीदी, उस कहानी के बाद जब भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, मुझे वही कहानी याद आ जाती थी।
1: अच्छा चलो, ये तो एक बहुत अच्छी बात है, पर मैं बताऊं मेरी दादी का क्या स्टाइल था।
3: क्या दीदी?
1: उनका स्टाइल ये था, वो अमिताभ बच्चन की तरह धीरे से भारी आवाज में कहती थी, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। आवाज बनाकर बोलती थी तो हम लोग हंसने भी लगते थे, लेकिन बस तुरंत सब भागे भागे जाते थे। मुझे आज भी याद है मातृका, कई बार ऐसा होता था कि छत पे हम लोग लेटे हुए हैं, नींद आ नहीं रही है, मच्छर काट रहे हैं, मच्छरदानी में और गर्मी लग रही है, माँ को कह रहे हैं, माँ प्लीज पंखा चला दीजिए, लेकिन लाइट ही नहीं है, क्या करें। तब फिर वही दादी की आवाज आती थी, कहा ना मैं कहानी सुना रही हूँ। तो मैं कहती थी, दादी अपनी आवाज में बोलिए ना, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चों के साथ समझाते हुए, डांटते हुए, बहुत प्यार से वो कहानी ऐसे सुनाती थी कि अगर तो घर में किसी बच्चे के झूठ बोलने की आदत है, तो वो मन ही मन ऐसी कहानी बना देती थी कि झूठ बोलने की आदत बुरी है, हमें ये पता लग जाता था। अगर घर में किसी बच्चे को डर लग रहा है ना, तो हमारी दादी फटाक से बहादुरी की कहानी सुना देती थी। और कहानी सुनाते सुनाते वो हमेशा हमको एक मंत्र भी सुनाती थी। सुनाऊं तुमको?
3: हाँ प्लीज दीदी।
1: वो हमेशा एक मंत्र सुनाती थी, जय बाबा हनुमान, 12 वर्ष के जवान, हाथ में गदा मुंह में पान, जिधर देखो हनुमान ही हनुमान। तो जब मैं ये मंत्र सुनती थी तो मैं कहती थी, अच्छा हर तरफ अगर ईश्वर है तो फिर तो हमें डर नहीं लगना चाहिए। तो ये हमने कहानी से ही सीखा कि कैसे बातों ही बातों में बहादुरी की कहानी सुना दिया जाए। ऐसी कोई बच्चा अगर घर में लालच कर रहा है, जैसे गर्मियों की छुट्टी में क्या हुआ, मातृका सब बच्चे इकट्ठे हुए है ना, अब कोई चीज़ खाने की आई तो कोई बच्चा कह रहा है ये मैं ज़्यादा लूँगा, कोई बच्चा कह रहा है मुझे कम मिला, फिर पता चला थाली के ऊपर ही सब इकट्ठे झपट पड़े। तो हमारी दादी तुरंत उसी रात को ना एक लालच वाली कहानी सुना देती थी, तो हम सब बड़े शर्मिंदा होते थे कि अरे हम सुबह ही तो आम पे इतना झगड़ा कर रहे थे। तो कुल मिला के वो कहानियाँ नहीं थी दरअसल बेटा, वो क्या थी, वो अपने परिवार को करीब लाने का एक साधन भी थी। और आजकल तो तुमने भी देखा होगा ना मातृका, ऐसा कई बार होता है कि एक ही घर के सब लोग साथ होते हैं फिर भी कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता, तुमने देखा है ऐसा?
3: हाँ दीदी, आपको पता है मेरे जब कजिन्स मिलते हैं, हम लोग सब साथ में बैठते हैं, तो कोई कजिन मोबाइल चला रहा होता है, कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है। मेरी दादी आती हैं, जब उनसे बोलती हैं कि मोबाइल रख दो, दो बार बोलने पे नहीं सुनते, वो तीसरी बार सुनते हैं, और मुझे इतना बुरा लगता है।
1: ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपके बुजुर्ग, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी अगर कुछ बोल रहे हैं, तो बताइए मातृका ने कितनी बड़ी बात कही कि एक बार में नहीं सुन रहे हैं, दो बार में नहीं सुन रहे हैं, तीसरी बार उन लोगों को कहना पड़ रहा है। कितनी गलत बात है, बहुत गलत बात है। पर अब क्या, अब तो हम लोग वहां पहुंच गए हैं जहां हम मातृका से कोई कविता सुनेंगे। तो मातृका आज तुम क्या सुनाने वाली हो?
3: दीदी आज मैं कविता सुनाऊंगी जिसका नाम है मातृभूमि।
1: ठीक है,
3: दीदी, क्या मैं अपनी कविता शुरू करूं?
1: बिल्कुल मातृका, स्वागत है आपका।
3: ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमन छटा निराली पग पग चहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं। हो मस्त झाड़ियों में अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंश पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाई। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी।
1: वाह वाह मातृका, गौरव का भाव भर रहा था जब तुम ये सुना रही थी तब तुम्हारे मन में।
3: हाँ दीदी, बहुत ज्यादा।
1: और यही खास बात है जो हम कविताओं से और कहानियों से सीखते हैं कि जब हम किसी ऐसी ओजपूर्ण कविता को सुनाते हैं तो हमारे कहने का तरीका अलग हो जाता है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, कितना अच्छा लगता है जब हम देश की बात करते हुए गर्व से भर जाते हैं। मातृका, बहुत अच्छी कविता।

0: उससे प्रसन्न थी, लेकिन इससे मेरी या मेरे परिवार की आर्थिक कठिनाइयों का समाधान नहीं हुआ। तब फरवरी 1983 में नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन NAF के निदेशक ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह नेहरू संस्थान के प्रशिक्षकों के लिए एक साहसिक कोर्स चलाने के लिए उत्तरकाशी आए और उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए मेरे सहित 7 स्थानीय और शिक्षित महिलाओं का चयन किया। मैंने इस प्रतिष्ठित दक्ष तथा वरिष्ठ पर्वतारोही में भरोसा कर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया कि मेरे माता पिता परिवार के आर्थिक बोझ को कम करने की दृष्टि से मुझ पर विवाह करने के लिए दबाव डाल रहे थे। मैंने उनसे ऐसे लोगों के लिए जो निर्धन और जीविका रहित थे कुछ रास्ता निकालने के लिए कहा, ताकि पर्वतारोहण में हमारी रुचि और प्रतिभा का उपयोग हो सके। सुना मातृका?
1: हाँ दीदी।
0: कि कैसे एक ऐसी बच्ची जो खुद गरीबी में अपने जीवन को गुजार रही है, वो दूसरे बच्चों के लिए भी साथ साथ सोच रही है और ब्रिगेडियर जो आने वाले थे उनसे ये बात साझा करना चाहती है। दूसरे दिन प्रातः ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने हमें भागीरथी 7 सिस्टर एडवेंचरस क्लब शुरू करने के लिए NAF के आवेदन पत्र भरने के लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि ये लड़कियों और महिलाओं की एक अलग प्रकार की संस्था होगी जो जोखिम के कार्यों में लगी लड़कियों की सहायता करेगी। उन्होंने वादा किया कि यह योजना प्रशिक्षित लड़कियों और महिलाओं की आर्थिक चिंताओं का ध्यान रखेगी और इस बात से हमारा मनोबल आसमान छूने लगा और मैं मन लगाकर गंभीरता पूर्वक प्रशिक्षण कार्य में जुट गई। 7 बहनों में से प्रत्येक ने अच्छा नाम कमाया। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने बताया, हमारा प्रदर्शन पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर था। हमारे प्रवास के अंतिम दिनों तक ब्रिगेडियर हमारे लिए एक पिता की तरह हो चुके थे और मेरे सुझाव पर हमने उन्हें छोटे चाचा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। जब छोटे चाचा ने 28 फरवरी 1983 को उत्तरकाशी छोड़ा तब हम सब की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने 3 महीने के अंदर लौट आने का वादा किया जिससे वो हमारे साहसिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए मदद कर सके। उसी दौरान हमें स्थानीय बच्चों को चट्टानों की चढ़ाई के लिए ले जाने के लिए कहा गया। हमारे अपने कार्यक्रमों को चलाने की संभावना काफी रोमांचकारी थी। मैं इसकी तैयारी कर चुकी थी। नकुरी से लेकर तेखला में चट्टान आरोहण क्षेत्र तक घूमने और जॉगिंग का अभ्यास करती थी। ये रास्ता एक तरफ से 18 किलोमीटर पड़ता था। इस अभ्यास ने मुझे आरोहण की भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाने में सहायता की। वायदे के अनुसार ब्रिगेडियर जून में आ गए। वो अपने साथ हमारे लिए शिविर लगाने और ट्रैकिंग उपकरणों के 25 सेट साथ लाए, जिससे कि लड़कियों के लिए 2 साहसिक कोर्स साथ साथ चलाए जा सके। सेना की सहायता से उन्होंने तेखला में एक छोलदारी शिविर लगाने की व्यवस्था भी की। पहले समूह में जमशेदपुर से आई 13 लड़कियां थीं, दूसरे दल में मेघालय से आई शिलोंग की 15 चुस्त खासी लड़कियां थीं। प्रत्येक कोर्स में छात्रवृत्ति के आधार पर स्थानीय लड़कियों को सम्मिलित कर 20-20 के समूह बनाए गए। मुझे कोर्स के निदेशक और विजया पंत को उपनिदेशक बनाया गया। क्वार्टर मास्टर तथा चिकित्सा सहायक के कार्य बारी बारी से दूसरी 7 बहनों को सौंपे गए। कोर्स में काम करने के लिए हमें कुछ मानदेय भी दिया गया। कार्यक्रम में विभिन्नता थी। चट्टान आरोहण के लिए 3 दिन रखे गए थे, 1 दिन इसके बाद नदी पार करने के लिए तथा शिविर के लिए था। इसके अतिरिक्त पर्वतारोहण की रस्सियों का उपयोग, रसोई बनाना तथा बीहड़ जंगल में सुरक्षा प्रदान प्राप्त करना भी सिखाया गया। हमारे साथ एक वन्य रेंजर था जिसने हमें उस क्षेत्र की वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया। 2 छोटी और 1 लंबी यात्रा सहित हमने लगभग 150 किलोमीटर का रास्ता तय किया और 2500 से 3000 मीटर तक की चढ़ाई की उतराई की। लंबी यात्रा के दौरान हमारा सर्वोच्च शिविर लगभग 3000 मीटर पर प्राकृतिक सौंदर्य स्थली डोडी ताल में था, यहाँ पर ठंडे पानी और मछलियों से भरपूर एक सुंदर झील के चारों ओर आकर्षक इंद्रधनुषीय आभा लिए लंबे घने हरे हरे देवदार के वृक्ष थे। हम यहाँ पर 3 रात रुके। हम लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पर बकरियां खाल में पहाड़ की चोटी तक भी गए। कुछ लड़कियों का तो बर्फ के साथ ये पहला संपर्क था और वो खेलते कूदते बिलौटों की तरह बर्फीले मैदान में कूदती फांती एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंकती नजर आ रही थी। डोडी ताल लौटने से पहले उन्हें बर्फ पर फिसलने के लिए अन्य बर्फ किरणाओं का कुछ आरंभिक शिक्षण भी दिया गया। मैंने छोटे चाचा के निर्देशन में विजया की मदद से अपना पहला कोर्स पूरा किया। हमने उन्हें निर्देशन दिया परंतु विस्तार से कार्य करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। उनका सबसे अधिक स्मरणीय योगदान था मंत्रमुग्ध कर देने वाली घटनाओं से भरपूर पर्वतों तथा आरोहण संबंधी विभिन्न विषयों पर उनकी बातें। जब भी छोटे चाचा चिल्लाते, लड़कियों एक और कहानी सुनो, देखो फिर वही बात आ गई। मातृका जो ब्रिगेडियर जी थे, है ना, ज्ञान सिंह जी, जिन्हें ये छोटे चाचा कहती थी, वो भी इन्हें कहानियां सुनाते थे। किसकी? पर्वतों की कहानियां। और खास बात देखिए बच्चों, मैंने बात की जब शुरुआत की थी तब आपसे ये कहा था कि जो दादी नानी हैं वो हमेशा आपके व्यवहार को देखकर तुरंत कहानियां भी बना लेती थी, है ना, कि अगर कोई बच्चा लालच कर रहा है तो ऐसी कहानी जिसमें लालच दूर हो जाए, कोई डर रहा है तो ऐसी कहानी जिससे डर दूर हो जाए। आप ये देखिए कि उन लोगों की सोचने समझने की क्षमता और बच्चों को समझाने का तरीका कितना अच्छा था। वैसे ही ये जिन्हें छोटे चाचा कह रही हैं, उन्होंने भी क्या किया कि ऐसी कहानियां सुनाई जो पहाड़ और पर्वत के अनुकूल हों। जुलाई 83 के मध्य ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, प्रसिद्ध पर्वतारोही चंद्र प्रभा अटवाल, विजया पंत और मुझे लेकर दिल्ली गए। इस समय तक चंद्रा दीदी भागीरथी 7 सिस्टर्स एडवेंचरस क्लब की अध्यक्ष और मैं उपाध्यक्ष चुन ली गई थी। राजधानी में छोटे चाचा ने टेलीविजन के लोकप्रिय कार्यक्रम घर बाहर में हमारे इंटरव्यू की व्यवस्था कर दी। 3 राष्ट्रीय दैनिक पत्रों में भी हमारा साक्षात्कार आया। हमारे फोटो सहित ये साक्षात्कार और लेख दूसरे दिन सवेरे के अखबार में छपे और जब हम जनपद में खरीदारी कर रहे थे तब अनेक युवाओं ने रोका और पूछा, क्या मैंने तुम्हें टीवी पर नहीं देखा था, अथवा क्या तुम वही महिला हो जिनके चित्र मैंने अखबार में देखे हैं। हमारे छोटे से क्लब भागीरथी 7 सिस्टर एडवेंचर क्लब ने राजधानी में पहले से ही रंग जमाना शुरू कर दिया था। तो ये था वो अध्याय जो आज आपको मुझे बछेंद्री पाल का सुनाना था। अब मातृका, पहले ये बताओ कि तुम्हें बछेंद्री पाल की एक कहानी कैसी लगी, पर्वतारोहण की, वो जो मेहनत कर रही थी, कैसे उन्होंने अपनी आर्थिक स्थितियों से लड़ा, कैसा लगा?
1: दीदी, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे इससे एक सीख भी मिली कि हमको कभी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए।
0: और मेहनत के बीच में यदि आपकी आर्थिक स्थिति बच्चों आए ना, तो कभी हमें झिझकना नहीं चाहिए आपको सही व्यक्ति देखकर। क्योंकि देखिए बच्चों, एक और बात इस कहानी से हमें सीखने को मिली कि ब्रिगेडियर को उन्होंने छोटे चाचा पहले दिन से कहना शुरू नहीं किया था। ब्रिगेडियर को उन्होंने छोटे चाचा बहुत दिन बाद कहना शुरू किया, वरना पहले तो सर कहती होंगी, है ना। जब उन्हें लगा कि इनसे रिश्ता भी अच्छा है और इन्हें हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बता सकते हैं, तब बछेंद्री पाल ने यह निर्णय लिया होगा कि उन्हें छोटे चाचा कहकर अपने घर की आर्थिक स्थिति बताई जाए। और देखिए, अगर उस वक्त बछेंद्री पाल शर्मा जाती तो क्या होता? तो क्या वो बनती पर्वतारोही? क्या वो सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच पाती? नहीं, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति उनके आड़े आ जाती, लेकिन वो इसको सही व्यक्ति तक पहुंचाने में कोई शर्माई नहीं, कोई झिझकी नहीं, बल्कि सही वक्त सही व्यक्ति देखकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब मुझे ये बात इन्हें बता देनी चाहिए। तो आपकी जिंदगी में कहानियां छोटे छोटे अनुभव से लेकर बड़ी बड़ी समझदारी तक बहुत काम आती हैं बच्चों। अब वापस लौटे मातृका विषय पर।
1: हाँ दीदी, बट विषय पर लौटने से पहले मैं विषय की ही बात करना चाहूँगी।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात हो गई। बताओ क्या कहना चाहती हो?
1: दीदी, आपने जो मुझे वो जय बाबा हनुमान वाली वो मंत्र बताया था ना, आपने मुझे एक इतना बड़ा सल्यूशन दे दिया मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे हमेशा जब मेरी मम्मी ऑफिस जाती है या फिर कहीं काम करने जाती हैं तो मुझे हमेशा डर लगता है कि कोई चोर ना घुसाए, कोई भूत ना आ जाए, मुझे ऐसे बहुत डर लगता है। और आपने तो मुझे आज इतना बड़ा सल्यूशन दे दिया, अब मुझे जब भी डर लगेगा, मुझे तो आपने बता दिया कि हमारे आसपास भगवान जी रहते हैं, तो अब मुझे जब भी डर लगेगा मैं बोलूँगी जय बाबा हनुमान, 12 वर्ष के जवान, हाथ में गदा मुँह में पान, जिधर देखो हनुमान ही हनुमान।
0: बिल्कुल बच्चों, आपने भी यही करना है कि आप जिनकी भी पूजा करते हैं, है ना, आप जिनसे भी हिम्मत का जो भी आपके लिए स्रोत है, आपके माता पिता हों, आपके दादी बाबा हों, या ईश्वर या कोई ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें आप बहुत कुछ मानते हैं, आप उनको याद करिए और सच मानिए, आपका डर रफू चक्कर हो जाएगा। तो मातृका, अच्छा लगा मुझे कि तुमने स्टूडियो में बैठकर सिर्फ इस कार्यक्रम में ही हिस्सा नहीं लिया बल्कि अपनी लाइफ के लिए कुछ सल्यूशन भी लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज बच्चों हम जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ना, उतनी ही तेजी से कहीं ना कहीं रिश्तों की गर्माहट थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। शायद यही वजह है कि आज बच्चों के पास बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत बच्चों के मुँह से सुनती हूँ मातृका कि उनको ना अकेलापन महसूस होता है क्योंकि पेरेंट्स ऑफिस में हैं और वो लोग अकेले हैं। ऐसे में जब हम बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं ना तो हम दिमागी रूप से थकने लगते हैं, अकेले पढ़ने लगते हैं या फिर हम पूरे टाइम टीवी देखते रहें। इसलिए बेहतर होता है हम कहानी की किताब पढ़ें। अगर हमारे पास कोई नहीं है ना बड़ा बुजुर्ग सुनाने के लिए, तो बच्चों आप एक और काम कर सकते हैं कि आप कहानियों की अच्छी अच्छी किताबें खरीदिए और आप जब वो कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और गर्मियों की छुट्टी में ये तय कीजिए कि आपको अपने दादी दादा के पास या फिर नाना नानी के पास ज़रूर जाना है ताकि आप उनसे वो कहानियाँ, वो वक्त देख सको, सुन सको जो हम सब ने देखा है कि अगर लाइट चली गई तो कहीं से एक दिया जला लिया या लालटेन जला ली और फिर सब आसपास बैठ गए, पीछे से झींगरों की आवाज़ आ रही है, कभी हवा चल रही है, कभी मज़े आ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। और हाँ, रात में सब लोग नीचे गए, जल्दी से कोई नमकीन चूड़ा ये सब ले आए और फिर खाने लगे। तो ये सब चीज़ें ना आपको साथ रहने का मज़ा, आनंद, ये सब कुछ कहानियाँ सुनते सुनाते आता है।
1: हाँ दीदी, और सबसे मज़ेदार बात ये होती थी कि डर भी लगता था और मज़ा भी बहुत आता था। मेरी नानी भी कभी कभी ऐसी कहानियाँ सुनाती थी कि मैं रात को पानी पीने भी अकेले नहीं जाती थी, फिर मैं मम्मी को उठाकर ले जाती थी।
0: बिल्कुल ऐसा तो हुआ ही होगा क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि अगर हमारे जो भाई बहन हैं जो बाहर से आते हैं, बुआ के बच्चे हैं या ताऊ जी के बच्चे हैं, तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा शरारती बच्चा ज़रूर होता था जो कहता था मैंने भूत बंगला देखा है। भले ही वो कुछ नहीं होता हो लेकिन वो सब बच्चों को डराने का काम करता था। एक और बात बहुत अच्छी होती थी मातृका की, इससे हमारी भाषा बहुत सुधरती थी, हम सुनना सीखते थे, हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है और सबसे बड़ी बात, हमारे दादी दादा ने, हमारे नाना नानी ने हमको संवेदनशील बनाया है, हमें सुनने की आदत डाली है, हमें दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने के तरकीब सिखाई है। क्योंकि कहानी सुनते सुनते बच्चा हर किरदार के साथ जुड़ता है, वो सोचता है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या करता।
1: दीदी, आजकल बहुत सारे बच्चों को हिंदी बोलने में भी दिक्कत होती है, लेकिन जो बच्चे अपने दादा दादी के साथ समय बिताते हैं उनकी भाषा बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो रोज नई नई बातें सुनते हैं, नए नए शब्द सीखते हैं।
0: कितनी अच्छी बात कही है मातृका तुमने। तुम्हें पता है क्या हुआ, एक बार मैंने कहा कि मेरे इस बार बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तो मेरी नानी ने तुरंत मुझसे कहा हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं बहुत देर तक अपनी माँ से पूछती रही इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, लेकिन दरअसल मुहावरों में कही हुई बातें, कहावतें, ये सारी बातें हमें कहीं ना कहीं हमारी भाषा को समृद्ध करती थी और आज भी कर सकती हैं अगर आप बच्चों अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताएं।
1: दीदी, आज मैं घर जाकर सबसे पहले अपनी नानी को फोन जरूर करूंगी और उनसे कहूंगी कि अगली बार मिलने पर मुझे फिर से कहानी सुनानी है।
0: बिल्कुल। तो बच्चों, अब चलते चलते हमारा संकल्प लेने का समय आ गया है। जल्दी से धीमे से संगीत के साथ हम सब आंख बंद कर लेते हैं। आप सब आंख बंद करके ये सोचिए कि अब से घर में जो भी बुजुर्ग हैं, हमें उनके साथ बैठकर कुछ देर बातें ज़रूर करनी है, उनसे कहानियाँ ज़रूर सुननी हैं। अगर वो आपके पास नहीं हैं, तो आप सबको उन्हें हर रोज़ फ़ोन लगाना है, फ़ोन पर बात करनी है। जब भी आपके घर में कोई भी बुज़ुर्ग आए, तो आपको उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है, उनकी बात एक बार में माननी है, उन्हें कभी पलटकर जवाब नहीं देना है। उनकी दवाइयों का ख्याल, उनकी सेहत का ख्याल रखने में आपको मदद करनी है। और बस इन्हीं संकल्पों के साथ अब समय आ गया है कि हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करें, ठीक है? लेकिन बच्चों, आज रात को सोने से पहले क्या करना है? अगर नानी नाना या दादी दादा आपके पास नहीं है, तो अपनी मम्मी पापा से कहिए कि आज हम तभी सोएंगे जब आप हमें एक कहानी सुनाएंगे। और यकीन मानिए, ये आज की रात जो आप शुरुआत करेंगे, वो धीरे धीरे धीरे धीरे एक बहुत खूबसूरत आदत में बदल जाएगी। तो बस अब चलते हैं, मातृका चले अब?
1: हाँ दीदी।
0: तो बच्चों, आप अनुमति दीजिए हमें बाल सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। आप सभी को मनीषा का
1: और मातृका का
0: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ ही मैं आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: बाल सभा। आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। टेक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे साइबर अपराध, चुनौतियां और सुरक्षा के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, हम जानते हैं कि आज हमारे एक क्लिक पर सारी जानकारियां उपलब्ध हैं और ये छोटा सा जो बॉक्स है ना, जिसे हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, वो आज हमारी ज़िंदगी बन चुका है। केवल मोबाइल फ़ोन ही नहीं, उसके अंदर जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेट की। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसके बिना हम अपने फ़ोन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को जकड़ कर रख लिया है। जी हाँ, कुछ भी काम हो हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और इस इंटरनेट ने जहाँ हमें सुविधाएँ दी हैं, तो वहीं हमारे सामने चुनौतियाँ भी खड़ी कर दी हैं। क्या है साइबर अपराध, चुनौतियां क्या हैं, सुरक्षा कैसे की जाए, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने शिवेंद्र कुंभकार जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और हम उनसे जानेंगे कि साइबर अपराध क्या है, चुनौतियां क्या है, सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में।
1: आपने मुझे मौका दिया अपने पक्ष रखने का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
0: जी सर, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और साइबर अपराध बहुत तरीके से देखते हैं। आज हम देखते हैं कि जो इंटरनेट है वो हमारी जिंदगी में इतना रच बस गया है कि हम उसके बिना कल्पना नहीं कर पाते हैं। क्या चुनौतियां आज आपके नजरिए से देखने मिल रही हैं?
1: देखिए, दोनों तरह से अपन देख सकते हैं। इंटरनेट का होना अपने लिए बहुत फायदेमंद चीज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट का हद से ज्यादा उपयोग कहीं ना कहीं अपनी आंखों को कमजोर कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट के लिए फोन या टैबलेट या कंप्यूटर्स चाहिए। इंटरनेट के लिए आपको कहीं ना कहीं एक जगह बैठ के या कहीं एक चीज पे फोकस करना पड़ता है। तो अगर हम प्रीवियस से अगर कंपेयर करें, बिफोर इंटरनेट आफ्टर इंटरनेट, तो पहली तो बॉडी की हेल्थ सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। पहले जानकारी लेने के लिए आप लाइब्रेरी जाते थे, रिसर्च करते थे, एक जगह बुक में पढ़ते थे या कहीं रिसर्च मटेरियल में पढ़ते थे। अब आज वो चीज़ आपके हाथ में तो अवेलेबल है, लेकिन उसके चक्कर में आप अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करें, कहीं जाते जाते आप फ़ोन चला रहे हैं, कोई सामने वाला गाड़ी चलाते हुए फोन चला रहा है, तो उसमें रिस्क तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
0: बिल्कुल, रिस्क बढ़ चुका है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही रिस्क की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो साइबर अपराध इस समय बहुत ज्यादा हो चुके हैं। बात करने की तो जो आज़ादी है वो हमें फोन ने दी है, अपराध कहाँ बन जाती है ये बातचीत?
1: देखिए, अपराध यहाँ बन जाती है जहाँ वो बातचीत जिसको आप जानते नहीं हो उसके साथ हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपका ही नंबर है, आपको पता है, मुझे पता है, अब मैं उस नंबर में एक दो डिजिट ऊपर नीचे कर दूं तो एक थर्ड पर्सन का नंबर आ गया।
0: बिल्कुल।
1: अब उससे मैं अगर आपसे जितना फेमिलियर हूं, मैं उस लहजे में बात करूं तो वो तो जानता नहीं है। यहां तक बात करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एग्जाम्पल तौर पे हम एक दूसरे से सबको बहुत पहले से जानते हैं, तो अगर कुछ समय आप रिप्लाई नहीं करेंगे हमारा, तो हम आक्रोश में आके आपको कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वही चीज जो तीसरे पर्सन को कह रहे हैं हम इग्नोरेंस में कि हमने नंबर ही गलत डाला है, तो वो अपराध की श्रेणी में चले जाता है, वो बुलिंग की श्रेणी में चले जाएगा, हैरेसमेंट की श्रेणी में चले जाएगा, जिस जो भी आपने कहा हो उस पर डिपेंड करता है वो किस श्रेणी में जाएगा। तो उस हिसाब से चीजें अवेलेबल बहुत ज्यादा हो चुकी हैं।
0: साइबर अपराध की अगर हम बात करें तो किन किन चीजों को हम साइबर अपराध की श्रेणी में ला सकते हैं?
1: सिंपल में हम बात करें, जो भी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के उससे हों, उनको आप साइबर अपराध में ले सकते हैं, भले ही वो फोन का सिंपल सा मैसेज हो, इंटरनेट पे वीडियो शेयर हो रहा हो, सोशल मीडिया एप्स, उनका उपयोग हो।
0: हैकिंग है, फिशिंग है, पहचान की चोरी है, इन सब के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: देखिए, हैकिंग को हम अगर आम भाषा में बताना चाहें तो हैकिंग है कि आपका डिवाइस बिना आपकी परमिशन के कोई उसको यूज कर रहा है, उसको हम हैकिंग में दे देते हैं। फिशिंग है, आप किसी ने चारा डाला, मछली फंसी तो फंसी, नहीं फंसी तो वो तो बहुत सारों को डाला, कोई ना एक ना एक तो मछली पकड़ में आ ही जाएगी। देखिए, आजकल AI के मामले में डीप फेक बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो पहचान की चोरी इस श्रेणी में जाएगा। लेकिन क्योंकि अपन खुद को सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा प्रेजेंट कर चुके हैं कि और आपने अपना कंसेंट दे चुका है, जैसे अभी बीच में एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा था, गिबली ट्रेंड, जिसमें सब लोग अपनी AI में फोटोज डाल के जिबली बना रहे थे, तो उस ट्रेंड के चक्कर में आपने आपकी खुद की जो पर्सनल फोटोज हैं वो आपने AI सर्वर पे अपलोड करी और उसको बोला कि तुम इसको इस्तेमाल करके हमारी AI इमेजेस बना के दो, तो कहीं ना कहीं तो ये आपको पता नहीं था कि वो AI की फोटो आप यूज कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता था वो स्टोर भी करेगा. आपने उसको पूरा एक्सेस दे दिया उसको जहां पे इस्तेमाल करना है, ट्रेनिंग डेटा में हो, टेस्टिंग डेटा में हो, किसी में भी. वो AI अब खुद के बेहतर सुधार के लिए या कहीं अपने डेटा में स्टोरेज तो है ही, उसमें वो रख के उसको कहीं ना कहीं यूज तो कर सकता है. और आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों की हम अगर बात करें तो डेटा चोरी एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है. तो कहीं ना कहीं जब आप आपके कंसेंट से ऐसी फोटोज देते हो, कुछ पर्सनल सीन्स भी होंगे जिनको आपने ट्रेंड में डालने के लिए किया होगा, तो वो सारी आपकी डिटेल्स विद फेस डेटा, बैकग्राउंड डेटा, कभी कभी तो अनजाने में ऐसी फोटोज भी अपलोड होती हैं जिसमें जियो लोकेशन टैग्ड हो. तो आपने बकायदा ये कि मैंने ये फोटो इस जगह इस समय इसके साथ ली, इस फोन से ली,
0: अच्छा
1: पूरा डेटा आपने AI को दे दिया.
0: अब वो जो चाहे तो इस्तेमाल करे. आपका तो उसने अभी बना के दे दिया AI वाला, लेकिन फिर वो उसका कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसके लिए जो परमिशन मांगी जाती है और हम देते हैं, फिर अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करें तो क्या वो भी साइबर अपराध में आएगा?
1: गलत इस्तेमाल किसी भी चीज का अपराध की श्रेणी में आएगा. अब अगर वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही है तो वो साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा. बात यह है कि कोई कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, इवन गवर्नमेंट इसका दुरुपयोग नहीं करती, लेकिन उसके पास जो डेटा है उसको कोई और उठा के उसका दुरुपयोग करता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: उसकी सुरक्षा करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
0: बिल्कुल. तो ये वायरस और मेलवेयर फैलाना भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, ये कैसे काम करता है?
1: देखिए, वायरस और मेलवेयर जनरली फोन्स डिवाइसेस में रहेगा. वायरस और मेलवेयर अगर हम नॉर्मल बातचीत में बोलें तो अपने इसमें नहीं आएगा. वायरस अलग अलग तरह के होते हैं, मेलवेयर भी अलग अलग तरह के होते हैं. हम अगर वायरस की इसमें ही बात करें तो आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर देना, उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. एक मान लेते हैं सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, आपको मेल आया, आपने लिंक पे क्लिक किया, वायरस डाउनलोड हो गया. उससे अब वो वायरस किस तरह का उस पर डिपेंड करता है. या तो वो आपके फोन को स्लो कर देगा, कहीं ना कहीं डेटा यूज करने लगेगा, डेटा माइनिंग करने लगेगा, या फिर मोस्टली देखा जाता है कि बिटकॉइन माइनिंग या क्रिप्टो माइनिंग में भी कहीं ना कहीं वो आपके फोन के रिसोर्सेज को यूज करने लगता है. वायरस मेलवेयर दोनों से हो सकता है. कहीं ना कहीं वो आपका डेटा चुरा के अपने पास लॉक कर लेगा. वो रैंसमवेयर में आ जाता है कि मतलब वायरस मेलवेयर का मिक्सचर ही रहेगा रैंसमवेयर, जिसमें वो आपका डेटा को इनक्रिप्ट ऐसा कर देगा कि आपको खुद का डेटा एक्सेस करने के लिए जिसने भी डाला है उसको पैसा देना पड़ेगा.
0: अच्छा.
1: और ऐसा केसेस गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी हुए हैं, प्राइवेट एजेंसी के साथ भी हुए हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: जिसमें डिपेंड करता है आपका डेटा कैसा था, सेंसिटिव था कि नहीं था, या कितना आपके लिए जरूरी है, फिर उस हिसाब से वो रहता है.
0: साइबर स्टॉकिंग भी एक शब्द है, ये क्या होता है?
1: साइबर स्टॉकिंग मैं अब आपको समझाऊंगा कि आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो, आपका कोई क्लोज रिलेटिव है, उसको किसी एक थर्ड पर्सन के बारे में जानना है जो आपसे रिलेटेड है लेकिन उससे रिलेटेड नहीं है. तो वो पहले उससे आपसे उनकी आईडी मांगेगा.
0: ठीक है.
1: फिर उस आईडी की पूरी जांच पड़ताल करेगा कि ये इसकी ये वाली आईडी थी, अब इससे इसकी दूसरी सोशल मीडिया लिंक ढूंढते हैं. फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं पर्सनली अपनी चीजें ओपन नहीं करता हूँ इतनी डिटेल्स में सोशल मीडिया पे या किसी भी माध्यम में, लेकिन आजकल का ट्रेंड ही है कि हर बच्चा इन्फ्लुएंसर की हम बात करें या हर एक जो भी एक ये आजकल चला रहा है सोशल मीडिया,
0: पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स भी होते हैं, वो भी अपने आप को उसमें बहुत ज्यादा बताना पसंद करते हैं कि उन्होंने क्या किया है. पब्लिक फिगर होते हैं, नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं.
1: उनकी स्टॉकिंग में हम इसलिए नहीं कहेंगे जो कि वो खुद ही इतना ओपन कर लेते हैं कि वो तो जिसको जो देखना चाहे देखे. स्टॉकिंग वो होती है जो बंदा चाहे नहीं लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पड़े रहो, उसके पूरे निकालते रहो. जैसे हम गए कहीं घूमने, हमने डाल दिया, सामने वाले ने देख लिया, अब उसका वो जो भी इस्तेमाल करे, जिस भी सेंस में उसको लेना चाहे वो ले सकता है. लेकिन हमने तो हमारे क्लोज वालों को बताया ना. हमने सब लोग के लिए थोड़ी बताया, हमने तो सिर्फ क्लोज वालों के लिए, ताकि उनको अपडेट रहे कि हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है. वो क्लोज वालों के लिए था, लेकिन क्योंकि उसको थर्ड पर्सन देख रहा है इसलिए वो साइबर स्टॉकिंग में जाएगा.
0: तो ये मतलब कहना चाहिए कि आपके बिना अनुमति के आपके बारे में कोई जानकारी ना ले सके, फोन की भी ना ले सके, आपके डेटा की ना ले सके, ये सारी चीजें साइबर अपराध में आती. बात तो हो गई हमारी अपराध की, चुनौतियों की तो बात हो गई, कैसे बचा जाए?
1: अभी साइबर स्टॉकिंग की बात चल रही थी तो इसी के इसमें हम देंगे. जनरली जितने भी एप्स हैं, कोई सा भी सोशल मीडिया एप्स हो, उसमें एक यूजर के पास पूरे के पूरे राइट्स रहते हैं कि वो कौन सी चीज किसको शेयर करना चाहे. बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेसी फंक्शंस ओपन रहते हैं. अब वो बाय डिफॉल्ट ओपन इसलिए रहते हैं ताकि जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज से अपनी जो बैकएंड की चीजें हैं, जो कि कंप्यूटर्स को चाहिए डेटा, अब वो डेटा कहाँ से लाएंगे? वो डेटा यूजर्स से ही आएगा. एक कह सकते हैं कहानी है या प्रोवर्ब है, अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट आप हो। तो आपको चीजें तो सुविधाएं तो फ्री में दे रहे हैं या चीपेस्ट रेट में दे रहे हैं, पर प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट तो आप
0: हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उससे बचने के लिए आप प्राइवेसी फंक्शंस जितने भी हैं उनमें अपनी थोड़ी जागरूक बनने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। एक मेरे हिसाब से एक ग्रेजुएट बंदा या एक 12th pass 10th pass जो भी आज की डेट में श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एजुकेशन आज की श्रेणी में इतनी स्ट्रांग हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी कि सब कुछ अब बताते हैं ओपनली। हमारे टाइम पे तो नहीं था, आपके टाइम पे भी आई एम श्योर नहीं होगा, लेकिन आजकल 7th 8th के बच्चों को एक अच्छी कोडिंग लैंग्वेज सिखाई जा रही है, एजुकेशन करिकुलम में है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं। हमारे टाइम पे वो नहीं था, तो एक आम उसको देख सकता है, लेकिन आज 5 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल डिवाइस है, उसका भी अपना एक आईडी है, तो उसके लिए तो वो सारी चीजें ओपन है। भले ही पेरेंटल कंट्रोल से हम कहीं ना कहीं ब्लॉक लगा लें, लेकिन उसके लिए वो सारी चीजें ओपन है और वो इतना सोचेगा भी नहीं कि मैं प्राइवेसी के बारे में इतना ध्यान दूं। लेकिन जब तक वो उस चीज को लॉक करने की एज में आएगा तब तक वो अपने बारे में बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज कर चुका होगा, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है आगे की उसमें बात करें।
0: एंटीवायरस उपयोग किया जा सकता है
1: इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस, एंटीवायरस मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ, तो इन टर्म्स ऑफ इसमें एंटीवायरस डालना इज मच रिस्कियर। वो कहते जरूर हैं कि जहर का तोड़ जहर होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बाय डिफॉल्ट जो आते हैं और आजकल तो वही इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अपन को डालने की जरूरत नहीं है। मैं विंडोज की बात करूंगा, विंडोज ओएस की सबसे ज्यादा आज की डेट में यूज होने वाला ओएस है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट भी हम बात करें कॉमन सेंस में हो चुका है। उसके अंदर एक है विंडोज डिफेंडर, वो डिफेंडर सबसे अच्छा एंटीवायरस को ब्लॉक कर सकता है, बहुत सारी फायरवॉल सारी सिक्योरिटीज रखता है, लेकिन अगर आप आपके डिवाइस में एंटीवायरस डालते हो तो वो उसी को ब्लॉक कर देता है।
0: अच्छा।
1: तो आपने जो मेन अपना बैकबोन थी, बैकअप था, जब उसी को बंद खत्म कर दिया तो फिर ये एंटीवायरस कैसे बचा पाएगा।
0: तो मतलब कहना चाहिए सतर्कता जरूरी है,
1: नॉलेज रखना इस फील्ड में ज्यादा जरूरी है कि कौन सा एंटीवायरस कंपनी या सॉफ्टवेयर आपका क्या डेटा एक्सेस करता है।
0: तो ये तो बात हो गई एक जानकार वाले व्यक्तियों के लिए, एक जो एक आम नागरिक है जो एक आम फोन इस्तेमाल करता है 15-20 हजार का करता है, और वो जो कंपनियां जब इन्हें बेचती है तो बहुत सारी चीजें बताती है कि दमदार पिक्चर है, दमदार ये है और ऐसा है वैसा, ऐसे लोग साइबर की घातक अपराध से कैसे बच सकते, उनके लिए बिल्कुल एक सरल शब्दों में बात करेंगे।
1: सरल शब्दों में उन लोगों के लिए कि एक लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लर्न तो करना पड़ेगा, बेसिक रखिए, ज्यादा डिटेल में भले ही ना जाइए,
0: बहुत सारी चीजों को डाउनलोड मत करिए अनजान, मतलब
1: अगर आपको कहीं शक हो रहा है तो अपने किसी बच्चे से पूछ लीजिए, आसपास कोई थोड़ा बहुत जानकार हो उससे जानकारी ले लीजिए। मैं ही नहीं कह रहा हूँ आप सामने वाले की 100% बात मानो, बस थोड़ी जानकारी ले लो फिर अपने हिसाब से एक्ट करो।
0: ठीक है,
1: अगर आपको लगता है कि ठीक थी जानकारी तो उस हिसाब से एक्ट करो, नहीं थी तो अपने जो भी आपको लग रहा है उस हिसाब से एक्ट करो, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, एक कैलकुलेटर ऐप रहता है, आपके हिसाब से क्या परमिशन लगनी चाहिए कैलकुलेटर को?
0: कुछ नहीं, बस
1: नॉर्मली रहना चाहिए, कैश स्टोरेज। लेकिन अगर एक कैलकुलेटर ऐप आपकी फोन परमिशन, स्टोरेज परमिशन, मैसेज परमिशन, लोकेशन परमिशन मांग रहा है और आप उसको यस यस यस यस करे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका कंसेंट दे रहे हो कि हाँ भैया मैं ओपन हूँ, आओ कर लो हैक या आओ ले लो मेरा पूरा डेटा।
0: ठीक है,
1: तो कहीं ना कहीं देखना तो अपन को पड़ेगा कि ये वाली ऐप है, इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
0: ठीक,
1: कुछ कुछ ऐप्स ऐसी रहती हैं जो मांगती हैं, जिनको मैंडेटरी रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो एक उनके पास डेटा होना जरूरी है कि ये सही आईडी थी कि नहीं थी, ये सही एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम मेल की बात करते हैं तो अगर आपने नोटिस किया हो, आपने कहीं थर्ड कंप्यूटर में आप ही ने लॉग इन किया तो वो मेल आपको आएगा कि आपका ये वाली लोकेशन से हुआ, चाहे आप ही थे कि नहीं थे,
0: आप ही थे कि नहीं थे।
1: अब अगर आपने उसको चेक कर लिया और आपको पता है आप नहीं थे, तो आप तुरंत वहां पे लॉग कर सकते हो कि नहीं है मैं नहीं हूँ, इसको अपन हटा देते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: आप थे तो कोई बात ही नहीं,
0: बात ही नहीं। लेकिन ये अवेयरनेस भी होना चाहिए,
1: ये जानकारी अब आपको पढ़ना आना चाहिए कि ये मेरे को मिला है तो इस समय क्या इस्तेमाल कर सकते।
0: तो मतलब हमारे जितने भी फोन धारक हैं वो अगर कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं और वो अगर कोई जानकारी मांगता है तो बहुत ध्यान से पहले उसे पढ़ें, फिर उसको यस कहें और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा इस समय एक शब्द का प्रचलन और चल रहा है, क्योंकि नई चीजें जिंदगी में आई हैं तो नए नए शब्दावली भी आई है, वो है एक डिजिटल अरेस्ट।
1: जी,
0: ये क्या चीज है, इसे किस तरह से प्रहार होता है और किस तरह से बचना चाहिए?
1: डिजिटल अरेस्ट इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी बात करें, कुछ नहीं होता,
0: कुछ नहीं होता है,
1: लेकिन अब लोगों को डर रहता है। डिजिटल अरेस्ट के अंदर होता यह है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया, ऑनलाइन का जमाना सभी करते हैं, उसी का बेस माध्यम जो हम ज़्यादातर केसेस जो डिजिटल रिस्ट में देखे गए अभी तक उसमें बता रहे हैं, तो उसमें बेस ये होता है कि आपने एक्स जगह से आपने ऑर्डर किया, आपका ऑर्डर आया, इसके अंदर कुछ भी एक अवैध पदार्थ पाया गया है, तो इसके अंदर आप कस्टडी में हो, आप वीडियो कॉल करके आपको बताया जाएगा बाकायदा पूरी ड्रेस में कि ये वाला कोट है, ये है, वो है, और उसमें कह देते हैं कि आपके कंप्यूटर डिवाइस या फोन को वीडियो कॉल फुल टाइम चालू रखो, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते,
0: मतलब वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पे नियंत्रण किया जाता है कुल मिला के, तो ये तो कुछ भी बात नहीं हुई, मनोवैज्ञानिक रूप से एक दबाव हो गया,
1: मेंटल प्रेशर इतना डाल दिया जाता है, और कहीं ना कहीं वो चीज आपने ऑर्डर करी ही होती है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती है,
0: तो
1: उसके चक्कर में
0: ऐसे में क्या करना चाहिए?
1: सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है मेरे हिसाब से, ऐसे में तो अगर फोन डिवाइस है तो एयरप्लेन मोड, कंप्यूटर है तो मॉडम बंद।
0: अच्छा, ऐसे में पुलिस की कितनी सहायता लेनी चाहिए, क्या सच में बताना चाहिए? कई लोग बता नहीं पाते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण की बात करूं, अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में ये बात भी आई थी कि अचानक से आपके पास एक वीडियो कॉल आता है, खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स हो गए या यंगस्टर्स होते थे, तो उनके साथ आया, फिर उन्होंने अश्लील वीडियो दिखाया वहां से, तुरंत वो हो गया कि नहीं, अब इसमें आप आ गए हैं, आप पैसे दीजिए या आप ये करिए तो हम आपको, नहीं तो वीडियो लीक कर देंगे। ये जो चीजें हुई हैं, ये क्या है, इससे कैसे बचें हमारे श्रोता?
1: जब आपने किया ही नहीं है तो वीडियो वायरल होकर क्या ही होगा?
0: पुलिस की सहायता लेना चाहिए,
1: जरूर लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस करते इसलिए नहीं है जो कि खुद डर जाते हैं कि पुलिस हम पे दबाव डालेगी कि तुमने एक्चुअल में किया, तुरंत पुलिस की सहायता ली जाए, FIR की जाए, नजदीकी जो भी साइबर कार्यालय है वहाँ।
0: सबसे पहले तो अपना डिवाइस बंद कर दिया जाए कुल मिला के।
1: नहीं, डिवाइस बंद नहीं करना, जो सामने वाले से वीडियो आए पहले तो उसको ब्लॉक कर दो। अगर उसके पास आपका कुछ डेटा है तो जो भी आपके क्लोज में लोग थे या आपका फ्रेंड सर्कल है उनको सूचित कर दो कि भैया मेरे साथ ये चीज हो रही है, अगर आपके पास कोई पैसे लेने के लिए आता है तो मत देना, ताकि आप खुद को भी सेफ साइड कर लो और सामने वाले को भी सेफ साइड कर लो। और मेरा मानना तो ये है, जो दूसरा साइड है जिसके साथ नहीं हुआ है लेकिन वो क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में है, तो भैया अगर आप इतने अच्छे फ्रेंड सर्कल में हो या क्लोज में हो तो उनके जिसका भी जो भी एरर आ रहा है, जैसे मान ले बहुत सारे वीडियो कॉल्स में देखा जाता है कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में पैसे सेंड कर दो,
0: जी जी जी,
1: या मेरे को यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ पे पैसे नहीं लाया, मेरे को पैसे सेंड कर दो
0: जी।
1: तो जो उनका रिलेटिव हो, जैसे मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी को फोन लगा के बोल दो आंटी तबीयत खराब है कि नहीं है, मेरे पास ये फोन आया था इसलिए मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, अगर है जरूरत है तो आप जरूर सेंड करो। लेकिन जब आंटी ही मना कर दे कि नहीं बेटा मैं तो सस्त हूँ, घर पे हूँ, आ जाओ मिल लो, बहुत दिनों से बात नहीं हुई,
0: तो फिर इमोशनल ब्लैकमेल, एकदम तुरंत
1: ब्लैकमेल ना हो,
0: बिल्कुल तुरंत उस चीज को चेक करें और फिर उसके बाद पहले उस बात पे पूरी तरीके से भरोसा करें, उसकी तहकीकात करें, फिर उसके बाद काम करें। क्या कानूनी जो बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या कुछ इसके लिए बदलाव भी हुए हैं, कुछ नियम कानून बने हैं भारतीय?
1: कानून तो बहुत सारे बने हैं, कॉमन पर्सपेक्टिव से देखें तो उन कानून का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ बैक एंड सपोर्ट नहीं होगा तो फिर आप जो गलत पक्ष है उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दोगे कि हम तो कुछ भी करें, हम पे कोई निगरानी नहीं होगी, हम पे कोई एक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग अब ओपन हो चुके हैं कि हमारे साथ ये चीज हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में फिर भी हम देखा जाए या एक इमोशनल मेंटल प्रेशर के उसमें देखा जाए, बहुत सारे लोग नहीं बताते अभी भी, लेकिन मैक्सिमम चीजें मैं कहूंगा 20-25% चीजें ओपन हो चुकी हैं। अब वो इतनी अच्छी ओपन हो चुकी हैं कि टाइम के साथ धीरे धीरे बाकी चीजें भी ओपन होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पर अब कंट्रोल आया है।
0: ओपन वाईफाई हमने आजकल देखा है कि रेलवे स्टेशन पे हो गया है,
1: सार्वजनिक क्षेत्र पे हो गया है,
0: सब जगह आजकल मिलने लगा है, तो क्या ऐसी जगह से कई लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलिए हमें
1: नेट मिल गया,
0: फ्री नेट मिल रहा है तो उसका उपयोग कर लिया जाए। अगर आप ऐसी जगह पर नेट एक्सेस करते हैं तो किन चीजों की सावधानी बहुत जरूरी है?
1: मेरा तो ये सुझाव रहेगा ऐसी जगह पे नेट का उपयोग ना ही करो।
0: ठीक है,
1: अगर आपके पास मान लेते हैं डिवाइस में नेट खत्म हो गया, अपन को ऑनलाइन किसी चीज की जरूरत है, भैया रिचार्ज करा लो। डेटा सिक्योरिटी बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है,
1: ये नहीं कह रहा हूँ हर नेटवर्क में वो रहता है कि आपका डेटा हैक हो जाएगा, लेकिन ओपन नेटवर्क में अगर आप चाहो तो कोई भी एक बंदा आपके डिवाइस को चेक कर सकता है कि वो ओपन डिवाइस से कनेक्टेड है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इन अ सेंस एक व्हाइट हैट और एक रेड हैट हैकर्स होते हैं, मैंने चूंकि पूरा कोर्स किया है इस फील्ड में तो मैं बता सकता हूँ, जो हैकिंग फील्ड होती है, हमने एक एक्सपेरिमेंट सर ने कराया था हमारे, उनने अपना वाईफाई ओपन करवा दिया था, और क्योंकि हमारे पूरे बैच में बहुत सारे लोग थे तो कुछ लोगों ने कनेक्ट किया, उनने सबसे सिंपल सा एक चीज बोली, उनने ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि ये मेरा वाईफाई नेटवर्क है, आप इसको यूज करो. उनने बस नॉर्मल सा कमांड दिया था कि आप आपके क्लोज बंदे को, जो भी आपके क्लास में ही बैठा उसी बंदे को एक पर्टिकुलर ये वाला मैसेज करो. वो मैसेज भी बहुत सिंपल था कि आज मैं इस क्लास में आया हूँ, हमने कल ये सीखा था, नॉर्मल सी समरी थी. जिन लोगों ने उस वाईफाई से कनेक्ट किया था उन लोगों के मैसेज पहुंचे ही नहीं, वो बीच में इंटरप्ट हो गए और उनके पास तीसरा मैसेज पहुंचा जो सिंपल सा एक स्टेटमेंट था, ये गलत है, मुझे नहीं पता, मैं एब्सेंट था. सिर्फ मल सा इतना, मुझे फंसाया जा रहा है, बस इतनी सी तीन चार लाइनें थी उसमें. तो जो दूसरा वाला था, ये तो मैंने किया नहीं, ये कैसे हुआ, ये सिंपल सा उनने एक हमें एक बेसिक उनने रन डाउन दिया था कि ये भी हो सकता है अगर आप मेरे ओपन नेटवर्क से कनेक्ट करो. अब क्योंकि मैं हूँ, मैं मिसयूज नहीं करूंगा, लेकिन सामने वाला क्या करेगा इसका आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते.
0: बिल्कुल, एआई से भी अभी बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, इससे किस तरह से बचें और किस तरह से जो हमारे जो श्रोता हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखें.
1: मैम, एआई का सबसे बड़ा अभी जो सबसे वो चल रहा है, एक तो एआई वॉइस क्लोनिंग, जिसमें आपको परिजन की आवाज में फोन किया जाता है कि हमें एक्स वाई जेड की जरूरत है, कम से कम हेल्प कर दो, कुछ भी कर दो. दूसरा है डीप फेक. डीप फेक में आपको वीडियो कॉल आता है सामने वाले की शक्ल से, जो भी आपका परिजन है उसी की शक्ल आपको वीडियो कॉल में दिखेगी और उन्हीं का आपको वॉइस भी मिलेगी डीप फेक के अंदर. वो आपसे हेल्प मांगते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं बिना चीजें सोच के हम उनकी हेल्प भी कर देते हैं. वही बात है कि क्रॉस चेक करना यहाँ पे भी जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर हम आपको वीडियो कॉल पे या फोन के माध्यम से कोई ऐसी चीजें मांगता है तो कहीं ना कहीं आज की दुनिया में आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत तो बढ़ चुकी है. इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, अगर हम किसी भी साइबर चीज से बचना चाहें तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, या फिर ओटीपी ना शेयर करना हो गया, अननोन लिंक्स पे क्लिक करना ना हो गया, सिक्योर पासवर्ड होना शुरू हो गया. लेकिन एआई से कैसे बचें, तो सबसे बेस्ट इज टू स्टेप वेरिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्रॉस चेकिंग, इन टर्म्स ऑफ नॉट ओटीपी या मेल यहाँ पे भी आएगा वहाँ पे भी आएगा, वो तो अपनी जगह ठीक ही है, लेकिन एआई खुद एक मशीन है और जो आपके पास ओटीपी भेज रहा है वो भी एक मशीन है. वो कहते हैं कि एआई में जो आप नंबर डालोगे वो रैंडम से आएंगे, लेकिन एआई एक मशीन है. बीच में एक दो हफ्ते पहले एक रिसर्च हुई है
0: जी,
1: रिसेंटली रिसर्च है, उसमें ये साबित किया उसने एक सिंपल से कोड से कि एआई जो नंबर जनरेट करता है ये रैंडम नहीं होते. कोई भी इसको रिवर्स इंजीनियर करके एक्चुअल ओटीपी जो आपको गई है वो भी निकाल सकता है. और वायरस और मेलवेयर के चक्कर में जो कि आपके फोन के अंदर जो भी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं वो तो उसके पास पहुंच ही रहे हैं, तो उसको वो रिवर्स इंजीनियर करने की भी जरूरत नहीं है. आपको बस वो उस लिंक फोटो पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक किया, वायरस आ गया.
0: जो साइबर अपराध करते हैं और जो लोग इस तरह से दिमाग लगाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं?
1: भैया कम कर दो, सरकार सख्त हो चुकी है.
0: अच्छा.
1: पहले भले ही फ्री रेन थी, अब वो फ्री रेन नहीं बची है
0: जी.
1: अब हर सरकार, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल भी हम बात करें तो हर सरकार बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है और बहुत जल्द जल्द एक्शन ले रही है.
0: तो आप भले कितनी ऊंची उड़ान उड़ लें, आपके पर
1: कभी ना कभी तो फंसोगे. डिजिटल फुटप्रिंट अपना हर समय छूट जाता है, भले ही वो हैकर का हो, आपका हो, मेरा हो, डिजिटल फुटप्रिंट हर जगह है.
0: बिल्कुल.
1: अब उस डिजिटल फुटप्रिंट को यूज सामने वाला कैसे करेगा
0: जी?
1: पॉजिटिव में करेगा तो वो उसकी बात अलग है, नेगेटिव में करेगा तो उसकी बात अलग है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट वही है कि एक चोरी के सीन में कुछ ना कुछ सबूत मिलता है. इन टर्म्स ऑफ डिजिटल, हम क्राइम की बात करें, साइबर की बात करें, तो डिजिटल फुटप्रिंट आपका कहीं ना कहीं मिल ही जाता है.
0: तो कुल मिलाकर ये कहने की बात है कि जो हमारे जो श्रोता है वो इस बात का ध्यान रखें कि जितने अच्छे तरीके से आप अपने फोन का उपयोग करते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं, उतनी ही सतर्कता, उतनी ही जागरूकता भी जरूरी है. वास्तविक बने रहिए. कुछ भी ऐसा लगता तो पहले क्रॉस चेक करें. ज्यादा फेमस होने के चक्कर में अपनी चीजों को डिस्क्लोज ना करें, सेफली रखें, अपने पासवर्ड अच्छे से रखें और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने और अपनों के साथ रहें.
1: मैम, मैं कहना चाहूंगा जितने भी श्रोता हमको सुन रहे हैं, जो भी हैं, कभी भी अपनी ओटीपी या पर्सनल डिटेल, कार्ड का हो गया, सीवीवी हो गया, या कोई भी थर्ड पर्सन आपसे ओटीपी मांगे तो उसको ओटीपी कभी ना दीजा. सबसे बेस्ट और सिक्योर मेथड अगर रखना है तो वो है ओटीपी का. आप दो ही मत, आपका जो रिस्क है हैक होने का या डेटा जाने का वो बहुत कम हो जाता है अगर आपसे कोई मांगता है. वैसे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, भले ही वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, आपसे ओटीपी मांगेगा ही नहीं. सबने अपने अपने डिस्क्लेमर डाल के रखें कि हमारी ओर से ओटीपी नहीं मांगा जाएगा. लेकिन अगर कोई बाय चांस मांगता भी है तो पहले तो आप उससे उसकी आईडी वगैरह ले लीजिए, फिर भी ओटीपी ना दीजिए, आईडी की फोटो लेके पुलिस में कंप्लेंट कर दो, लेकिन ओटीपी ना दो
0: जी।
1: सबसे बेस्ट सिनेरियो ये
0: नो मतलब नो। बेहद सार्थक और विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मुझे मौका दिया अपनी पक्ष रखने का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
0: ये रही हमारी आज की जानकारी टेक गुरु में कि किस तरह साइबर अपराध हैं, चुनौतियां हैं और उसमें कैसे सुरक्षा हो सकती है। परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुन्नानी का, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैखवार। तो आज का कार्यक्रम बस यहीं तक, और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामाजी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को। कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, कार्यक्रम के पिछली कुछ कड़ियों से हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के इतिहास की उन घटनाओं और उन महत्वपूर्ण मोड़ों की, जिसके कारण हमारे देश की सशस्त्र सेनाएं आज के इस प्रतिष्ठित मुकाम पर पहुंची हैं। श्रोताओं, ऐसा ही एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है सन 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। जैसा कि हमने कार्यक्रम की पिछली कड़ी में इसका जिक्र भी किया था कि इस युद्ध के होने के क्या कारण थे और ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण भारत ने इस युद्ध में ऐसी निर्णायक भूमिका निभाई, जिसके कारण एक नए देश यानी बांग्लादेश का जन्म हुआ। चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि इस युद्ध की विजय में हमारी सेना के तीनों अंगों ने अपने शौर्य और पराक्रम का जौहर किस तरह दिखाया कि मात्र 14 दिनों के भीतर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। हमारी इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए इससे जुड़े हर तथ्य को लेकर हमारे बीच एक बार फिर उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
3: जय हिंद श्रोताओं। 71 का जो युद्ध हुआ था
2: जी,
3: उसमें जो हमारे को विजय हासिल हुई थी, उसमें तीनों जो अंग हैं सेना के
2: जी,
3: आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनकी जो ज्वाइंटमैनशिप थी वो काफी यूनिक थी
2: जी।
3: वाजिब है कि इसी कारण से जो है हमें विजय भी प्राप्त हुई
2: जी,
3: है। तो इन तीनों अंगों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था
2: जी।
3: इसको हम विस्तृत में जानने के लिए मैं चाहूंगा कि हम एक एक करके, जैसे आज हम इंडियन एयरफोर्स का जो रोल था उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे
2: जी। बिल्कुल, जैसा कि उसका तो आदर्श वाक्य है सर कि नभ स्पर्शम दीप्तम, यानी गौरव के साथ आकाश को छूना।
3: बिल्कुल सच कहा आपने, बिल्कुल सही कहा
2: जी।
3: यही जो विक्ट्री उन्होंने प्राप्त करी
2: जी, बिल्कुल गौरव के साथ।
3: बिल्कुल बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स जो है इट प्लेड ए मेजर रोल ड्यूरिंग 71 वॉर
2: जी।
3: उनका जो सपोर्ट था आर्मी को ग्राउंड वॉरफेयर में और नेवी को सी में, इट एक्चुअली टर्न टू बी ए विनिंग फैक्टर फॉर दिस वॉर। तो 71 में अगर हम देखें जो इंडियन एयरफोर्स थी उसका एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन हो चुका था
2: जी।
3: और वो एक काफी फॉर्मेडेबल फोर्स बन चुकी थी, जिसमें कि मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एयरफोर्स हो चुकी थी। यानी कि यूएसए, यूएसएसआर, चाइना और फ्रांस के बाद जो है
2: भारत का नंबर
3: भारत
2: था।
3: की एयरफोर्स का नंबर आता था
2: जी।
3: एंड इंडियन फोर्स हैड अराउंड 39 स्क्वाड्रन्स एट दैट टाइम, जिसमें से कि 5 बॉम्बर स्क्वाड्रन्स थे। और इसमें से जो 39 में 15 जो स्क्वाड्रन्स थे उनके पास सुपरसोनिक फाइटर प्लेन्स के थे।
2: अच्छा जी।
3: क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज चलने वाले जो होते हैं
2: जी।
3: और हमारे को जो देश में जो प्रोटेक्शन के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, जिसमें कि हमें दुश्मन के आने वाले कोई जहाज है या मिसाइल है उसके बारे में पता चल जाता है। और ये हमारे देश की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एयरफील्ड्स के ऊपर इम्पोर्टेंट वाइटल इंस्टॉलेशंस जो होते हैं वहाँ लगे होते हैं सब जगह पे। तो इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट था उस समय।
2: ये भी सर इंडियन एयरफोर्स का ही हिस्सा
3: जी, इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा होता है। तो इसमें जो रेडार कंट्रोल जो गन्स थी और सरफेस टू एयर मिसाइल्स वगैरह थी वो इंडक्ट हो चुकी थी, तो उस कारण से सिस्टम हमारा काफी मजबूत था। और इसके अलावा एयरफोर्स में जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, हैप्टर्स थे, मैरिटाइम रेकी स्क्वाड्रन थी उनके इन्वेंट्री में, तो इन सब के कारण जो है जो इंडियन एयरफोर्स थी वो एक बहुत ही इफेक्टिव आर्म बन चुकी थी,
2: सशक्त वायुसेना थी।
3: अब इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें उस समय पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 13 स्क्वाड्रन थी जिसमें से कि 12 उसने वेस्टर्न फ्रंट पे डिप्लॉय करी हुई थी और एक जो है यानी बांग्लादेश में स्क्वाड्रन थी। एंड कंपैरेटिवली जो इंडियन एयरफोर्स थी उसके बाद 28 स्क्वाड्रन थी जो वेस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉयड थी और 11 ईस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉयड थी। तो इंडियन एयरफोर्स हैड ए प्रॉपर डोमिनेंस ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। जब ये युद्ध शुरू होने वाला था तो इंडियन एयरफोर्स हैड वेरी वेरी क्लियर कट टास्क ग्राउंड पे जो फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एब्सोल्यूट एयर डोमिनेंस क्रिएट करना है। एंड उसके लिए जो है हमको अपने जितने ऑपरेशंस हैं काउंटर ऑपरेशंस हैं वो सब करने हैं, अब उनके जो एयर बेसिस हैं उनकी सुरक्षा प्रॉपर करनी है और नेवी को जो है सपोर्ट देना है बाय प्रोवाइडिंग मैरिटाइम सपोर्ट देना है उनको, और जो भी मतलब आर्मी के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट है जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह प्रोवाइड करने हैं, वो दीज टास्क वर क्रिस्टल क्लियर एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स वर क्रिस्टल क्लियर टू एन एयरफोर्स, और इसके लिए काफी थॉरो प्लानिंग प्रिपरेशन हो चुका था। तो हुआ फिर वही कि जैसे हमने जिक्र किया था कि स्कर्मिशेस बढ़ती गई और नवंबर के बाद जो है टेंशन काफी बढ़ गया था दोनों कंट्रीज में, और 3 दिसंबर को वॉर का आगाज हुआ जो कि पाकिस्तान ने जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए थे हमारे वेस्टर्न फ्रंट में एयरफील्ड्स पे। तो उसके बाद जो है एयरफोर्स हमारी इंडियन एयरफोर्स कमेंस्ड ऑपरेशंस इमीडिएटली, और जैसे कि मैंने कहा था कि ये ऑपरेशंस उन्होंने बहुत ही थॉरली प्लान करे हुए थे और इनको जब कंडक्ट भी किया उन्होंने बहुत अच्छे मतलब इंटेंसिटी के साथ किया। आप ये समझिए कि जो इंडियन एयरफोर्स थी दे हैड अ प्रॉपर डोमिनेंस मतलब अबोव द पाकिस्तान एयरफोर्स, मतलब इतना डोमिनेंस था कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक तरह से डिफेंसिव मोड में डाल दिया था।
2: बात यही उठती है कि जब वो जानते थे कि हम इतनी सशक्त वायुसेना के साथ यहाँ हैं, तो भी उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हम पर हमला करें, पहले हमला
3: करने वाली बात तो ऐसा है कि इनफैक्ट उनका ये सोच है, उनकी अपनी डॉक्ट्रिन थी कि हम पहले हमला करके जो है इनको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं।
2: हाँ, जी।
3: तो ये तो उनकी सोच थी, लेकिन जब उन्होंने किया उससे पहले ही सिंस इंडियन एयरफोर्स वाज रेडी, तो जितने लाइक उस समय प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि जो एयरफील्ड्स जो थे आगे, उसके अलावा जो डेप्थ में भी हमारे जो एयरफील्ड्स थे तो एयरक्राफ्ट वगैरह जो है वो पीछे मूव कर चुके थे।
2: अच्छा, यानी पहले से हमें आभास था कि अब हमला होने वाला है,
3: हमें मालूम था, इट वाज वेरी वेल मतलब सब कुछ पता था कि ये आज हो गया कल होगा, मतलब होना तो है। एंड पाकिस्तान ने किया वो उनकी डॉक्ट्रिन के हिसाब से किया था,
2: कि वो हमेशा से उनकी पॉलिसी रही,
3: पॉलिसी रही है। एंड हमारी पॉलिसी ये रही है कि हम जनरली कभी वी आर नेवर द फर्स्ट वन टू अटैक ऑन एनीवन, है ना। जैसा कि अब हम इस जिक्र कर रहे थे कि इस वॉर में दोनों फ्रंट पे लड़ाई हो रही थी, वेस्टर्न फ्रंट पे भी हो रही थी, ईस्टर्न फ्रंट पे भी हो रही थी। तो अगर हम जिक्र करें वेस्टर्न फ्रंट का, तो वेस्टर्न फ्रंट में आईएफ के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा फ्रंटेज है, मतलब रन ऑफ कच्छ से शुरू होके लद्दाख तक
2: जी।
3: इतना बड़ा मतलब उनके पास फ्रंटेज था जिसमें कि वो सारे के सारे उन्होंने ऑपरेशंस कैरी आउट किए, और इनकी एग्रेसिवनेस थी जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जिसके कारण जो है पाकिस्तान एयरफोर्स में इन्होंने अपना कंप्लीट डोमिनेंस बनाया था। अच्छा, इसके कारण क्या होता है, जब एयर में डोमिनेंस होता है तो ग्राउंड फोर्सेस होती है, आर्मी होती है, उनको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है,
2: एक आत्मविश्वास बढ़ता है,
3: दूसरों को पता होता है कि हम एटलीस्ट ऊपर से हम सेफ हैं। है ना, तो जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा खतरा क्या होता है ग्राउंड पे, हम जब मूव करते हैं तो आर्टिलरी की जो फायरिंग आ रही होती है, एयरफोर्स की जो फायरिंग होती है, उसी से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता
2: है, बचाव होता है,
3: उससे बचाव हो जाता है। तो आईएफ ने काफी अच्छे ऑपरेशन इसमें वेस्टर्न फ्रंट पे कैरी आउट किए थे। स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो ऑपरेशन थे उसमें उन्होंने कराची का कि हमारी ऑयल इंस्टॉलेशन था उसमें अटैक किया था, रेड किया था। फिर रावलपिंडी में जो अटॉक की ऑयल रिफाइनरी थी उस पर अटैक किया था, मंगला डैम में पावर हाउस जो है डिस्ट्रॉय किया था, उस पर भी अटैक किया था, एंड इवन जो पाकिस्तान एयरफोर्स बेस था पेशावर में और भी काफी जो बेसिस थे वहां पे रेड्स करे थे। एंड एक इंट्रोडक्शन मिशन होते हैं जिसमें कि जैसे जो कॉन्वॉयज जा रहे हैं, व्हीकल्स कॉन्वॉयज होते हैं, ट्रेन्स जो मूव कर रही होती हैं विद द मिलिट्री स्टोर्स एंड ऑल, है ना, इम्पोर्टेंट ब्रिजेस जो होते हैं, तो आईएफ हैड मेजर सक्सेस इन दीज एस्पेक्ट्स। एंड इवन मतलब दे वर एबल टू अटैक कराची हार्बर एरिया एंड नेवल एस्टेब्लिशमेंट एट मनोरा, तो काफी अच्छे मतलब ये जो ऑपरेशंस थे जिसके कारण जो है पूरे वेस्टर्न फ्रंट में आईएफ हैड ए डोमिनेंस, प्रॉपर डोमिनेंस ऑफ द एरिया। देन एक और एयरफोर्स का जो एक बहुत बड़ा टास्क होता है क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड कराना। क्लोज एयर सपोर्ट का मतलब होता है जैसे हम आम पर्सन जब जारी होती है, आर्मी जब जारी होती है, जब उनको जरूरत होती है उस समय जो है एयरफोर्स मदद करती है। क्या अब बहुत बड़ा फेमस और हम सबको मतलब मेरे ख्याल से पता है वो बैटल ऑफ लोंगे वाला है।
4: जी जी,
3: जनरली जो है बॉर्डर मूवी के बाद तो बहुत ही फेमस हुई थी है। तो लोंगे वाला की मैं आपका मैं जिक्र यहाँ करना चाहूंगा क्योंकि इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आई एफ ऑपरेशन। लोंगेवाला जो है जैसलमेर सेक्टर में लोकेटेड है और ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट जो अप्रोच है पाकिस्तान से जैसलमेर की तरफ उसके ऊपर लोकेटेड है। तो इस वाइटल लोकेशन से जो है जैसलमेर का मतलब डिफेंस होता था। इसमें जो थी ये कंपनी डिफेंडेड लोकेलिटी थी जिसमें 23 पंजाब रेजिमेंट की कंपनी ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। कंपनी कमांडर फेमस उस समय मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे जो भारत में ब्रिगेडियर सब बने थे, महावीर चक्र अवार्ड मिला था जिन्हें। तो ये कंपनी डिफेंडेड लोकेलिटी के ऊपर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा भीषण अटैक किया जिसमें कि पूरी एक पाकिस्तान की ब्रिगेड थी, मतलब आप इससे अंदाजा लगे कि एक कंपनी और एक ब्रिगेड में 12 कंपनी, तो एक कंपनी के अगेंस्ट 1:12 के रेशो में और साथ में एक आर्मर्ड रेजिमेंट, तो कितना मतलब भारी अटैक आया। एंड कंपनी वॉज फाइटिंग वेरी ब्रेवली होल्डिंग द फोर्ट, ठीक है, उनको आगे नहीं जाने दे रही थी। लेकिन जब आपको एक अंदाजा तो होता है कि 1:12 के रेशो में जब हम लड़ रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि जब हम नहीं इसके आगे नहीं लड़ पाएंगे, तो उससे क्या है जैसलमेर के लिए अप्रोच ओपन हो जाएगी, जैसलमेर विल बी थ्रेटन्ड। सो फाइनली आर्मी गेव एसओएस कॉल टू एयरफोर्स कि भाई ये ऐसा चल रहा है। एंड ऑन 5th December नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है एयरफोर्स केम फॉर द क्लोज एयर सपोर्ट। एंड आप ये देखिए बाय मिड डे

0: तकरीबन ऑलमोस्ट 37 से 38 टैंक्स जो है बर्बाद किए, नष्ट किए। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मेजर चीज होती है, मेजर जो है एक विक्ट्री होती है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्लोज एयर सपोर्ट्स। ऐसे ही वेस्टर्न फ्रंट पे उन्होंने जो है IAF ने पाकिस्तान के काफी गन पोजिशंस, जो उनके व्हीकल्स थे, ट्रेन्स थी जो कैरी कर रही थी, उनको नष्ट किया। एंड उन सेक्टर में कहूता लोकेशन है वहां पे पाकिस्तान का कंसंट्रेशन था, जिसमें कि वो लोग अटैक का प्लान कर रहे थे अगले दिन पुंछ सेक्टर में। एयर फोर्स कैरिड आउट अ रेड ऑन दैट एंड दे डिस्ट्रॉयड द कंप्लीट पाकिस्तान आर्टी गन्स जो थी, एंड साथ ही साथ उन्होंने जो फोर्स थी अटैक करने के लिए आ रही थी उसको भी उन्होंने बहुत इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने वो अटैक कैंसिल कर दिया, नहीं कर पाए थे। तो ये क्या होता है, हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं क्लोज एयर सपोर्ट का? दिस इज हाउ द सिनर्जी एंड द कोऑर्डिनेशन जॉइंटमैनशिप कम्स अप, जिसके कारण जो है मतलब आपको विजय प्राप्त होती है।
1: यानी इतना अद्भुत समन्वय जो था वो सन 1971 के ही युद्ध में देखने को हमें मिला सबसे पहली बार।
0: नहीं, उससे पहले भी अगर हम को याद हो, हमने 47-65 में भी किया था। ऑफकोर्स जो है हमेशा से जो है करती आ रही है, सपोर्ट करती आ रही है। आज हम थोड़ा उसको विस्तृत में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि 71 में जो है एयरफोर्स वॉज वेरी फॉर्मिडेबल फोर्स, काफी
1: सशक्त भी हो गई थी,
0: सशक्त हो गई थी इसी कारण से ना। तो आज हम जो है उसका काफी जिक्र कर रहे हैं। तो सिमिलरली मतलब जो है IAF कैरिड आउट ऑपरेशंस इन हाजीपीर पास था, कारगिल था, छम सेक्टर था, मतलब हर जगह पे उन्होंने जो है काफी नुकसान पहुंचाया। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे मेंटेन्ड टोटल डोमिनेंस। अच्छा, इसके अलावा भी जो है इंडियन एयरफोर्स है और भी बहुत सारे तरीके से जो है इस वॉर में, देखिए एक तो उनका अपना रोल था, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स था, वो एयरक्राफ्ट से जो है मतलब जो डोमिनेंस ले रहे थे कि पाकिस्तान के एयरफोर्स को नहीं आने दे रहे थे। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुस के स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स थे उसके ऊपर वो लोग जो है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और साथ ही साथ जो है आर्म फोर्सेस को, नेवी को भी मतलब सपोर्ट कर रहे थे। तो उसमें इवन जो है कैजुअल्टी इवैक्यूएशन जो काफी बड़ा
1: मेजर,
0: घायलों को जो शिफ्ट करना, उसके साथ साथ जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट में जो है सामान पहुंचाने में, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं उसकी मदद से जो है जो ट्रूप्स का मूवमेंट है। एंड स्पेशली इस समय क्या हुआ था, क्योंकि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर दोनों जगह एक्टिव थे, तो हुआ है ऐसा कि जो है ईस्टर्न सेक्टर से ट्रूप्स को है वेस्टर्न सेक्टर में मूव किया है, ठीक है।
1: अच्छा,
0: एंड वो पॉसिबल यही हुआ हो पाया बिकॉज ऑफ द
1: एयरफोर्स। सर, अब मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी तक आपने पश्चिमी मोर्चे के बारे में बात की कि पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय वायुसेना ने अपना क्या योगदान दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि इसी दौरान हमने पूर्वी मोर्चे पर भी लड़ाई की है, तो यहाँ पर वायुसेना अपनी क्या भूमिका निभा रही थी?
0: सी, लड़ाई एक दिन शुरू हुई थी और IAF ने जैसे पश्चिम वेस्टर्न फ्रंट पे जो है उन्होंने रोल अदा किया, इन सिमिलर फैशन उनका रोल ईस्टर्न फ्रंट पे भी था। ईस्टर्न फ्रंट पे तो थर्ड को उन्होंने शुरू किया है, एंड बिलीव मी फोर्थ को जो पाकिस्तान एयरफोर्स है जो बांग्लादेश में है उस समय के इस पाकिस्तान में बिल्कुल इनएफेक्टिव हो गई थी। मतलब इंडियन एयरफोर्स हैड अ टोटल डोमिनेंस ऑफ दैट एरिया बाय नेक्स्ट डे।
1: अच्छा,
0: दैट काइंड ऑफ ऑपरेशंस दे कैरिड आउट।
1: तो सर, ये भी ये बताता है कि उनका बांग्लादेश पर यानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं था वहाँ की सरकार का, ना तो सैनिक के तौर पर या सैन्य तौर पर, ना आर्थिक तौर पर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने
1: जी।
0: और उस समय तक मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था कि अब हमारे बस की बात नहीं है इसको अपने साथ बना के रखना।
1: जी।
0: एक तो क्या होता है वो डिमोरलाइजिंग फैक्टर आ चुका होता है
1: जी।
0: जो लोग लगातार वहाँ पे एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस रहे हो, दिस वाई फील की मतलब उनमें भी एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर तो आ ही गया होगा
1: जी,
0: है ना।
1: जिस तरह से सर अंग्रेजों को ये सन 42 या 40 से लग गया था कि अब देश छोड़ना पड़ेगा।
0: एग्जैक्टली, तो शायद वही बात थी। तो ईस्टर्न फ्रंट में अगर हम जिक्र करेंगे तो IAF कैरिड आउट सेम काइंड ऑफ ऑपरेशंस, उसमें उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट अगेन रोल प्ले किया था, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस कैरी आउट किए थे, क्लोज एयर सपोर्ट के किए थे। और यहाँ सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँ कि उस समय अगर आप बांग्लादेश की टेरेन देखते हैं तो उसमें काफी सारी रिवर्स एंड नाला काफी ज्यादा है,
1: पूरा डेल्टा इलाका ही है।
0: एग्जैक्टली, तो यहाँ पे

0: बहुत बड़ा हेल्प जो थी आईएफ ने दी, दैट वाज बाय कैरिंग आउट हेलीबॉर्न ऑपरेशंस एंड एयरबॉर्न ऑपरेशंस।
1: अच्छा,
0: हेलीबॉर्न ऑपरेशंस का जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो आर्मी है उसको हेलीकॉप्टर की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना होता है। अब ये सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन जब दुश्मन नीचे से फायर कर रहा है उसके इलाके से आप जा रहे हैं, देखिए एयरफोर्स वाज एबल टू मेंटेन एयर डोमिनेंस, तो वो पाक एयरफोर्स को तो नहीं आने दे रही थी, लेकिन नीचे आर्टिलरी की गन्स है, जो पाकिस्तान का सोल्जर है उसके पास भी एक राइफल भी है, है ना, तो
1: उनकी पहुंच में,
0: उनकी पहुंच में है। इस टाइम पे जो है हेलीबॉर्न ऑपरेशन कैरी आउट करना काफी मतलब एक साहस भरा कार्य था। और 71 में इंडियन आर्मी में एक तरह से देखा जाए तो पहली बार हेलीबॉर्न ऑपरेशंस लॉन्च हुए थे जो है, एंड इससे बहुत मदद मिली, जैसे मैंने पहले ही बोला कि रैपिड मूवमेंट में ग्राउंड फोर्सेस के। पूरा अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न सेक्टर में, तो हेलीबॉर्न सॉर्टी मतलब जो है आईएफ ने कैरी आउट करी थी ऑलमोस्ट 400+।
1: क्या बात है
0: जी, है
1: जी।
0: और उसमें उन्होंने तकरीबन 3,000 से भी ज्यादा जो है ट्रुप्स को, जो पूरे फुली इक्विप थे, उनको जो है मोबिलाइज किया। और अगर हम इक्विपमेंट देखें, आर्टिलरी गन्स जो है, एमिनेशन जो है, भारी, इतना काफी भारी इक्विपमेंट होता है, उसको उन्होंने मतलब जो है मोबिलाइज किया था। और हेलीकॉप्टर्स भी उस समय मतलब ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स के पास बहुत ज्यादा थे, दे हैड मतलब सर्विसिबिलिटी वगैरह सब मिला के जो है उनके पास 12 हेलीकॉप्टर 14 हेलीकॉप्टर्स होते थे। तो मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद, देखिए जब रिसोर्सेज कम है, हेलीकॉप्टर कम है, तो उनको उतनी शॉर्टेज ज्यादा करनी पड़ती थी,
1: चक्कर ज्यादा लगाने पड़ते थे।
0: तो आप ये देखिए हर एक चक्कर में उनको मतलब कितना ज्यादा एक्सपोजर है, तो उतना ज्यादा खतरा है। तो ये जो
1: बार बार उड़ाना
0: जो पायलट्स थे उनकी हिम्मत देखिए आप,
1: बिल्कुल सर,
0: और वो कंटिन्यूअसली करते थे, मतलब जो है कंटिन्यूअसली रहता था, इट इज नॉट दैट कि रुक के ब्रेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो मेजर एयरलिफ्ट किया था इन्होंने, 4-5 GR की कंपनी थी उसको मतलब जो है पूरी बटालियन का एक्चुअली लिफ्ट किया था, कोलारा से सेलेक्ट करके एक जगह है वहां गए थे। तो 12 घंटे में इन्होंने पूरी की पूरी जो है बटालियन को हेलीलिफ्ट किया था, ठीक है। और इसमें आप ये देखिए तकरीबन जो है 600 से ज्यादा ट्रुप्स थे, 12 टन से ज्यादा इक्विपमेंट था
1: सर, कितना 12 घंटे
0: 12 घंटे में इन्होंने किया था।
1: क्या बात?
0: और इसमें कन्फर्म 66 से 70 सॉर्टीज लगी थी, तो उतनी बार वो लगातार जो है
1: उड़ान
0: भर रहे हैं, जा रहे हैं, और उस समय दुश्मन भी फायर कर रहा है, इट्स अ डेयरिंग ऑपरेशंस जो है,
1: बहुत पराक्रम की बात है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सिमिलरली दे कैरिड आउट अदर ऑपरेशंस आल्सो, जिसमें कि उन्होंने अगेन इंडियन ट्रुप्स को जो है मेघना रिवर क्रॉस कराने में मदद करी थी। और जो बिगेस्ट हेली लिफ्ट का जो ऑपरेशंस कैरी आउट किया था, ब्राह्मण बारिया से नरसिंहगढ़ी की जगह है
1: जी।
0: तो इसमें उन्होंने तकरीबन जो है 1400 आर्म ट्रुप्स जो है, आर्म ट्रुप्स में क्या होता है कि पूरा जवान जो है पूरे इक्विपमेंट के साथ, वेपन के साथ, एमिनेशन के साथ होता है, तो उसको उतना वजन होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, और उसको उनको जो है उन्होंने क्रॉस कराया था। इट वाज अ मेजर ऑपरेशन कैरिड आउट बाय देम। सिमिलरली एक और जो काफी जिसमें मदद मिली थी, दैट वाज अ पैरा ड्रॉप, जो पैरा बटालियंस होती हैं उसको यहाँ पे ड्रॉप कराया था। तो तंगेल का ऑपरेशन काफी फेमस है, जिसमें एक पैरा बटालियन ग्रुप को, पूरे ग्रुप को जो है तंगेल जो जगह है उसके नॉर्थ में इन्होंने ड्रॉप किया था, ठीक है। पुंगली ब्रिज होता है जो जमालपुर तंगेल रोड पे था, उसको कैप्चर करने का टास्क था। ये जो ऑपरेशन किया गया था जिसमें पूरे की पूरी जो है पैरा बटालियन जो है ड्रॉप हुई थी, उसमें 48 एयरक्राफ्ट लगे थे, मतलब कितनी बड़ी फोर्स थी जिसमें पूरे कपड़ा ट्रांसपोर्ट जो है हुआ था। एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन जिसमें कि 800 से ज्यादा ट्रुप्स जो है को ड्रॉप किया गया था विद आर्म्स, एमुनेशन एंड इवन लाइट व्हीकल्स, जो जीप होती है ना, वो भी ड्रॉप हुई थी।
1: क्या बात?
0: अब देखिए इसको जब प्लान किया जाता है

0: कहाँ लैंड करने वाला, तो उस समय ही एक्सपोज्ड कंप्लीटली, तो वो जो है एनिमी फायर के लिए उस समय वो रहता है। तो इसलिए ये जो होता है इसमें प्रॉपर एक सिस्टम होता है कि पाथफाइंडर एक ग्रुप जाता है, जो लोकेशन होती है उसको वो लोग मार्क करते हैं ताकि प्रॉपरली जो है लैंड कर सके, उतर सके, ड्रॉप कर सके। तो ये ऑपरेशन में पहले पाथफाइंडर ग्रुप भी गए थे, और इवन दुश्मन को चकमा देने के लिए, उनको बुलावे में रखने के लिए एक और ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था।
1: अच्छा।
0: एक और जगह एयर ड्रॉप प्लान किया गया था जो कि वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर था, ताकि उनको यह ना पता चले कि कहां एक्चुअली ऑपरेशन हो रहा है।
1: दुश्मन कंफ्यूज
0: है। डिटेल में जो प्लान किया गया था ऑपरेशन था, और जो है उसकी सक्सेस में आप ये सोचिए कितना बड़ा मतलब आईएफ का हाथ था, जो है रोल था उन्होंने किया, एंड दैट्स व्हाई इट बिकेम वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशंस। इसी तरह से और भी मतलब जो अगर हम देखें, आईएफ ने जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कैरी आउट किए थे ईस्टर्न फ्रंट पे, उन्होंने स्पेशल मिशंस किए थे, रेड्स की थी, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस है ढाका यूनिवर्सिटी पे, जो उनको पता चला था कि पाकिस्तानी ट्रुप्स हैं वहाँ पे, तो उसके कारण उन्होंने उसमें रेड किया था, एंड स्पेसिफिक टारगेट्स को, स्पेसिफिक लोकेशन को उन्होंने जो है रेड में डिस्ट्रॉय किया था।
1: हाँ
0: जी। इसी तरह से 14 दिसंबर को जो ढाका में जो गवर्नमेंट हाउस था, जो गवर्नर हाउस था
1: जी, जी,
0: उसका रेड बहुत फेमस है
1: जी, बिल्कुल।
0: उसमें जो गवर्नर साहब थे, जो सिविलियंस का, मिलिट्री ऑफिसर्स का, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जो है उनके कॉन्फ्रेंस होने वाली
1: होने
0: थी,
1: वाली थी जी।
0: तो ये जानकारी मिली थी इंडियन आर्म फोर्सेस को, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का जो है इंडियन एयरफोर्स को टास्क दिया गया था। एंड जब वो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई उसके 30 मिनट के बाद जो है एग्जैक्टली पिन पॉइंट जो है इन एयरफोर्स ने उसके ऊपर अटैक किया था, एंड उन्होंने उसको इतना ज्यादा बर्बाद किया था कि जो गवर्नर साहब थे डॉक्टर मलिक, एंड उनके कैबिनेट ने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया था। दिस इज हाउ दे प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट, है ना
1: जी। तो श्रोताओ, आज हमने जाना कि भारतीय सेना ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारी थल सेना को आगे बढ़ने में किस प्रकार सहायता दी। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी और भामासर से हम इस युद्ध में सेना के पराक्रम को आगे भी जानेंगे। कीजिए इंतजार कार्यक्रम के अगले एपिसोड का, और कार्यक्रम का नाम है हमारी सेना हमारा गर्व। सर, इस कार्यक्रम में आप आज भी शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू पूर्वा जी, एंड जय हिंद श्रोताओं।
1: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपके अपने पूर्वा खले। तो दीजिए इजाजत अब इस कार्यक्रम से। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है रेडियो आजाद हिंद।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक भारत के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारे देश की सरहदों की अटूट ढाल यानी हमारी भारतीय थल सेना के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: शिवरात्रि को देखते हुए देश भर में सुरक्षा के
2: दादू।
3: हाँ बेटा।
2: दादू इधर आइए ना बालकनी में।
3: अरे बेटा मैं आराम कर रहा हूँ।
2: दादू प्लीज आइए ना।
3: ओफो, चलो चलो आता हूँ।
4: हाँ।
2: इधर आइए ना दादू।
4: बताओ बताओ बेटा।
2: ये देखिए ना दादू।
4: हाँ।
2: रोज सुबह सुबह मैदान में जो ये लोग दौड़ते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते, इतनी मेहनत करते, दादू ये सब सेना के लोग हैं।
4: हमारी प्यारी बिटिया ये देख रही थी मतलब। हाँ बेटा, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। भारतीय सेना के जवान
2: दादू। ये भारतीय थल सेना क्या? क्या ये सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए हजारों लोगों का एक समूह है?
4: नहीं बिटिया, भारतीय थल सेना सिर्फ एक फोर्स नहीं है, इसे हजारों लोगों का समूह भी नहीं कहेंगे। ये तो हमारे देश की आन बान और शान है। ये हर खतरे के सामने खड़ी वो दीवार है जो देश को सुरक्षित रखती है। ये वो भरोसा है जिसकी वजह से हर भारतीय निडर होकर जीता है बिटिया।
2: मतलब दादाजी, भारतीय थल सेना हमें सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया गया एक योद्धाओं का समूह है।
4: बिल्कुल बिटिया, और सेना सिर्फ सीमाओं को ही नहीं बचाती, वो तो पूरे देश का विश्वास भी बचाती है। ये विश्वास कि देश सुरक्षित हाथों में है।
2: दादू, ये सेना क्यों बनी? पहले लोग खुद की रक्षा नहीं कर सकते थे क्या?
4: देखो बिटिया, एक समय था जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर जगह अलग अलग राजा, अलग अलग सेना और लगातार संघर्ष हुआ करते थे। ऐसे में छोटे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, यहाँ तक कि देश की आम जन की रक्षा का उत्तरदायित्व इन सैनिकों के पास था। तब विदेशी आक्रांता देश की संपत्ति को लूटने, जमीन हड़पने के लिए भारत पर हमला किया करते थे।
2: अरे बाप रे। यानी बाहरी ताकतें भी हमला करती थी और देश के अंदर भी अस्थिरता थी दादाजी।
4: हाँ बेटा, और तभी देश के कुछ दूरदर्शी और ताकतवर बुद्धिमान मार्गदर्शकों ने एक संगठित सेना बनाने का विचार किया। एक ऐसा बल जो पूरे देश की रक्षा कर सके। 1 अप्रैल 1895 को एक संगठित सैन्य ढांचे की शुरुआत हुई और 1947 में आजादी के बाद इस नए भारत के अनुसार फिर से बनाया गया।
2: मतलब ये सेना इतिहास से लेकर आज तक देश के साथ खड़ी है दादाजी। पर दादू, सेना का काम सिर्फ युद्ध लड़ना ही है क्या?
4: नहीं बिटिया, सेना का काम तो इससे भी और ज्यादा है, बहुत बड़ा है।
2: वो भला कैसे?
4: देखो बेटा, जैसे सीमाओं की रक्षा करना, दुश्मनों से मुकाबला करना, आतंकवाद से लड़ना, आपदा में लोगों की मदद, ये सब सेना ही करती है।
2: अच्छा।
4: हाँ, जब बाढ़ आती है, देश में कहीं भी भूकंप आता है या इसके अलावा भी कोई संकट होता है, तो सबसे पहले दुर्घटना स्थल पर जो पहुंचता है वो है हमारी थल सेना।
2: मतलब ये सैनिक असल में हमारे रक्षक है दादू।
4: हाँ।
2: अब एक सवाल है मेरे मन में।
4: पूछो बिटिया।
2: वो ये कि जब असली युद्ध होता है तब क्या परिस्थिति होती होगी?
4: बेटा, युद्ध कोई फिल्म नहीं है, ये तो पूरी योजना और अनुशासन से चलता है। जैसे सबसे पहले दुश्मन की जानकारी जुटाई जाती है, फिर हमले की रणनीति बनाई जाती है, तब जाकर फिर ऑपरेशन शुरू होता है और युद्ध लड़ा जाता है।
2: मतलब युद्ध में हर कोई मिलकर लड़ता है।
4: हाँ बेटा, युद्ध अकेले नहीं लड़ा जाता, ना ही जीता जाता, ये तो टीम वर्क है बिटिया।
2: दादू, क्या आज की सेना पहले जमाने की सेना जैसी ही है?
4: नहीं बिटिया, आज की सेना बहुत आधुनिक है। नया कलेवर, नई तकनीक, नया युद्ध कौशल।
2: वो भला कैसे?
4: देखो बेटा, राइफल, मशीन गन, टैंक, मिसाइल, ड्रोन, सैटेलाइट, बेहतरीन परमाणु हथियार, आज क्या कुछ नहीं है हमारे पास। हम हर लिहाज से दुनिया के किसी भी अन्य विकसित देश की सेना की तरह ताकतवर हैं।
2: दादू
4: हाँ?
2: तो इसका मतलब अब युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि तकनीक से भी जीता जाता है।
4: हाँ बिटिया बिल्कुल शाबाश।
2: दादू
4: हाँ बेटा,
2: ताकतवर बनने के लिए ट्रेनिंग भी तो करनी होती होगी ना?
4: बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है, जैसे सुबह 4 बजे उठना, लंबी दौड़, पहाड़ चढ़ना, हथियार चलाना, मानसिक मजबूती, कठिन परिस्थितियों में जीना, डर पर काबू पाना।
2: दादू
4: हाँ बेटा,
2: ये जवान देश की रक्षा कैसे करते हैं? पहाड़ों में, बर्फ में, रेगिस्तान में, जंगलों में, चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, आखिर ये हर मौसम और विपरीत स्थिति में डटे कैसे रहते हैं दादाजी?
4: क्योंकि बिटिया इनके लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं है, इनके लिए तो ये देश की रक्षा का प्रण है, प्रण। तभी तो इतनी सम्मानित है हमारी गौरवशाली थल सेना।
2: दादू
4: हाँ बेटा,
2: भारतीय थल सेना का उद्देश्य क्या है?
4: बिटिया भारतीय थल सेना सिर्फ युद्ध लड़ने वाली ताकत नहीं है, ये देश की संप्रभुता, अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल है। भारतीय थल सेना भारत की तीनों शस्त्र सेनाओं में सबसे बड़ी है, जो जमीन पर रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करती है।
2: दादू
4: हाँ बेटा,
2: आपने भी ना भारतीय थल सेना के बारे में इतना कुछ बताया है मुझे, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी।
4: हर बड़ी ताकत की तरह भारतीय थल सेना की भी एक लंबी कहानी है। आज जिस सेना को हम भारतीय थल सेना कहते हैं, उसकी नींव बहुत पहले यानी 1 अप्रैल 1895 को रखी गई थी। ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ।
2: हाँ?
4: लेकिन बेटा क्या तुम एक दिलचस्प बात जानती हो?
2: वो क्या भला दादाजी?
4: जब हमारा भारत आजाद नहीं था तब इस सेना को ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था।
2: सच में दादू? फिर तो उस समय ये सेना अंग्रेजों के अधीन रही होगी, क्योंकि तब हमारा देश आजाद नहीं था।
4: हाँ बिटिया, उस समय भारतीय सैनिक अंग्रेजी हुकूमत के तहत काम करते थे, लेकिन बहादुरी और साहस तब भी उनमें आज जितना ही रहा होगा, मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ।
2: अच्छा?
4: हाँ बेटा।
2: दादू तो फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी हमारी भारतीय थल सेना कब बनी?
4: 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तब उसी सेना को नए भारत के अनुसार फिर से संगठित किया गया और तब बनी हमारी अपनी भारतीय थल सेना।
2: मतलब दादू आज की सेना सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि आजादी के बाद नए भारत की ताकतवर तस्वीर भी है।
4: हाँ बिल्कुल बिटिया, इस सेना ने सिर्फ सीमाओं की रक्षा ही नहीं की बल्कि आजाद भारत को मजबूत बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, और अब भी अपनी जिम्मेदारी को ये बखूबी अंजाम दे रहे हैं।
2: दादू तो इसका मतलब हमारा हर सैनिक अपने साथ एक इतिहास भी लेकर चलता है।
4: हाँ बिटिया, हर वर्दी के पीछे सदियों का इतिहास, बलिदान और गौरव छुपा हुआ है। इसकी जड़ें भले ही बहुत पुरानी हैं, लेकिन आधुनिक भारतीय सेना का स्वरूप आजादी के बाद बहुत ज्यादा मजबूत हुआ और लगातार और ताकतवर होता जा रहा है।
2: तो क्या दादू ये सेना हमेशा से सीमा पर ही रहती है?
4: नहीं बिटिया, सीमा पर दुश्मन से मुकाबला करना इनका मुख्य काम तो है, लेकिन इसके अलावा भी ये देश के हर संकट में सबसे पहले खड़ी होती है। जब कहीं बाढ़ आती है, भूकंप आता है या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होती है, तब सबसे पहले भारतीय सेना ही राहत और बचाव के लिए पहुंचती है बेटा।
2: मतलब ये सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ती बल्कि जीवन रक्षक भी है दादाजी।
4: बिल्कुल, युद्ध में दुश्मन से लड़ना और संकट से अपने लोगों को बचाना, यही है भारतीय सेना की असली पहचान।
2: इतनी कठिन जिंदगी होती है इन देशभक्तों की। घर से दूर रहकर दादाजी अपने परिवार के लिए इन्हें डर नहीं लगता?
4: डर तो हर इंसान को लगता है बिटिया, लेकिन एक सैनिक अपने डर से बड़ा होता है, क्योंकि उसके दिल में देश के लिए प्यार और जिम्मेदारी होती है। जब पूरा देश चैन की नींद ले रहा होता है, तब तब हमारी भारतीय सेना का भारतीय जवान बर्फीली पहाड़ियों पर, रेगिस्तान की तपती रेत में और घने जंगलों में जाग कर पहरा देता है बेटा।
2: दादू, तभी तो हम सुरक्षित है ना, बिना किसी खौफ के हम अपने देश में कहीं भी आ जा सकते हैं।
4: हाँ बिटिया, भारतीय थल सेना सिर्फ एक बल नहीं है, ये हर भारतीय की सुरक्षा की 100% विश्वास की गारंटी है।
2: दादू,
4: हाँ,
2: जब युद्ध होता है तो क्या सच में सैनिक आमने सामने लड़ते हैं?
4: हाँ बिटिया, लेकिन जब भी युद्ध होता है तो वो सिर्फ हथियारों का नहीं होता बल्कि हौसले और बलिदान का भी होता है।
2: ये तो आपने सही कहा दादाजी। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि 1965 का युद्ध हो, 1971 का ऐतिहासिक युद्ध हो या फिर कारगिल की बर्फीली चोटियाँ, हर बार भारतीय थल सेना ने असाधारण साहस दिखाया है।
4: हाँ बिटिया, ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर जहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहाँ हमारे जवानों ने दुश्मनों को कई बार पीछे खदेड़ा है। यही नहीं, कई वीर सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के ध्वज हमारे तिरंगे को सबसे ऊंचा रखा है।
2: अच्छा दादू।
4: हाँ बेटा।
2: क्या सैनिक अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर रहते हैं?
4: हाँ बेटा, कई कई महीनों तक वे अपने घर, अपने बच्चों, अपनों से दूर रहते हैं। कोई त्योहार हो या कोई खुशी का मौका, उनकी ड्यूटी उनके लिए सबसे पहले आती है बेटा।
2: तो इसका मतलब हम जो त्योहार मनाते हैं उसके पीछे भी उन वीर जवानों का ही त्याग होता है दादाजी?
4: बिल्कुल होता है बेटा। जब हम दिवाली पर दीप जलाते हैं, तब कोई जवान सीमा पर अंधेरे में कहीं दूर दराज के निर्जन बीहड़ में पहरा दे रहा होता है।
2: अच्छा दादाजी।
4: हाँ बेटा।
2: अगर कोई देश की सेवा करना चाहे तो क्या वो भारतीय थल सेना में जा सकता है?
4: क्यों नहीं बिटिया, भारतीय थल सेना देश के युवाओं के लिए सबसे सम्मानजनक करियर में से एक है। यहाँ कई रास्ते हैं, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और अब अग्निवीर योजना के माध्यम से भी युवा सेना में शामिल हो सकते हैं। रुचि बेटा, अब तुम क्या सोच रही हो?
2: दादू, अब मेरा पुराना वही सवाल, क्या लड़कियां भी इसमें जा सकती हैं?
4: तो बेटा, मेरा भी वही पुराना जवाब। बिल्कुल, आज भारतीय सेना में महिलाएं भी अधिकारी बनकर देश की सेवा कर रही हैं। चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या कॉम्बैट सपोर्ट रोल हो, सेना में सिर्फ नौकरी नहीं मिलती बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, सम्मान और देश सेवा का अवसर मिलता है बेटा।
2: दादाजी, तो भारतीय सेना में जाना सिर्फ करियर नहीं, हर देशभक्त भारतीय का एक सपना है।
4: हाँ बिटिया, एक ऐसा सपना जो हर भारतीय के दिल में बसता है और जो जय हिंद कहते वक्त शरीर के हर रोम को देशभक्ति के जोश से भर देता है।
2: दादू।
4: हाँ बेटा।
2: आपने अभी CDS का नाम लिया था, ये क्या है? क्या इससे सेना में जाया जा सकता है?
4: हाँ बिटिया, CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसके माध्यम से युवा भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बन सकते हैं। ये परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा साल में 2 बार कराई जाती है।
2: दादाजी।
4: हाँ बेटा।
2: ये किस तरह का एग्जाम होता है, इसमें किस तरह की तैयारी करनी होती है, जरा ये भी तो बताइए।
4: हाँ हाँ बेटा, इसमें लिखित परीक्षा होती है जिसमें अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित जैसे विषय आते हैं। इसके बाद होता है SSB इंटरव्यू जहां उम्मीदवार की सोच, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को परखा जाता है।
2: सच दादू, यानी यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पर्सनैलिटी भी मजबूत होनी चाहिए।
4: बिल्कुल, एक सैनिक सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अपने साहस और चरित्र से बनता है बिटिया।
2: तो फिर बता ही दीजिए कि इसकी तैयारी कब और कैसे शुरू करनी चाहिए।
4: देखो बेटा, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के दौरान CDS की तैयारी शुरू कर सकते हैं।
2: अच्छा।
4: रोजाना समाचार और सामान्य ज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, साथ ही गणित और अंग्रेजी की पकड़ भी मजबूत होनी चाहिए। शारीरिक फिटनेस, दौड़, पुशअप, अनुशासन और सबसे जरूरी है कैडेट में आत्मविश्वास और नेतृत्व भावना का होना।
2: दादू।
4: हाँ बेटा।
2: सेना में कौन कौन सी पोस्ट होती है?
4: ये कोई आम पोस्ट नहीं है बेटा, सेना में इसे रैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
2: रैंक कहा जाता है।
4: हाँ, जो एक जिम्मेदारी और नेतृत्व की पहचान होती है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, और इन सबसे ऊपर जनरल का पद होता है। हर रैंक के साथ जिम्मेदारी और सम्मान दोनों बढ़ते जाते हैं।
2: दादू।
4: हाँ।
2: यानी भारतीय थल सेना हमारे वो रक्षक हैं जिनके लिए कर्तव्य सबसे ऊपर है और देश सबसे पहले।
4: हाँ।
2: आपने भारतीय थल सेना के बारे में इतना कुछ बताया, लेकिन ये इतनी बड़ी फोर्स आखिर काम कैसे करती है? इतने सारे सैनिक, उन्हें कौन संभालता है भला? क्या इसमें भी कोई सिस्टम होता है दादाजी?
4: देखो बेटा, इतनी बड़ी सेना को संभालने के लिए बहुत मजबूत और व्यवस्थित कमांड सिस्टम होता है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना बेटा, सबसे ऊपर होते हैं थल सेना अध्यक्ष, जिन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है, जो पूरी भारतीय थल सेना का नेतृत्व करते हैं। उनके नीचे कई वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो अलग अलग विभागों और क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालते हैं। यानी हर स्तर पर एक साफ जिम्मेदारी तय होती है।
2: अच्छा, हर रैंक के अधिकारी की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? जरा विस्तार से ये भी तो बताइए ना दादाजी।
4: बताता हूँ बेटा, जरा पानी दो पहले।
2: ये लीजिए आपका पानी।
4: लाओ बेटा। तो सुनो बेटा, लेफ्टिनेंट एक छोटी टुकड़ी का नेतृत्व करता है। शुरुआत यहीं से होती है।
2: अच्छा।
4: कैप्टन को अपने सैनिकों का मार्गदर्शन और छोटे ऑपरेशन को संभालना होता है। मेजर ऑपरेशन की योजना और क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल पूरी बटालियन की जिम्मेदारी उठाता है और ब्रिगेडियर एक ब्रिगेड का नेतृत्व करता है।
2: और लेफ्टिनेंट जनरल?
4: हाँ बेटा, लेफ्टिनेंट जनरल जैसे उच्च पद के अधिकारी बड़े स्तर की रणनीति बनाते हैं और कई यूनिट्स का नेतृत्व करते हैं बेटा। और इन सबसे ऊपर की रैंक होती है जनरल, यानी थल सेना अध्यक्ष।
2: वाओ दादू, ये तो कमाल है। अच्छा बताइए कि सेना में सैनिकों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है?
4: बहुत कठिन और अनुशासित ट्रेनिंग होती है बेटा इनकी। शारीरिक ट्रेनिंग जिसमें दौड़, चढ़ाई, बाधाएं पार कराई जाती हैं, हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, युद्ध रणनीति, कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की कला, ये सब सिखाई जाती है। उन्हें आधुनिक हथियार चलाना और अत्याधुनिक तकनीक से लैस उपकरण चलाना भी सिखाया जाता है।
2: अच्छा दादाजी।
4: हाँ,
2: इनकी ट्रेनिंग किन संस्थानों में होती है?
4: इसकी ट्रेनिंग देश के प्रमुख संस्थानों इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होती है। यहीं से तैयार होकर देश के युवा एक काबिल अधिकारी बनते हैं बेटा।
2: आपने बताया था कि सैनिकों को हर तरह की कठिन ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन क्या उनकी ये ट्रेनिंग सच में इतनी मुश्किल होती है कि वो हर तरह के मौसम और जगह पर काम कर सके?
4: सेना की ट्रेनिंग का मकसद ही यही होता है कि एक सैनिक हर मौसम, हर जगह खुद को ढाल सके। उन्हें ऐसी परिस्थितियों में भी काम करना सिखाया जाता है जहां आम इंसान कुछ घंटों में ही हार मान लेते हैं।
2: मतलब दादू, हमारे सैनिक दुनिया की सबसे कठिन जगहों पर भी ड्यूटी करते हैं?
4: बिल्कुल बिटिया। और ऐसी ही एक जगह है जहां जाना ही अपने आप में एक परीक्षा है।
2: कौन सी जगह दादू?
4: वहाँ सिर्फ दुश्मन ही नहीं होता बेटा, बर्फीले तूफान, ग्लेशियर की दरारें, ऑक्सीजन की कमी और हर पल मौत का खतरा। फिर भी हमारे जवान 24 घंटे हर मौसम में उस बर्फ की दीवार पर खड़े रहते हैं।
2: दादू, इतनी कठिन जगह पर रहना, वो भी लगातार, ये तो बहुत ही जोखिम भरा होगा दादाजी।
4: इसलिए तो उन्हें कहा जाता है हिमवीर, क्योंकि वो सिर्फ दुश्मन से नहीं प्रकृति से भी लड़ते हैं बेटा। और हर हाल में तिरंगे की रक्षा करते हैं।
2: अच्छा दादू, भारतीय थल सेना में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है?
4: परमवीर चक्र। ये भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है बेटा, जो युद्ध के दौरान असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है।
2: जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला था, जिन्होंने कारगिल युद्ध में ये तिल मांगे मोर कहते हुए दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा किया था और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया था। ये तो सच में हीरो होते हैं दादाजी।
4: बिटिया, ये सिर्फ हीरो नहीं होते, ये इस देश की सांसें हैं। सांसें, ये वो ताकत है जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। हम जिन खतरों से बेखबर हैं, ये जवान रोज उनका सामना करते हैं बेटा।
2: पर दादाजी, सेना में इतने सारे अधिकारी और सैनिक होते हैं, तो हर किसी को कैसे पता होता होगा कि उसे क्या करना है? कोई गलती नहीं होती क्या उनसे?
4: यही तो सेना की असली ताकत है बिटिया। स्पष्ट आदेश, क्लियर ऑर्डर्स और कड़ा अनुशासन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। सेना में हर काम एक तय व्यवस्था के तहत होता है बेटा। इसे कहते हैं कमांड सिस्टम।
2: कमांड सिस्टम? ये क्या होता है दादू, और ये कैसे काम करता है?
4: देखो बेटा, सेना में आदेश ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। सबसे ऊपर होते हैं थल सेना अध्यक्ष, उनके नीचे अलग अलग वरिष्ठ अधिकारी, फिर यूनिट कमांडर और फिर सैनिक। इस पूरी व्यवस्था को ऐसे बनाया गया है कि हर सैनिक को साफ पता हो उसे कब, कहां और कैसे काम करना है। समझी?
2: मतलब सब कुछ पहले से ही तय होता है।
4: इसी वजह से युद्ध जैसी कठिन स्थिति में भी कोई भ्रम नहीं होता।
2: अच्छा दादू, ये कमांड स्ट्रक्चर या जिसे तकनीकी विस्तार भी कहते हैं, ये क्या होता है?
4: दरअसल पूरे देश को सेना ने अलग अलग कमांड्स में बांटा है, ताकि हर क्षेत्र की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सके। जैसे कि उत्तरी कमांड जम्मू कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी कमांड पश्चिमी सीमा क्षेत्र, पूर्वी कमांड पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी कमांड दक्षिण भारत, मध्य कमांड मध्य क्षेत्र। बेटा
2: ओह, अब समझ में आया। हर कमांड अपने अपने क्षेत्र की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभालती है।
4: बिल्कुल सही बेटा, और हर कमांड के अंदर भी कोर डिवीजन, ब्रिगेड, बटालियन जैसी इकाइयां होती हैं। इसी मजबूत व्यवस्था की वजह से सेना हर परिस्थिति में तेज और सटीक निर्णय ले पाती है।
2: यानी सेना एक मजबूत सिस्टम में बंद कर हमारे देश की रक्षा करती है दादाजी।
4: हाँ बेटा, एकदम सही समझा तुमने। तुम जानती हो, एक बटालियन में लगभग 600 से 900 सैनिक होते हैं। कितने होते हैं?
2: 600 से 900 सैनिक?
4: हाँ, और कई बटालियन मिलकर एक बड़ी ताकत बनाती है।
2: ओह, मतलब जैसे स्कूल में सेक्शन, क्लास और फिर पूरा स्कूल?
4: हाँ बिल्कुल वैसा ही बेटा।
2: अच्छा दादाजी, इनके काम करने का तरीका कितना सिस्टमैटिक है ना?
4: हाँ बेटा, हर सैनिक को उसकी ड्यूटी और जिम्मेदारी दी जाती है। आदेश ऊपर से नीचे तक पहुँचते हैं और हर कोई अनुशासन से काम करता है। इसी वजह से इतनी बड़ी सेना भी एकजुट होकर काम कर पाती है।
2: अच्छा दादू, क्या ये सेना आधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है?
4: बिल्कुल बेटा, आज की भारतीय सेना में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीकों का भरपूर उपयोग किया जाता है। जैसे संचार प्रणाली, जिन्हें तुम आजकल जेंजीज क्या बोलते हो?
2: नहीं दादाजी।
4: सोचो बेटा, कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार, सैटेलाइट, डिजिटल मैपिंग वगैरह वगैरह।
2: मतलब सब कुछ बहुत प्लानिंग से होता है दादाजी।
4: तो सेना का हर कदम सोच समझ कर और एक सुनियोजित योजना के साथ उठाया जाता है बेटा।
2: दादू, अब समझ में आया कि इतनी बड़ी सेना कैसे एक साथ मिलकर हमारे देश की रक्षा करती है।
4: क्योंकि बिटिया, ये सिर्फ सैनिकों का समूह नहीं है, बल्कि अनुशासन, विश्वास और देशभक्ति का संगम है। भारतीय थल सेना वो शक्ति है जो हर खतरे के सामने दीवार बनकर खड़ी रहती है। ये वो विश्वास है जिसके कारण हर भारतीय निडरता से जी पाता है बेटा।
2: दादू, आपने भारतीय थल सेना के बारे में इतना कुछ बताया, लेकिन एक बात और बताइए, इतनी बड़ी फोर्स की कमांड भला कौन संभालता है?
4: देखो बेटा, भारतीय थल सेना सिर्फ बहादुरी से नहीं, बल्कि एक मजबूत संगठन और अनुशासन से चलती है। इसका नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास होता है और इसका नेतृत्व करते हैं थल सेना अध्यक्ष।
2: वाह, कितना बड़ा नेटवर्क है ये तो। अच्छा दादू, ये बताइए कि सैनिकों को कौन कौन से हथियार चलाने सिखाए जाते हैं?
4: बेटा, उन्हें आधुनिक हथियारों की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे राइफल, मशीन गन, ग्रेनेड, टैंक जैसे T-90 और अर्जुन, इसके अलावा मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस वगैरह।
2: मतलब यहाँ भी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस होती है दादाजी।
4: हाँ बेटा, आज की सेना सिर्फ ताकत नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का भी मजबूत संगम है। ये सेना सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से चलती है। वॉकी टॉकी और वायरलेस सेट ड्रोन और सर्विलांस कैमरे, ये सब अब रूटीन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हैं।
2: मतलब वो दूर छुपकर बैठे दुश्मन को भी आसानी से देख सकते हैं।
4: हाँ बिटिया, रडार और ड्रोन की मदद से दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। सबसे जरूरी, हर संदेश कोड भाषा में भेजा जाता है बेटा, ताकि दुश्मन उसे समझ ना सके।
2: वाह, मतलब सेना बहुत स्मार्ट भी होती है दादाजी।
4: तो यही टेक्नोलॉजी सेना को और भी ताकतवर बनाती है बेटा।
2: दादू, युद्ध में ऑपरेशन के दौरान कैसा मंजर होता होगा ना? मैं तो ये सोचकर भी कांप रही हूँ। जब सच में युद्ध होता होगा तो सेना कैसे काम करती है दादाजी?
4: युद्ध में हर कदम योजना के अनुसार होता है बिटिया। सबसे पहले दुश्मन की जानकारी जुटाई जाती है, फिर रणनीति बनाई जाती है और उसके बाद सैनिक अलग अलग टीम में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इन्फेंट्री आगे बढ़ती है, टैंक सपोर्ट देते हैं, तोपखाना दूर से हमला करता है और कमांडर पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित करता है।
2: सुनकर ही कितना रोमांचक लग रहा है दादाजी। इसका मतलब सब एक साथ मिलकर काम करते हैं।
4: हाँ बिटिया, युद्ध में जीत एकता, अनुशासन और रणनीति से मिलती है।
2: सैनिक रैंक का क्या काम होता है दादाजी?
4: देखो बेटा, सिपाही सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो जमीन पर लड़ने का काम करता है।
2: अच्छा।
4: उसके बाद हवलदार अपनी टीम को दिशा देने का काम करता है। सूबेदार अनुभवी होता है, वो नेतृत्व का काम संभालता है।
2: मतलब हर किसी की अपनी अहम भूमिका होती है।
4: हाँ बेटिया, यहाँ भले ही सबकी रैंक अलग हो पर यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हर सैनिक देश की रक्षा में बराबर का भागीदार होता है। हर रैंक के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है और देश के प्रति कर्तव्य भी।
2: दादू, मतलब ये सिर्फ पद नहीं बल्कि भरोसा है।
4: बिल्कुल बेटिया।
2: दादाजी, हाँ? सैनिकों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है?
4: बहुत कठिन और बहुत अनुशासित ट्रेनिंग होती है बेटा, और इसके कई चरण होते हैं।
2: कैसे?
4: सबसे पहले आता है शारीरिक प्रशिक्षण, जिसमें लंबी दौड़ 5 से 10 किलोमीटर करीब, बाधा दौड़, रस्सी चढ़ाई, दीवार पार करना, सहन शक्ति और स्टेमिना बढ़ाने का अभ्यास कराया जाता है।
2: अच्छा।
4: फिर आता है बेटा हथियार प्रशिक्षण, जिसमें राइफल, मशीन गन, पिस्तौल, ग्रेनेड फेंकना, लक्ष्य भेदन, फायर कंट्रोल और सुरक्षा नियम सिखाए जाते हैं। उसके बाद युद्ध कौशल या युद्ध रणनीति, जिसमें टीम मूवमेंट, नक्शा और कंपास या दिशा सूचक पढ़ना, रात में ऑपरेशन का अभ्यास कराया जाता है।
2: अच्छा दादाजी, मैंने सुना था कि इन जवानों को सर्वाइवल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, वो भला किस तरह का अभ्यास होता है?
4: हाँ बेटा, सर्वाइवल ट्रेनिंग में जंगल में जीवित रहना सिखाया जाता है। वहाँ कम संसाधनों में कैसे काम करेंगे, ठंड, गर्मी, बारिश, हर मौसम में टिके रहने की परीक्षा होती है बेटा। फिर आता है मानसिक प्रशिक्षण, ये सबसे कठिन अभ्यास है। इसमें तनाव में निर्णय लेना, डर पर नियंत्रण, अनुशासन और नेतृत्व करना सिखाया जाता है।
2: इतना कठिन अभ्यास? अच्छा दादू, हाँ? क्या उन्हें आधुनिक तकनीकें भी सिखाई जाती है?
4: बिल्कुल बेटा, उन्हें ड्रोन संचालन, कम्युनिकेशन सिस्टम, नाइट विजन उपकरण आदि तकनीकों का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है।
2: दादू, ये तो बहुत ही मुश्किल होता होगा ना? इतनी ताकत पाने के लिए ट्रेनिंग भी कितनी जी जान लगाकर करनी होती होगी ना?
4: हाँ बेटा, बहुत कठिन। सुबह से लेकर रात तक दौड़, पहाड़ चढ़ना, बाधाएं पार करना, हथियार चलाना और कठिन हालात में जीना, इन सबको गर्म लोहे सा तपाकर सब कुछ सिखाया जाता है बेटा।
2: सेना में आगे कैसे बढ़ते हैं दादाजी?
4: सेना में पद धीरे धीरे बढ़ते हैं बेटा, जैसे सबसे पहले लेफ्टिनेंट के पद से शुरू होकर कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर और फिर जनरल तक पहुंचा जाता है।
2: मतलब हर कदम पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, सही कहा ना मैंने दादू?
4: हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके अलावा उन्हें अपने देशवासियों से सम्मान भी तो मिलता है
2: दादू। क्या हमारे सैनिक देश के बाहर जाकर भी देश का गौरव बढ़ाते हैं?
4: बिल्कुल बिटिया, संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भारतीय सेना दुनिया में शांति स्थापित करने का काम करती है।
2: तो सेना का असली काम क्या होता है?
4: तीन बड़े काम होते हैं, देश की सीमा की रक्षा करना, युद्ध में दुश्मन से लड़ना, देश के अंदर संकट में मदद करना, यही सेना का असली काम है।
2: और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आए जैसे बाढ़, भूकंप, तब भी सेना आती है?
4: हाँ बिटिया, जब कोई मुसीबत आती है तो सेना ही सबसे पहले मदद के लिए खड़ी होती है बेटा।
2: और मैं सेना में जाना चाहूँ तो?
4: हाँ बेटा बिल्कुल, 12वीं के बाद NDA और ग्रेजुएशन के बाद CDS, बाकी की तैयारी के लिए पढ़ाई जिसमें मैथ्स, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी का अभ्यास और रोज व्यायाम, अनुशासन, आत्मविश्वास, ये ही चाहिए बस। बाकी सेना सिर्फ नौकरी नहीं है बेटा, ये एक अनुशासन से भरा हुआ जीवन है।
2: अच्छा दादाजी, सियाचिन के बारे में बताइए ना।
4: सियाचिन जहाँ तापमान 50 तक जाता है बेटा,
2: वहाँ कोई भी रह सकता है क्या?
4: सिर्फ हमारे शेर दिल सैनिक, इसीलिए उन्हें हिमवीर कहते हैं बेटा।
2: दादू।
4: हाँ बेटा।
2: अब समझ में आया कि हमारी सेना क्या है।
4: भारतीय थल सेना सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करती, ये देश की आत्मा की रक्षा करती है बेटा।
2: समझ गई दादाजी, आज आपने थल सेना के बारे में जो भी बताया मैं उसे हमेशा याद रखूंगी, और मेरे देश के हर जांबाज का मैं हमेशा सम्मान करूंगी। जय हिंद दादाजी।
4: जय हिंद बेटा, जय हिंद। अच्छा चलो अब मैं आराम करूंगा बेटा।
5: अभी आप सुन रहे थे रेडियो नाटक देश के संस्थान, सरहदों की अटूट ढाल, भारतीय थल सेना। श्रोताओं आपके साथ मैं भगवती सक्सेना,
4: मैं दीपक नेमा।
5: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन किया अमित गुंदानी ने, समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का, लेखन किया स्वाति गिरी ने, प्रस्तुति थी रेडियो आजाद हिंद की। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: नमस्कार श्रोताओं, आजाद हिंद में हम रोज करते हैं कुछ ऐसे वीर महापुरुषों की बातें जो अपने आप में अद्वितीय रहे हैं। वो लोग जो एक मिसाल बनकर आज भी सारे जग को रोशनी दे रहे हैं। उन वीरों की बातें यहां करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि सभी को उन जैसा ही बनने की प्रेरणा मिले और सभी का उद्धार हो।
1: इसी कड़ी में एक और मोती आज जोड़ा जाएगा और ये मोती है लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1856 को पंजाब में अपने नाना के घर दुड्डिक के ग्राम में हुआ। लाला जी का पैतृक घर लुधियाना जिले में जगराव नाम के छोटे से कस्बे में था, जहां लाला जी के पिता राधा कृष्ण जी स्कूल में शिक्षक थे। वे उर्दू के अच्छे ज्ञाता और स्वामी दयानंद के परम भक्त थे।
0: लाला जी को सेवा और साहित्य से गहरा प्रेम था। माना जाता है कि उन्हें साहित्य से लगाव और देश प्रेम का जज्बा अपने पिता से विरासत के रूप में ही मिला था। राधा कृष्ण जी की यही इच्छा थी कि पुत्र लाजपत उन्हीं की तरह दीन दुखियों की सेवा करे। इसीलिए उन्होंने पुत्र के लिए अच्छी शिक्षा का भी प्रबंध किया, ताकि वो समाज की कठिनाइयों को भली भांति समझ सके।
1: एक बार लाला जी के पिता बहुत बीमार पड़े। बालक लाजपत ने उनकी बहुत सेवा की और छोटे भाई बहनों को भी संभाला। पिता जब अच्छे हुए और उन्होंने जाना कि कितनी परेशानी के बीच स्वयं को रखकर लाजपत ने घर और उनकी देखभाल की है और नौकर के न होने पर भी सारा काम खुद किया है, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। बेटे को तकलीफ देने के लिए जब उन्हें ग्लानी हुई और उन्होंने लाजपत से ये कहा, तो लाजपत ने उन्हें रोक दिया। पिता की सेवा को अपना परम कर्तव्य मानते हुए उन्होंने इसे अपना सुख बताया।
0: बालक लाजपत की ये बात सुन पिता को पूरा भरोसा हो गया कि बेटा जरूर बड़ा होकर देश सेवा में ही अपना जीवन समर्पित कर देगा। शायद उनके आशीर्वादों के ही फलस्वरूप लाला लाजपत राय भारत के सबसे निष्ठावान सेवकों में से एक माने जाते हैं।
1: सही है, माता पिता के आशीर्वाद के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। लाला जी ने पिता की इस बात को गांठ बांध लिया और विद्यार्थी जीवन से ही सेवा कार्य में लग गए। वे अपने पिता की ही तरह उर्दू में लेख भी लिखते और भाषण भी करते। इससे उनकी योग्यता में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हुई। जब उन्होंने वकालत पास की तो सभी नतीजे बहुत ही बढ़िया आए।
0: फिर उन्होंने हिसार में वकालत शुरू की, क्योंकि बुद्धि उनकी विलक्षण थी और बोलने में तो वो तेज थे ही। बस बहुत जल्द सफलता उनके कदम चूमने लगी। बस एक बात यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि वो जो भी कमाते उसका अधिकांश हिस्सा वो सेवा कार्यों में लगा देते। हिसार में उन्होंने ही आर्य समाज की शाखा स्थापित की। इस कार्य हेतु अपने पास से 1500 रुपए की राशि उन्होंने दान की। हिसार में ही संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना उन्होंने की और भी बहुत कुछ केवल सेवा के उद्देश्य से किया।
1: लाला जी की कई सारी विशेष बातें हैं जो हम जानेंगे इस गीत के बाद।

0: बजाए चल।
1: हिसार में अपने कार्यों से लाला जी बहुत प्रिय नेता हो गए थे। आर्य समाज का मुख्य कार्य अछूतोद्धार था। लाला जी की भी इसमें विशेष रुचि थी। उन्हें किसी एक समुदाय को इस तरह समाज से काट देना ठीक नहीं लगता था। उन्होंने कांगड़ा और संयुक्त प्रांत के पहाड़ी इलाकों में जाके अछूतों के लिए बहुत काम किया।
2: किसी भी व्यक्ति के उद्धार में सबसे बड़ा हाथ होता है शिक्षा का, पर इस शिक्षा के प्रचार के लिए पैसा चाहिए होता है। लाला जी ने इसी काम के लिए 40,000 रुपये दान किए। इस पैसे से अछूतों के लिए पाठशालाएं खोली गईं। इसके अलावा आर्य समाज के स्कूलों में भी अछूतों को स्थान दिलाने की दिशा में बहुत काम किया। उनके ही प्रयासों से ये छात्र गुरुकुलों में भर्ती हो सकते थे।
1: नौजवानों की शिक्षा दीक्षा को लेकर लाला लाजपत राय बड़े चिंतित रहते थे। हूँ भी क्यों ना, आखिर देश का भविष्य नौजवान पीढ़ी ही तो होती है। अगर इसी पीढ़ी में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार अच्छी तरह न हुआ तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। अंग्रेजी स्कूलों में भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता था। इसके अलावा वो बहुत ही महंगे और खर्चीले भी थे। कॉलेज से लड़के पढ़कर निकलते थे तो वे बस साहब बन जाते थे। व्यवहारिक पक्ष से वो कमजोर भी होते थे। उनके मन में स्वदेश प्रेम नहीं के बराबर होता था।
2: इस बात पर लाला जी अक्सर सोचा करते थे कि ऐसा कॉलेज खोला जाए जिसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और संस्कृत भी पढ़ाई जाए। इससे ही नौजवानों में अपने इतिहास के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न होगा। ये विचार बहुत ही अच्छा था। इसका खर्चा भी वे कम ही रखना चाहते थे ताकि सभी को समान रूप से शिक्षा मिल सके, खासकर गरीब तबके के जहीन विद्यार्थियों को।
1: लाला हंसराज की मदद से लाहौर में कॉलेज भी खुल गया। इस कॉलेज का नाम दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज रखा गया। इस कॉलेज के लिए सरकारी सहायता लेना लाला जी को बिल्कुल गवारा न था। सभी सरकारी कॉलेजों के मुकाबले भी यहाँ की फीस सबसे कम थी। लाला लाजपत राय ने कॉलेज चलाने के लिए बहुत सा धन एकत्रित किया। फिर ऐसे ही कॉलेज भारत के कई और शहरों में भी खोले गए। इन कॉलेजों से ऐसे ऐसे क्रांतिकारी और देशभक्त पैदा हुए जिन्होंने भारत की उन्नति के लिए बहुत कार्य किया।
2: लाला जी ने शिक्षा को आगे बढ़ाने में जो कार्य किया वो अतुल्य है, पर तुम अपना कार्य भूल रहे हो इतिहास। श्रोताओं को एक अच्छा सा देशभक्ति गीत तो सुनवाओ।
1: हाँ।
3: सब

0: इस गीत के बाद अब आगे भी तो बताओ, और क्या क्या किया लाला जी ने?
1: अब तुम तो जानते ही हो कि कितने देशभक्त और सेवा भाव वाले व्यक्ति थे लाला जी। एक बार की बात है, उन दिनों देश में अकाल पड़ा, लाला जी से रहा न गया। उन्होंने पीड़ितों की सेवा करने का निश्चय कर लिया। प्रभावित इलाकों में जाकर वे अन्न और दूसरी सहायता पहुंचाने में लग गए।
0: वे क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। उन्होंने उर्दू दैनिक वंदे मातरम में लिखा, मेरा मजहब हक परस्ती है, मेरी मिल्लत कौम परस्ती है, मेरी हबादत खलक परस्ती है, मेरी अदालत मेरा अंतःकरण है, मेरी जायदाद मेरी कलम है, मेरा मंदिर मेरा दिल है, और मेरी उमंगें सदा जवान हैं।
1: धर्म के बारे में उनका विचार था, धर्म सिखाया नहीं जा सकता, वो उसी वातावरण में उन्नति पाता है जिससे विचारों की मलिनता हटा दी गई हो। धर्म ठीक विचार है, सही अनुभव है और उचित कार्य है। कितने लोग ऐसी सुलझी हुई बात कह पाते हैं?
0: उनके ये शब्द तो अनमोल हैं। जो धर्म वर्तमान सामाजिक ढांचे को कर्मों के आधार पर सही बताए और जायदाद विरासत और विवाह के कानून की बाबत प्रचलित विचारों का पक्ष ले, वो धर्म झूठा है। इस कड़कती हुई बात से उनके व्यक्तित्व का रौब और साहस झलकता है।
1: कई बार जेल यात्राएं की, कई बार उन्हें छल से फंसाया भी गया, पर अपने साहस को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जेलों में भी रहे तो पुस्तकें लिखते रहे। महान अशोक, श्री कृष्ण और छत्रपति शिवाजी पर उन्होंने पुस्तकें लिखी। इटली के महान क्रांतिकारियों मेज़िनी और गैरिबाल्डी पर भी उन्होंने पुस्तकें लिखी। वे अच्छे लेखक थे, अंग्रेजी के विद्वान थे, परंतु पुस्तकें उर्दू में ही लिखते थे। साधारण जनता के समझ में आने वाली भाषा उन दिनों उर्दू ही थी।
0: मांडले की जेल यात्रा से लौटते ही उन्होंने वकालत छोड़ दी, देश को ही समर्पित हो जाने का फैसला ले लिया। 1914 में कांग्रेस ने उन्हें एक डेप्यूटेशन पे इंग्लैंड भेजा। लाला जी काम खत्म हो जाने के बाद भी वहीं बने रहे, फिर वहां से जापान चले गए। जापान से लौटने को ही थे कि विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। भारत सरकार ने उन्हें लौटने की आज्ञा नहीं दी, इसलिए वे दोबारा इंग्लैंड होते हुए अमरीका निकल गए। वहां उन्होंने देश हित में काफी काम किया। उनकी पुस्तक यंग इंडिया वहां बहुत प्रसिद्ध हुई।
1: अरे इतिहास, अपनी धुन में इतने मगन हो कि गीत का समय हो गया ये भी भूल गए?
0: मैं इतिहास हूँ, कुछ नहीं भूलता। ये लो, तुम्हारा पसंदीदा देशभक्ति गीत भी लगा दिया। श्रोताओं के साथ तुम भी इसका आनंद लो।

0: हाँ, गीत तो बहुत ही सुंदर था, पर इससे भी सुंदर बात ये है कि तुम लाला लाजपत राय की बातें सुना रहे हो। आगे तो सुनाओ।
1: हाँ, तो आगे की बात ये है कि जब वे स्वदेश लौटे तो उन दिनों कांग्रेस का आंदोलन जोरों पर था। कलकत्ता के अधिवेशन में लाला जी इसके प्रधान चुने गए, पर थोड़े ही दिनों बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, पर बिना इसकी परवाह किए वो देश सेवा में रत रहे।
0: 1928 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया। कांग्रेस ने इसे बॉयकॉट किया और जहां भी ये कमीशन गया इसे विरोध ही झेलना पड़ा। देश भर में काले झंडों से इसका स्वागत किया जा रहा था। ऐसे ही जब ये जत्था लाहौर पहुंचा तो स्टेशन पर हजारों की भीड़ ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाना शुरू कर दिया।
1: लोगों की अपार भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लाला जी सबसे आगे विरोध में खड़े थे, इसलिए कई लाठियां उनके सीने में एक साथ लगी। भय से पीछे हट जाने के बजाय उन्होंने गर्जना की कि मेरी छाती पर लगा एक एक बार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की काठी में एक एक कील साबित होगा।
0: पंजाब केसरी थे वो, पर आखिर थे तो इंसान ही, कितना सहते। छाती लाठियों के वार से सूज गई और बुखार रहने लगा। अंत में इन्हीं वारों की वजह से उनके प्राण निकले और 17 नवंबर 1928 को वे धरती धाम से कूच कर गए।
1: भारत माँ के इस लाडले ने अपने जैसे कई वीर सपूतों को बनाने में अप्रतिम योगदान दिया और अपना ही नहीं कईयों का जीवन सफल किया। ऐसे महान देशभक्तों को शत शत नमन।

0: सत्ता फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे।
3: तब तक के लिए नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। दिन के ठीक 11 बजे हैं। डीजी श्रोताओं, प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम परिक्रमा। परिक्रमा कार्यक्रम में आप सुनते हैं साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी और साथ ही साथ मौसम का हाल। श्रोताओं, शहर के युवा संतूर वादक निनाद अधिकारी ने रूस में आयोजित प्रतिष्ठित ब्रिक्स मेलोडी 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने शहर और प्रदेश का मान बढ़ाया है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्रिक्स देशों के कलाकारों, शिक्षाविदों और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक संवाद और सहयोग को मजबूत करना था। निनाद ने उल्यानोस्क स्थित उल्यानोस्क स्टेट पेडगोजिकल यूनिवर्सिटी के सभागार में संतूर वादन की प्रस्तुति दी। निनाद ने बताया कि इसके अलावा मॉस्को के रशिया नेशनल सेंटर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भी उन्होंने प्रस्तुति दी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संवाद सत्र में भाग लिया। भारत की सांस्कृतिक विरासत, युवाओं की भूमिका, संगीत के जरिए देशों के बीच संबंध मजबूत करने पर उन्होंने अपने विचार भी साझा किए।

और अब बात करते हैं मौसम की। एक दिन पहले तेज गर्मी के बाद शनिवार को सुबह से रात तक मौसम ने तीन रंग दिखाए। दोपहर 2:30 बजे तक शहर खूब तपा, इसके बाद शाम छाए बादलों ने पारे की चाल ही थाम ली। रात करीब 8 बजे शहर के ज्यादातर हिस्सों में बौछारें पड़ी। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारों की रफ्तार तेज हो गई थी। बारिश के बाद हुई ठंडक से सिर्फ 3 घंटे में तापमान करीब 7 डिग्री गिर गया। शाम 5:30 बजे पारा 39.8 डिग्री पर था, ये रात 8:30 बजे गिरकर 33 डिग्री पर आ गया। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि बादल नहीं छाते तो शनिवार को दिन का तापमान 43 डिग्री पर पहुंच जाता। इसकी वजह यह है कि सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को पारे की चाल तेज थी। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार दोपहर 2:30 बजे दर्ज तापमान 2.5 डिग्री अधिक रहा। 3 घंटे बाद यानी शाम 5:30 बजे शुक्रवार और शनिवार तापमान लगभग एक जैसा हो गया था। शनिवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया। शुक्रवार के मुकाबले इसमें 0.2 डिग्री की गिरावट हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्वी मध्य प्रदेश के पास चक्रवाती हवा का घेरा बना हुआ है। राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भी चक्रवाती हवा का घेरा बना है। यहां से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होती हुई झारखंड तक एक ट्रफ लाइन यानी समंदर से नमी लाकर बारिश करवाने वाली रेखा बनी थी। इसके कारण दो तरफ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आई। इसी नमी से दोपहर 2:30 बजे के बाद गरज चमक वाले बादल छा गए थे और इन्हीं के कारण बारिश हुई। आगे मौसम का हाल कैसा होगा? मौसम केंद्र के मुताबिक रविवार को भी धूप निकलने और हल्के बादल छाने की संभावना है। दिन में तापमान का इजाफा हो सकता है। तो श्रोताओं, ये थी मौसम की जानकारी और ये था आज का परिक्रमा कार्यक्रम। आप बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 MHz पर। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलर एप्लीकेशन पर भी। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को। देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम एवं कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित कार्यक्रम काव्य कुंज।

0: आज हम आपको सुना रहे हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा का वाचन। पिछले भाग में आपने सुना था कि संसार के चक्र को देखकर सिद्धार्थ कितने विकल हैं। पिछले भाग में आपने ये भी सुना था कि सिद्धार्थ के घर छोड़ने के पश्चात यशोधरा के मन में किस किस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। अब आगे सुनिए।
1: लीजिए सुनिए सिद्धार्थ के सौतेले भाई नंद का पश्चाताप।
2: आरे, ये मुझ पर कैसा अत्याचार! राज्य तुम्हारा प्राप्त मुझे ही था तब का अधिकार। छोड़ा मेरे लिए हाय, क्या तुमने आज उदार। कैसे भार सहेगा संप्रति राहुल है सुकुमार। आर्य, ये मुझ पर अत्याचार। नंद तुम्हारी थाती पर ही देगा सब कुछ वार। किंतु करोगे कब तक आकर तुम उसका उद्धार। आर्य, ये मुझ पर कैसा अत्याचार।
1: सिर्फ नंद ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ के गृह त्याग के पश्चात उनकी सौतेली माता महाप्रजावती के विलाप का करुण दृश्य है अगला काव्यांश।
3: मैंने दूध पिलाकर पाला, सोती छोड़ गया पर मुझको वह मेरा मतवाला। कहां न जाने वह भटकेगा, किस झाड़ी में जा अटकेगा। हाय, उसे कांटा खटकेगा, वह है भोला भाला। मैंने दूध पिला कर पाला। निकले भाग्य हमारे सूने, वस्त दे गया तू दुख दूने। किया मुझे कैकई तूने, हाँ कलंक यह काला। मैंने दूध पिला कर पाला। कह मैं कैसे इसे सहूंगी,

0: काली माँ का ये विलाप कैसे थमेगा? कैकेयी के समतुल्य समझ रही है आज खुद को महाप्रजापति। उधर कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोदन शोकग्रस्त होकर विचार मग्न है कि मैंने सिद्धार्थ का वीत राग कैसे कैसे मिटाना चाहा, लेकिन फिर भी रोक ना सका सिद्धार्थ को।
1: मैंने उसके अर्थ यह रूपक रचा विशाल, किंतु भरी थाली गई, उलट गया वह थाल। चला गया रे चला गया, चला न जाए हाय वह यह मैं। चला गया रे चला गया, खींचा मैंने गुण सतान, निकल गया वह बाण क्षमा। खींचा मैंने गुण सतान, निकल गया वह बाण समान। ममते तेरा मान महान, दला गया रे दला गया, चला गया रे चला गया। स्वस्थ देह सा था यह गेह, गया प्राण सा वह निस्नेह। अश्रु व्यर्थ हैं अब यह मेह, जला गया रे जला गया, चला गया रे चला गया। उसे फूल सा रखा पाल, गया गंध सा वह इस काल। यह विषफल कांटे सा साल, फला गया रे फला गया, चला गया रे चला गया। धिक सब राज पाठ धन धाम, धन्य उसी का लक्ष्य ललाम। किंतु कहूं कैसे हे राम, भला गया रे भला गया, चला गया रे चला गया।
0: महाराज शुद्धोधन को भोग विलास ऐश्वर्य फीके लग रहे हैं। अब वे अपने अगले काव्यांश में अपूर्व धैर्य धारिणी यशोधरा से संवाद करते हैं।
1: धीरा है यशोधरे तू, धैर्य कैसे मैं धरूं? तू ही बता उसके लिए मैं आज क्या करूं?
2: उनकी सफलता मनाओ तात मन से, सिद्धि लाभ करके वे लौटे शीघ्र वन से।
1: तू क्या कहती है बहू, पाऊं मैं जहां कहीं, चतुर चरों को भेज खोजूं भी उसे नहीं?
2: तात नहीं।
1: कैसी बात बेटी, यह भूल है।
2: किंतु खोज करना उन्हीं के प्रतिकूल है। तात सोचो क्या गए वे इसी अर्थ हैं, खोज हम लावे उन्हें क्या वे असमर्थ हैं?
1: बेटी वह प्रौढ़ है क्या, वत्स भोला भाला है।
2: पा लिया उन्होंने किंतु ज्ञान का उजाला है।
1: गोपे यह गर्व और मन क्या उचित है?
2: जो मैं कहती हूं तात हाय वही हित है।
1: जान पड़ती तू आज मुझको कठोर है,
2: धर्म लिए जाता मुझे आज उसी ओर है।
1: तू है सती, मान्य रहे इच्छा तुझे पति की। मैं हूं पिता, चिंता मुझे पुत्र की प्रगति की। भूला वह भूला, उठा रखूं क्या उपाय मैं?
2: उनसे भी भोला तुम्हें देखती हूं हाय मैं।
0: महाराज शुद्धोधन और यशोधरा का संवाद सुन पाषाण हृदय भी पीड़ा से भर उठे, तो प्रजा का भी हाल विकल है।
3: भाई रे हम प्रजा जनों का हाय भाग ही खोटा, दिखा दिखा कर लाभ अंत में आ पड़ता है टोटा। रोते रहे सभी पुर परिजन, राज्य छोड़कर राम गए वन। पड़ा रहा वो धाम धरा धन, खड़ा रहा पर कोटा। भाई रे हम प्रजाजनों का हाय भाग ही कोटा। गए आज सिद्धार्थ हमारे, जो थे इन प्राणों के प्यारे, भार मात्र कोई अब धारे, राज धूल में लौटा। भाई रे हम प्रजा जनों का हाय, भाग ही खोटा। हम हो कितने ही अनुरागी, हुए आज वे सब कुछ त्यागी, कैसे इस विभूति का भागी, होता ये घर छोटा। भाई रे हम प्रजा जनों का हाय, भाग ही खोटा। लो ये छंदक आया, पर कंथक शून्य पृष्ठ क्यों आया, हे भगवान ना जाने कौन समाचार ये लाया।
0: प्रजा खुद के भाग्य को कोस रही है, ऐसे में सिद्धार्थ का प्रिय सारथी छंदक नगरवासियों और कुटुंबियों को संबोधित करके सिद्धार्थ के संदर्भ में कहते हैं।
3: कहूं और क्या भाई, आना पड़ा मुझे, मैं आया, मुझको मृत्यु ना आई। मारो तुम्ही मुझे, मर जाऊं सुख से, राम दुहाई। झूठ कहूं तो सुगति ना देवे मुझको गंगा माई। जोग भ्रष्ट थे आर्य, उन्हीं की धुन थी उन्हें समाई। राज्य छोड़ सन्यास ले गए, रज ही हाय रमाई। सोने का सुमेरु भी उनके निकट हुआ था राई। अस्त्र वस्त्र भूषण क्या उनको नहीं शिखा भी भाई। हाय काट डाले वो केश, चिकने चुपड़े कोमल कच्चे, सच्चे सुर भी निवेश। शोभित ही रहता है शोभन, रख ले कोई वेश। दिया समान उन्होंने सबको आशा का संदेश। करे ना कोई मेरी चिंता, नहीं मुझे भय लेश। सिद्धि लाभ करके मैं फिर भी लौटूंगा निज देश। सह सकता मैं नहीं किसी का जन्म जन्म का क्लेश। तुम अपने हो, जीव मात्र का हित मेरा उद्देश्य।
0: छंदक के लौटने के बाद, सिद्धार्थ के सन्यास लेने के बाद जब यशोधरा को पता चलती है, तब वो ऐश्वर्य और विलासता त्यागने का निश्चय करती है।
2: जाओ मेरे सिर के बाल, आली कर्तरी ला, मैंने क्या पाले काले व्याल। उलझे यहाँ न ये आपस में, सुलझे वे व्रतपाल। डसे न हाय मुझे एड़ी तक विस्तृत ये विकराल। कसे न और मुझे अब आकर हेम हीर मणिमाल। चार चूड़ियां ही हाथों में पड़ी रहे चिरकाल। मेरी मलिन गूदड़ी में भी है राहुल सा लाल। क्या है अंजन अंग राग जब मिली विभूत विशाल। बस सिंदूर बिंदु से मेरा जगा रहे यह भाल। वह जलता अंगार जला दे उनका सब जंजाल। आज नया उत्सव है धन, आहा इस उमंग का क्या कहना। सुनी अखियों ने भी निरख सखी, क्या अपूर्व कहना पहना। वर्तमान मेरा आहा है अतीत का ध्यान, किंतु हाय इस ज्ञान से अच्छा था अज्ञान। यह जीवन भी यशोधरा का अंग हुआ, हाय मरण भी आज न मेरे संग हुआ। सखी वह था क्या सभी स्वप्न जो भंग हुआ।

तुझे वियोग देती उन्हें विदा में गाकर, भार झेलती गौरव पाकर, यह निश्वाय न उठता हाकर, बनता मेरा राग न रोग, मिला नहा इतना भी योग। पर वैसा कैसे होना था, वह मुक्ताओं का बोना था, लिखा भाग्य में तो रोना था, यह मेरे कर्मों का भोग, मिला नहा इतना भी योग। पहुंचाती मैं उन्हें सजाकर, गए स्वयं वे मुझे लजाकर, लूंगी कैसे वाद्य बजाकर, लेंगे जब उनको सब लोग, मिला नहा इतना भी योग। दूं किस मुंह से तुम्हें उलहना, नाथ मुझे इतना ही कहना, हाय स्वार्थनी थी मैं ऐसी, रोक तुम्हें रख लेती, जहां राज्य भी त्याज वहां मैं जाने तुम्हें न देती। आश्रय होता या वह बहना, नाथ मुझे इतना ही कहना। विदा न लेकर स्वागत से भी वंचित यहां किया है, हंत अंत में यह अविनय भी तुमने मुझे दिया है, जैसे रखो वैसे रहना, नाथ मुझे इतना कहना। ले न सकेगी तुम्हें वही बढ़, तुम सब कुछ हो जिसके, यह लज्जा यह शोभ भाग्य में लिखा गया कब किसको, मैं अधीन मुझको सब सहना, नाथ मुझे इतना ही कहना। अब कठोर हो वज्रदपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्य पुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा, फिर भी हटकर हाय व्रथा ही उन्हें उन्होंने था, किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। क्यों कर सिंधु करूं अपने को,

देख कराल काल सा किसको कांप उठे सब भय से, गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नागदत्त जिस हय से, वह तुरंग पलित कुरंग सा नत हो गया विनय से, क्यों न गूंजती रंग भूमि फिर उनके जय जय जय से, निकला वहां कौन उन जैसा प्रबल पराक्रमकारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी, सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना, सबने मेरा भाग्य सराहा सबने रूप बखाना, खेद किसी ने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना, भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना, उस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोजती सारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी, मेरे रूप रंग यदि तुझको अपना गर्व रहा है, तो उसके झूठे गौरव का तूने भार सहा है, तू परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा है, फूला दिन किस अंधकार में डूबा और बहा है, किंतु अंतरात्मा भी मेरा था क्या विकृत विकारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी, मैं अबला पर वे तो विश्रुति वीर वली थे मेरे, मैं इंद्रियासक्ति

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम भारत भारती का।
1: मारा सज

निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली है। यहाँ का जनजीवन कला और संस्कृति से संपन्न है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों से घिरा यह अंचल नर्मदा नदी का पावन तट पाकर यहाँ के जनजीवन को आनंद विभोर करता रहता है। तो अब बिना देर किए आनंद लेते हैं निमाड़ी लोक गायन का। कलाकार हैं शिव गुप्ता और उनके साथी।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: एक प्रस्तुत है संत सिंगाजी निमाड़ के, संत निर्गुणी पंथ के संत के विचारों को निमाड़ी भाषा में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास।
2: कि तुम कवैया हो गारी हाड़ी

प्रस्तुत गीत मक क्यों मारी रे, मक क्यों मारी रे बालमा, हरी हरी लाक

0: निमाड़ के धरातल का वृतांत एक बेटी अपने पिताजी को बोलती, पिताजी आपने कहाँ मेरी शादी कर दी, तो एक कल्पना है।
1: अरे कहाँ दे दीरे दादा, अरे कहाँ दे दी।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

निमाड़ का सबसे फेमस गीत लोकगीत, जब भाभी के घर ननंद जाती है तो भाभी अपने बच्चे घर, जब बच्चा होता है निमाड़ में तो कुछ खिलौना लेके जाती है। अरे घूगर हो

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर सुन

शबरी को मतंग ऋषि ने कहा था कि तेरे आंगन में राम आएंगे। शबरी ने इंतजार किया कि मेरे राम मेरे आंगन में आएंगे, प्रभु का इंतजार किया। अरे हम बूढ़ी हुई गई रे वाट देखत देखत, ए राम कब आओगे। अरे हम बूढ़ी हुई गई रे वाट।

0: फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: एक लड़का लड़की आपस में बात कर शादी का पहला, उनकी कल्पना कवि की है।

0: आज कार्यक्रम भारत भारती में आप आनंद ले रहे थे निमाणी लोक गायन का, जिसे प्रस्तुत किया शिव गुप्ता और उनके साथियों ने। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

महाशय गुरु प्रसाद जी रसिक जीव हैं, गाने बजाने का शौक है, खाने खिलाने का शौक है और सैर तमाशे का शौक है, पर उसी मात्रा में द्रव्योपार्जन का शौक नहीं है। यूं वो किसी के मोहताज नहीं है, भले आदमी की तरह हैं और हैं भी भले आदमी, मगर किसी काम में चिमट नहीं सकते, गुड़ होकर भी उनमें लस नहीं है। वो कोई ऐसा काम उठाना चाहते हैं जिसमें चटपट कारों का खजाना मिल जाए और हमेशा के लिए बेफिक्र हो जाएं, बैंक से छमाई सूट चला आए, खाएं और मजे से पड़े रहें। किसी ने सलाह दी नाटक कंपनी खोल लो, उनके दिल में भी बात जम सी गई। मित्रों को लिखा कि मैं ड्रामेटिक कंपनी खोलने जा रहा हूँ, आप लोग ड्रामे लिखना शुरू कर दीजिए। कंपनी का प्रोस्पेक्टस बना, कई महीने उनकी खूब चर्चा रही, कई बड़े बड़े आदमियों ने हिस्से खरीदने के वादे भी कर लिए, लेकिन ना हिस्से बिके ना कंपनी खड़ी हुई। हाँ, इसी धुन में गुरु प्रसाद ने एक नाटक की रचना कर डाली और ये फिक्र हुई कि इसे किस कंपनी को दिया जाए। लेकिन ये तो मालूम ही था कि कंपनी वाले एक ही घाघ होते हैं, फिर हर एक कंपनी में उसका एक नाटककार भी होता है, वो क्यों चाहेगा कि उसकी कंपनी में किसी बाहरी आदमी का प्रवेश हो। वो इस रचना में तरह तरह के ऐब निकालेगा और कंपनी के मालिक को भड़का भी देगा। इसीलिए प्रबंध किया गया कि मालिकों पर नाटक का कुछ ऐसा प्रभाव जमा दिया जाए कि नाटककार महोदय की कुछ दाल न गल सके। 5 सज्जनों की एक कमेटी बनाई गई, उसमें सारा प्रोग्राम विस्तार के साथ तय कर दिया गया और दूसरे दिन 5 सज्जन गुरु प्रसाद जी के साथ नाटक दिखाने चले। तांगे आ गए, हारमोनियम, तबला, ये सभी आ गए, सब उस पर रख दिया गया क्योंकि नाटक का डेमोंस्ट्रेशन करना निश्चित हुआ था। सहसा विनोद बिहारी ने कहा, यार तांगे में जाने में तो कुछ बदरोबी होगी, मालिक सोचेगा ये महाशय तो यूं ही हैं। मियां, इस समय 10-5 रुपए का मुंह नहीं देखी आप, मैं तो अंग्रेजी की विज्ञापन बाजी का कायल हूँ कि रुपए में 15 आने उसमें लगाकर शेष 1 आने में रोजगार करते हैं। अवा भाई, कहीं से 2 मोटरें मंगा ली जाए, कैसा रहेगा, क्या ख्याल है? इस पर से रसिकलाल बोले, लेकिन किराए की मोटरों से वो बात पैदा नहीं होगी जो आप चाहते हैं। किसी रईस से 2 मोटरें मांगनी चाहिए आपको, मोरिस हो या नए चाल की ऑस्टिन। बात सच्ची थी, भेष से भीख मिलती है। विचार होने लगा कि किस रईस से याचना की जाए। अजी, वो महाखूसट है, सवेरे उसका नाम ले लो तो दिन भर पानी ना मिले। अच्छा, सेठ जी के पास चले तो कैसा रहेगा, मुंह धोए रखिए, उसकी मोटरें अफसरों के लिए रिजर्व हैं। अजी, अपने लड़के तक को भी बैठने नहीं देता, आपको दिए देता है। एक काम करते हैं कि कपूर साहब के पास चलते हैं, अभी उन्होंने नई मोटर खरीदी है। अजी, उसका नाम न लो, कोई ना कोई बहाना करेगा, ड्राइवर नहीं है, मरम्मत में है, या फिर जाने क्या क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरु प्रसाद ने अधीर होकर कहा, तुम लोगों ने तो व्यर्थ का बखेड़ा कर दिया भाई, तांगे में चलने में क्या हर्ज था। विनोद बिहारी ने कहा, आप तो घास खा गए हैं, नाटक लिख लेना दूसरी बात है और मामले को पटाना दूसरी बात है, रुपए प्रश्न सुना देगा, अपना सा मुंह लेकर रह जाओगे फिर आप, देख लेना। अमरनाथ ने कहा, मैं तो समझता हूँ मोटर के लिए किसी राजा रईस की खुशामद करना बेकार है, तारीफ तो जब है कि पांव पांव चले और वहां ऐसा ऐसा रंग जमाए कि मोटर से भी ज्यादा शान रहे। विनोद बिहारी उछल पड़े, सब लोग पांव पांव चले, वहां पहुंचकर किसी तरह बातें शुरू होंगी, किस तरह तारीफों के पुल बांधे जाएंगे, किस तरह ड्रामेटिस्ट साहब को खुश किया जाएगा, इस पर बहस होती जाती थी। हम लोग कंपनी के कैंप में कुछ 2 बजे पहुंचे, वहां मालिक साहब, उनकी एक्टर
नाटककार सब पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे थे। पान, इलायची वगैरह वगैरह मंगवा ली थी। ऊपर जाते ही रसिक लाल ने मालिक से कहा, क्षमा कीजिएगा, हमें आने में जरा देर हो गई। हम मोटर से नहीं, पाँव पाँव आए हैं। आज यही सलाह हुई कि प्रकृति की छटा का आनंद उठाते हुए चले। गुरु प्रसाद जी प्रकृति के उपासक हैं। इनका बस होता तो आज चिमटा लिए या तो कहीं भीख मांगते होते, या किसी पहाड़ी गांव में वट वृक्ष के नीचे बैठे पक्षियों का चहकाना सुन रहे होते। विनोद ने रद्दा जमाया, और आए भी तो सीधे रास्ते नहीं, जाने कहां कहां चक्कर लगाते, खाक छानते पैरों में जैसे सनीचर है। अमर ने और रंग जमा दिया और कहा, पूरे सतजुगी आदमी है वो, नौकर चाकर तो मोटरों पर सवार होते हैं और आप गली गली मारे मारे फिरते हैं। जब और रईस मीठी नींद के मजे लेते होते हैं तो आप नदी के किनारे उषा का श्रृंगार देखते हैं। मस्तराम ने फरमाया, कवि होना मानो दीन दुनिया से मुक्त हो जाना। गुलाब की एक पंखड़ी लेकर उसमें न जाने क्यों घंटों देखते रहना, प्रकृति की उपासना नहीं, यूरोप के बड़े बड़े कवियों को आसमान पर पहुंचा दिया। यूरोप में होते तो आज इनके द्वार पर हाथी झूमते होते। एक दिन एक बालक को रोता देखकर वो खुद ही रोने लगे। पूछता हूँ, भाई क्यों रोते हो? तो और रोते हुए बड़ी मुश्किल से आवाज निकली। विनोद ने कहा, जनाब कवि का हृदय कोमल भावों का स्रोत है, मधुर संगीत का भंडार है, अनंत का आईना है। रसिक ने कहा, क्या बात कही है आपने, अनंत का आईना, वाह वाह, कवि की सोहबत में आप भी कुछ कवि हुए जा रहे हैं। तब गुरु प्रसाद ने नम्रता से कहा, मैं कवि नहीं हूँ और न मुझे कवि होने का दावा है। आप लोग मुझे जबरदस्ती कवि बनाए देते हैं। कवि सृष्टि की वो अद्भुत रचना है जो पंचभूतों की जगह नौ रसों से बनती है। तभी मस्तराम ने कहा, आपका यही एक वाक्य है जिस पर सैकड़ों कविताएं न्योछावर हैं। सुनी आपने रसिक लाल जी की कवि की महिमा, याद कर लीजिए। अरे हम तो कहते हैं कि रट डालिए। तभी रसिक लाल ने कहा, कहाँ तक याद करें भैया, या तो सूक्तियों में बात करते हैं, और नम्रता का ये हाल है कि अपने को कुछ समझते ही नहीं। महानता का यही लक्षण है, जिसने अपने को कुछ समझा वो गया। आप तो अब खुद ही सुनेंगे, इस ड्रामे में अपना हृदय निकाल कर रख दिया है। कवियों में जो एक प्रकार का अलहड़पन होता है उसकी आप में कहीं गंध भी नहीं। इस ड्रामे की सामग्री जमा करने के लिए आपने कुछ नहीं तो 1000 बड़े बड़े पोथों का अध्ययन किया होगा। वाजिद अली शाह को स्वार्थी इतिहास लेखकों ने कितना कलंकित किया है आप लोग जानते ही हैं। उस लेख राशि को छांट कर उसमें से सत्य के तत्व खोज निकालना आप ही का काम था। उस वक्त विनोद ने कहा, इसलिए हम और आप दोनों कलकत्ता गए और वहां 6 महीने मटिया बुर्ज की खाक छानते रहे। वाजिद अली शाह की हस्तलिखित एक पुस्तक की तलाश की, उसमें उन्होंने खुद अपनी जीवन चर्चा लिखी है। एक बुढ़िया की पूजा की गई, तब कहीं जाके 6 महीने में किताब मिली हमें। अमरनाथ जी कहते हैं कि पुस्तक नहीं रत्न है वो। उस पे मस्तराम ने कहा, उस वक्त तो उसकी दशा कोयले की थी, गुरु प्रसाद जी ने उस पर मोहर लगाकर अशर्फी बना दी। ड्रामा ऐसा चाहिए कि जो सुने दिल हाथों से थाम ले, एक एक वाक्य दिल में चुभ जाए, तब तो कहीं बात है। उस पे अमरनाथ जी कहते हैं कि संसार साहित्य के सभी नाटकों को आपने चाट डाला और नाट्य रचना पर सैकड़ों किताबें पढ़ डाली आपने। तभी विनोद ने कहा, जभी तो चीज भी लासानी हुई है।
अमरनाथ जी कहते हैं कि लाहौर ड्रामेटिक क्लब का मालिक हफ्ते भर यहाँ पड़ा रहा, पैर पड़े कि मुझे नाटक दे दीजिए, लेकिन आपने दिया नहीं। जब एक्टर ही अच्छे नहीं तो उनसे अपना ड्रामा खिलवाना उसकी मिट्टी खराब करना था। इस कंपनी के एक्टर माशाल्लाह अपना जवाब नहीं रखते और इस नाटककार की सारे जमाने में धूम है। आप लोगों के हाथों में पढ़कर ये ड्रामा धूम मचा देगा। विनोद ने कहा कि एक तो लेखक साहब खुद शैतान से ज्यादा मशहूर है, उस पर यहाँ के एक्टरों का नाट्य कौशल, शहर लूट जाएगा साहब, सच कहता हूँ। मस्तराम ने कहा कि रोज ही तो किसी न किसी कंपनी का आदमी सिर पर सवार रहता है, मगर बाबू साहब किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। विनोद ने कहा, बस एक कंपनी है जिसके तमाशे के लिए दिल बेकरार रहता है, नहीं तो और जितने ड्रामे खेले जाते हैं ना, दो कौड़ी के हैं, मैंने तमाशा देखना ही छोड़ दिया था। इस पर गुरु प्रसाद जी कहते हैं कि नाटक लिखना बच्चों का खेल नहीं, खूने जिगर पीना पड़ता है। मेरे ख्याल में एक नाटक लिखने के लिए 5 साल का समय भी काफी नहीं, बल्कि अच्छा ड्रामा जिंदगी में एक ही लिखा जा सकता है। यो कलम घिसना दूसरी बात है। बड़े बड़े धुरंधर आलोचकों का यही निर्णय है कि आदमी जिंदगी में एक ही नाटक लिख सकता है। रूस, फ्रांस, जर्मनी सभी देशों के ड्रामे पढ़े, पर कोई ना कोई दोष सभी में मौजूद। किसी में भाव है तो भाषा नहीं, भाषा है तो भाव नहीं, हास्य है तो गाना नहीं, गाना है तो हास्य नहीं। जब तक भाव, भाषा, हास्य और गाना ये चारों अंग पूरे ना हो, उसे ड्रामा कहना ही नहीं चाहिए। मैं तो बहुत ही तुच्छ आदमी हूँ। कुछ आप लोगों की सोहबत से शुद्ध बुद्ध आई है, मेरी रचना की हस्ती ही क्या, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो ऐसे दोष आपको नहीं मिलेंगे। इस पे विनोद ने कहा, जब आप उस विषय के मर्मज्ञ हैं तो दोष रह ही कैसे सकता है। इस पर रसिक लाल ने कहा, 10 साल तक तो आपने केवल संगीत कला का अभ्यास किया है, घर के हजारों रुपए उस्तादों को भेंट कर दिए, अब भाई फिर भी दोष रह जाए तो फिर तो दुर्भाग्य है। इतनी वार्तालाप के बाद रिहर्सल शुरू होती है। वाह वाह वाह वाह, हाय हाय हाय हाय का तारा बन गया। कोरस सुनते ही एक्टर और प्रॉप राइटर और नाटककार सभी मानो जाग पड़े। भूमिका ने उन्हें विशेष प्रभावित किया, पर असली चीज सामने आते ही आंखें खुली, समा बंद गया। पहला सीन आया, आंखों के सामने वाजिद अली शाह के दरबार की तस्वीर खिंच गई। दरबारियों की हाजिर जवाबी और फड़कते हुए लतीफे, वाह वाह, क्या कहना, क्या वाक्य रचना थी, क्या शब्द योजना थी। रसों का कितना सुरुचि से भरा हुआ समावेश था। तीसरा दृश्य हास्यमय था। हंसते हंसते लोगों की असलियां दुखने लगी थी। सच में सुकूल का स्वामी की संयंत अविचलता भी आसानी से दिख गई। अब आया चौथा दृश्य। ये दृश्य करुणा जमक था। हास्य के बाद करुणा, आंधी के बाद आने वाली शांति। विनोद आंखों पर हाथ रखे, सिर झुकाए, जैसे रो रहे थे। इसी तरह सीन पर सीन और अंक पर अंक समाप्त होते गए। यहाँ तक कि जब रिहर्सल समाप्त हुई तो दीपक जल चुके थे। सेठ जी अब तक सॉट बनाए हुए बैठे थे। ड्रामा समाप्त हो गया, पर उनके मनोविचार का लेश मात्र भी आभास नहीं था। जड़ बैठे हुए थे, न मुस्कुराहट थी, न कौतूहल, न हर्ष, न और कुछ। विनोद बिहारी ने मामले की बात पूछी, तो इस ड्रामा के बारे में श्रीमान की क्या राय है। सेठ जी ने उसी विरक्त भाव से उत्तर दिया, मैं इसके विषय में कल निवेदन करूंगा। कल यही भोजन भी कीजिएगा।
आप लोगों के लायक भोजन क्या होगा? उसे केवल विदुर का साग समझकर स्वीकार कीजिएगा। पंच पांडव बिहार निकले, तुम्हारी खुशी के सबकी बांछे खिली खिली जाती थी। विनोद ने कहा, 5,000 की थैली है, नाक नाक बच सकता हूँ। अमरनाथ ने कहा, 5,000 की है कि 10? ये तो नहीं कहा जा सकता, पर रंग खूब जम गया। रसिक ने कहा, मेरा अनुमान तो 4,000 करीब का है। मस्तराम ने कहा, और मेरा विश्वास है कि 10,000 से कम वो कहेगा ही नहीं। मैं तो सेठ के चेहरे की तरफ ध्यान से देख रहा था, आज ही कह देता, पर डरता था कहीं ये लोग अस्वीकार न कर दे। उसके होंठों पर तो हंसी न थी, पर मग्न हो रहा था। गुरुप्रसाद ने कहा, अरे भाई, मैंने पढ़ा भी तो जी तोड़ कर था। विनोद ने कहा, ऐसा जान पड़ता था कि तुम्हारी वाणी पर सरस्वती बैठ गई हो, सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। रसिक ने कहा, मुझे उसकी चुप्पी से जरा संदेह होता है। अमर ने कहा, आपकी संदेह का क्या कहना, आपको तो ईश्वर पर भी संदेह होता है। मस्तराम ने कहा, ड्रामेटिस्ट भी बहुत खुश हो रहे थे, 10-12 हजार का वारा न्यारा है भाई, आज इस खुशी में एक दावत तो होनी ही चाहिए। गुरुप्रसाद ने कहा, अरे तो कुछ बोहनी बट्टा हो जाए। मस्तराम ने कहा, जी नहीं, तब तो जलसा होगा, आज दावत होगी दावत। विनोद ने कहा, भाग्य के बली हो तुम गुरुप्रसाद। रसिकलाल ने कहा, मेरी राय है जरा उस ड्रामेटिस्ट को गांठ लिया जाए, उसका मौन मुझे भयभीत कर रहा है। मस्तराम ने कहा, आप तो वाही हुए हैं, वो नाक रगड़ कर रह जाए तब भी यह सौदा होकर रहेगा, सेठ जी अब बचकर निकल नहीं सकते हैं। विनोद ने कहा, हम लोगों की भूमिका भी तो जोरदार रही थी, क्या कहते हैं आप? अब बारी आई अभिनय की। रात को गुरुप्रसाद के घर मित्रों की दावत हुई। दूसरे दिन कोई 6 बजे पांचों आदमी सेठ जी के पास जा पहुंचे। संध्या का समय हवा खोरी का है, आज मोटर पर ना आने के लिए बना बनाया बहाना था। सेठ जी आज बेहद खुश नजर आते थे, कल की वो मोहरमी सूरत अंतर्धान हो गई। बात बात पर चहकते थे, हंसते थे जैसे लखनऊ का कोई रईस हो। दावत का सामान तैयार था, मेजों पर भोजन चुना जा रहा था। अंगूर, संतरे, केला, सूखे मेवे, कई किस्म की मिठाइयाँ, कई तरह के मुरब्बे, शराब, ये सब कुछ सजा दिए गए और यारों ने खूब मजे से दावत खाई। सेठ जी मेहमान नवाजी के पुतले बने हुए थे, हर एक मेहमान के पास जा जाकर पूछते, कुछ लेंगे, कुछ मंगवाऊं? अरे लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अरे लीजिए ना, अब ले भी लीजिए, मत शर्माइए। आप लोगों के लायक भोजन यहाँ कहाँ बन सकता है? भोजन के उपरांत लोग बैठे तो मामले की बातचीत होने लगी। गुरुप्रसाद का हृदय आशा और भय से कांपने लगा। सेठ जी ने कहा, हुजूर ने बहुत से सुंदर नाटक लिखे हैं, क्या बात है? ड्रामेटिस्ट ने कहा, ये जनता अच्छे ड्रामों की कद्र नहीं करती, नहीं तो ये ड्रामा लाजवाब होता। सेठ जी ने कहा, जनता कद्र नहीं करती तो ना करे, हमें जनता की बिल्कुल परवाह नहीं, रत्ती बराबर परवाह नहीं है हमें। मैं इसकी तैयारी में 40,000 केवल बाबू साहब की खातिर खर्च कर दूंगा। आपने इतनी मेहनत से एक चीज लिखी है तो मैं उसका प्रचार भी उतने ही हौसले से करूंगा। हमारे साहित्य के लिए क्या ये कुछ कम सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महान पुरुष इस क्षेत्र में आ गए? ये कीर्ति हुजूर को अमर बना देगी। ड्रामेटिस्ट ने कहा, मैंने ऐसा ड्रामा आज तक नहीं देखा, लिखता मैं भी हूँ और लोग भी लिखते हैं, लेकिन आपकी उड़ान को कोई क्या पहुँचेगा? कहीं कहीं तो
आपने शेक्सपियर को भी मात दे दी है, सेठ जी ने कहा। तो जनाब, जो चीज दिल की उमंग से लिखी जाती है वो ऐसी ही अद्वितीय होती है। शेक्सपियर ने जो कुछ लिखा रुपए के लोभ से लिखा। हमारे दूसरे नाटककार भी धन ही के लिए लिखते हैं, उनमें वो बात कहाँ पैदा हो सकती है। गोसाई जी की रामायण क्यों अमर है? इसीलिए कि वो भक्ति और प्रेम से प्रेरित होकर लिखी गई है। सादी की गुलिस्ता और बोस्ता, होमर की रचनाएं इसलिए स्थाई हैं कि उन कवियों ने दिल की उमंग से लिखा। जो उमंग से लिखता है वही आगे बढ़ता है। वो एक एक शब्द, एक एक वाक्य आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमारे साहित्य की अवनति केवल इसलिए हो रही है कि हम सब धन के लिए या नाम के लिए लिखते हैं, सेठ जी ने कहा। सोचिए, आपने 10 साल केवल संगीत कला में खर्च कर दिए, लाखों रुपए कलावंतों और गायकों को दे डाले। कहां कहां से और कितने परिश्रम और खोज से इस नाटक की सामग्री एकत्रित की, ना जाने कितने राजों महाराजों को सुनाया होगा। इस परिश्रम और लगन का पुरस्कार कौन दे सकता है, ड्रामेटिस्ट ने कहा। मुमकिन ही नहीं। ऐसी रचनाओं के पुरस्कार की कल्पना करना ही उनका अनादर करना है। इनका पुरस्कार यदि कुछ है तो वो अपनी आत्मा का संतोष है। वो संतोष आपके एक एक शब्द से प्रकट होता है, सेठ जी ने कहा। आपने बिल्कुल सत्य कहा कि ऐसी रचनाओं का पुरस्कार अपनी आत्मा का संतोष है। यश तो बहुधा ऐसी रचनाओं को मिल जाता है जो साहित्य के कलंक हैं। आप ड्रामा ले लीजिए और आज से ही पाठ भी तकसीम कर दीजिए। 3 महीने के अंदर इसे खेल डालना होगा। मेज पर ड्रामे की हस्तलिपि पड़ी हुई थी। ड्रामेटिस्ट ने उसे उठा लिया। गुरु प्रसाद ने दीन नेत्रों से विनोद की ओर देखा, विनोद ने अमर की ओर, अमर ने सरिख की ओर, पर शब्द किसी के मुंह से न निकला। सेठ जी ने मानो सभी के मुंह सिह दिए हो। ड्रामेटिस्ट साहब किताब लेकर चल दिए। सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर को थोड़ी सी तकलीफ और करनी होगी। ड्रामे का रिहर्सल शुरू हो जाए तो आपको थोड़े दिनों तक कंपनी के साथ रहने का कष्ट उठाना पड़ेगा। हमारे एक्टर अधिकांश गुजराती हैं, वो हिंदी भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। कहीं कहीं शब्दों पर अनावश्यक जोर देते हैं। आपकी निगरानी से ये सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। एक्टरों ने यदि पाठ अच्छा नहीं किया तो आपके सारे परिश्रम पर पानी पड़ जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने लड़के को आवाज दी, बॉय बॉय, इन लोगों के लिए सिगार लाओ। सिगार आ गया। सेठ जी उठ खड़े हुए। वो मित्र मंडली के लिए विदाई की सूचना थी। 5 सज्जन भी उठे। सेठ जी आगे आगे द्वार तक आए, फिर सबसे हाथ मिलाते हुए कहा, आज इस गरीब का तमाशा देख लीजिए, फिर ये सहयोग ना जाने कब प्राप्त हो। गुरु प्रसाद ने मानो किसी कब्र के नीचे से कहा हो सका तो आ जाऊंगा। सड़क पर आकर 5 मित्र खड़े होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब 5 ही जोर से ठहाकर मारकर हंस पड़े। विनोद ने कहा, अरे भाई, हम सबका गुरु घंटाल निकल गया। अमर ने कहा, साफ आंखों में धूल झोंक दी इन्होंने तो। रसिक ने कहा, मैं उसकी चुप्पी देखकर पहले ही डरा हुआ था कि ये कोई पल्ले सिरे का घाघ है। मस्तराम ने कहा, मान गया इसकी खोपड़ी को, ये चपत हम लोग उम्र भर नहीं भूलेंगे। खैर कोई बात नहीं। अरे, ये गुरु प्रसाद कहाँ जा रहा है? गुरु प्रसाद इस आलोचना में शरीक ना हुए। वो इस तरह सिर झुकाकर चले जा रहे थे मानो अभी तक वो स्थिति को समझ नहीं पाए हों।

0: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
2: अतुल्य भारत।
1: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
3: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
1: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है और विद्या की देवी है सरस्वती।
3: बिल्कुल,
1: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
3: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
1: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
3: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है और शायद यहाँ आकर खाली भी हो जाती है।
1: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। माँ सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है, उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
3: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे। सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं, पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे और कबीर के नाम का अर्थ है
1: महान। पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं।
4: प्रस्तुत है
1: कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट के अंधेरे में बाबा को दिखा रहे तो उनका पैर कबीर जी की छाती
4: सेना पर आधारित कार्यक्रम
1: बाबा चौक।
4: हमारी सेना
1: ये क्या,
4: हमारा घर,
1: ये तो कोई मानव संघ है
4: जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास,
1: राम राम बोल बच्चा,
4: प्रक्रिया,
1: तुम्हें चोट तो नहीं लगी,
4: भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल
3: कबीर बोले
4: कपिल भामा जी से चर्चा।
3: फिर से बना लीजिए बाबा, कहते हुए कबीर ने उनके पांव पकड़ लिए। आपने कबीर को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि निर्गुण संत होने के बावजूद कबीर की रचनाओं में राम का नाम बार बार आया है। चलिए उनकी कुछ चौपाइयाँ हम आपके ध्यान में लाते हैं।
5: और उन महत्वपूर्ण मोड़ों की जिसके कारण हमारे देश की सशस्त्र
1: कबीरा कोता राम का मुतिया मेरा नाम गले राम की जेहनी जित खींचे तित जाऊं दुल्हिन गावहु मंगल चार तोरे घर आए राजा राम भरता।
5: के होने के क्या कारण थे और ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण भारत ने
1: और इसी तरह एक और चौपाई है चिंता दो हरि नाव की और न चिंता दास
5: चलिए
1: जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
5: हमारी सेना के तीनों
3: कबीर में रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आया, गुरु तो गुरु ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना मैं आपको बताना पड़ा।
1: एक बार की बात, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं। बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए।
6: माला छोटी थी,
1: मुकुट के ऊपर से पहनाई नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो गए वे।
3: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर ने उनकी ध्यान और आंखों से सारा तमाशा देखा। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को, और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
1: ये सुनते ही रामानंद जी चल रहे थे, उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं। तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
3: वे समझ ही नहीं पाते कि जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके प्रति कबीर का इतना अनुराग कैसे, वे उनके वियोग के बावले हो जाते हैं। कैसे वे कहते हैं कि गोविंदा गुण गाइए, कैसे वे कहते हैं कि हरि जननी मैं बाकुल तेरा। जब हरि निर्गुण है तो उसके गुण कैसे गाए जा सकते हैं, जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो वे माता कैसे हो गया।
1: ये सब हृदयहीन बौद्धिक व्याख्या है। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत है। उसमें गुणों की कमी नहीं, परंतु उसे गुणों में बांधा भी नहीं जा सकता। अगर सगुण से कबीर जी का इतना ही बैर होता तो रामानंद जी जैसे एक सगुण उपासक को भी अपना गुरु कैसे बनाते।
3: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की, और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास। कबीरदास के संदर्भ में निर्गुण
7: विराम दिया आजाद हिंद,
3: उन्होंने साफ कह दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ
7: प्रस्तुत है। हमारी
1: तुलसीदास जी का रिश्ता वाराणसी से बहुत गहरा। उनका जन्म कैसे उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हमारी सेना
7: हमारा
1: पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी
7: जिसमें आप सुनेंगे।
1: जन्म का नाम था रामबोला और उनके गुरु थे नरहरिदास।
3: जी हाँ, नरहरिदास रामानंद के शिष्य परंपरा। वहीं रामानंद जो कबीर के गुरु थे, अनाथ रामबोला को उन्होंने ही अपनाया और तुलसीदास नाम, और उन्होंने अयोध्या में उन्हें आरंभिक शिक्षा भी दी। पर उच्च शिक्षा के लिए वे अपने इस होनहार शिष्य को वाराणसी भेजना चाहते थे।
1: श्रोताओं, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
3: बिल्कुल
1: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांत और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
3: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे। वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे, और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके बाद वे वापस लौट आए, पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी।
1: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए, और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा करता था, तो प्रसन्न होकर उसने ही तुलसीदास जी को वो विधि बताई कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे।
3: लेकिन तुलसीदास की इच्छा तो राम से मिलने की थी, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि राम जी के दर्शन तो उन्हें चित्रकूट में होंगे। यह एक लंबी कहानी है, अतः विषांतर से बचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ दें।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी, लेकिन लगता है कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही, तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
3: खैर, इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था, सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
1: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे, तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
1: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
3: वहाँ के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
1: और श्रोताओं, सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहाँ तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिव जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
3: खैर, ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया, पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। असी घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
1: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के असी घाट पर निवास कर रहे थे तो जीवन की संध्या बेला में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
3: श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के असी घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और ये उनकी अंतिम कृति थी। उत्कृष्टता के विद्वान रामचरितमानस के बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही लिखा था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत, और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
3: बिल्कुल,
1: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि हिंदी की अनेक बोलियों में एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं। कोरवी इसलिए क्योंकि इसका जन्म कुरुक्षेत्र के इलाके में हुआ। वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
1: तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जब विकास हो रहा था तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए, जैसे अवध में अवधि, ब्रजभूमि में ब्रज, हमारे मालवा क्षेत्र में मालवी, कुरुक्षेत्र में कौरवी। श्रोताओं, ये लिस्ट काफी लंबी है जिसमें लगभग 19 बोलियां आती हैं, लेकिन इन 19 बोलियों में से साहित्य में ज्यादातर प्रयुक्त हुए अवध और ब्रज।
3: और वजह यह थी कि शुरुआती रचनाएं ज्यादातर भक्ति परक थी। राम के भक्तों ने अवधि व कृष्ण के भक्तों ने ब्रज का प्रयोग किया। आगे चलकर रीति काल में अवधि का जन्म भी ब्रज ने ही ले लिया, क्योंकि बिहारी धनानंद जैसे कवि श्रृंगार रचनाओं के लिए ब्रज ज्यादा उपयुक्त थी।
1: इस भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने की पुरानी परिपाटी जो थी,
3: बिल्कुल,
1: जबकि अवधि में राम जानकी के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
3: कौन सी कविता?
1: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, ताते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
3: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलके भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती है और पलके नहीं गिराती।
1: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है,
3: बिल्कुल,
1: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
3: जी हाँ, खैर, जब बाहर तेंदु का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था, लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
1: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे, बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
3: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे, खूब संपदा विरासत में मिली थी तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूँ। लेकिन उनका यही स्वभाव हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
1: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं उनमें से अधिक

0: केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे, सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
1: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर
1: कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
0: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त थे। उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
1: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभव सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था। इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता, उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
0: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा में साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
1: सन 1893 की बात है, वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के तीन छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
0: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठे। इसकी वाराणसी के घुड़साल में इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी।
1: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
0: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढ कर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है। इसके संग्रहालय में आज हिंदी भाषा की लगभग 15,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं।
1: और आलम यह है कि अगर आप हिंदी विषय में शोध कर रहे हैं तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी में जाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
2: इतना डोमिनेंट था कि उन्होंने पाकिस्तान के आपको उसको एक तरह से डिफेंसिव मोड में डाल दिया।
0: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में। और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885 हिंदी के लिए एक दुखद साल था।
2: उससे पहले
0: मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़कर के चले, लेकिन इसके 5 साल बाद वाराणसी के ही सुखमी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया, शायद इसीलिए उन्हें इस बार
1: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे हैं।
2: हमारी पॉलिसी ये रही है कि
1: पिता चल बसे, अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में
2: दोनों
1: घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया। और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि आठवीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग पीएचडी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा। अगर हिंदी नाटकों की बात तो पहला युग यदि हिंदू युग है तो दूसरा युग प्रसाद बात साफ है। भारत हिंदू के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे। खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई साथी नहीं था।
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कर भरी हुई थी और उनकी ये राष्ट्रभक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है।
0: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुटी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही तीन मूल पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही है जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं, तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
1: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर इसलिए भारत के किनारे से ही लौट गया क्योंकि वो भारत की शक्ति को जान गया था।
0: बिल्कुल ठीक। और इसी नाटक में प्रसाद ने वह प्रसिद्ध गीत भी लिखा है जो आजादी की लड़ाई के भारतीय लोगों का उद्बोधन गीत बन गया था। उसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार
1: हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत को गा देने से देशभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी।
0: हाँ, अगर कविताओं की बात करें तो प्रसाद को हिंदी छायावाद काव्यधारा के संस्थापकों में से एक माना जाता है। कामायनी नाटक उनका महाकाव्य तो न केवल छायावाद का बल्कि आधुनिक हिंदी का भी महाकाव्य है। यह महाकाव्य जीवन दर्शन से भरपूर है। इसकी अनेक पंक्तियाँ जीवन के अंधेरे पलों में राह दिखाती हैं।
1: इनमें से कुछ पंक्तियाँ हम आपको सुनाते हैं।
0: जी,
1: प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद ने ये बताया कि विनाश से ही सृजन होता है। जब फूल बासी हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर नए फूल एक बार फिर से निकलते हैं।
0: मैं रीति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। लज्जा सर की इन पंक्तियों में महाकवि का संदेश है कि लज्जा नारियों में शालीनता उत्पन्न करती है और उन्हें अनेक परेशानियों से बचाती है।
1: इसी सर्ग में वो विश्व प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भी है जिसे अपने निबंधों में लिखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसका उपयोग वक्ता सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं। तो लीजिए, आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे आपको सुना देते हैं।
0: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, इस स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर संतर में।
1: एक जमाने में संस्कृत भाषा में लिखा गया कि यत्र नारस्तु पूजन्ते यमन्ते तत्र देवता। इसके बाद प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखकर समाज में स्त्रियों का महत्व बताया। अब कुछ बातें कामायनी के मूल संदेश की भी कर लेते हैं श्रोताओं। इस काव्य में महाकवि का संदेश है समरसता, संतुलन और समन्वय। मध्यम मार्ग की वकालत की गई है इसमें। अति से बचो, अति भोग से बचो, नहीं तो प्रकृति के कहर से बच नहीं पाओगे, ऐसा बताया गया है इसमें। आज जबकि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति बार बार कर रही है, तो इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
0: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। दोस्त हम कह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, श्याम सुंदरदास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।
1: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारे प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को जनपक्षी है।
1: श्रोताओं, चलिए मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया ये उपन्यास भारत के गाँव की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
0: बिल्कुल ठीक कहा। विश्व के लगभग सभी गाँव में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय।
1: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। जो टारगेट होली जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
0: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल और स्वर थे प्रमोद शर्मा
1: और कंचन राजानी।
0: अब हमें आज्ञा दीजिए,
1: नमस्कार।
2: स्पेशली इस समय क्या हुआ था, क्योंकि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर दोनों जगह एक्टिव थे तो हुआ है ऐसा कि जो है ईस्टर्न सेक्टर से ट्रूप्स को है वेस्टर्न सेक्टर में मूव किया है। ठीक है, एंड वो पॉसिबली हुआ।

0: नमस्कार,
1: तो यहाँ पर 90.8
0: मेगाहर्ट्ज़
2: पर लड़ाई के दिन शुरू हुई थी और आईएफ ने
0: श्रोताओं अब
2: जैसे
0: समय हो चला है
2: वेस्टर्न फ्रंट पे जो
0: कार्यक्रम भारत भारती का
2: जिसमें
0: आप गायन और वादन का आनंद
2: ईस्टर्न फ्रंट पे तो

0: मंच पर यानी उस
1: आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने
0: कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं था वहाँ की सरकार का,
1: का, का
0: ना तो जिसमें सैनिक के तौर पर या सैन्य तौर पर ना आर्थिक तौर
1: झूला बिना देर किए।
2: और उस समय तक मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था कि अब हमारे बस की बात नहीं है इसको अपने साथ बना के रखना। एक तो क्या होता है वो डिमोरलाइजिंग फैक्टर आ चुका होता है, जो लोग लगातार वहाँ पे एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस रहे हो, तो भाई फील के मतलब उनमें भी एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर तो आ ही गया होगा
0: जी। जिस तरह से सर अंग्रेजों को ये सन 42 या 40 से लग गया था कि अब देश छोड़ना पड़ेगा।
2: एग्जैक्टली तो शायद वही बात थी। तो ईस्टर्न फ्रंट में अगर हम जिक्र करेंगे तो IF कैरिड आउट सेम काइंड ऑफ ऑपरेशंस, उसमें उन्होंने काफी इम्पोर्टेंट अगेन रोल प्ले किया था, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस कैरी आउट किए थे, क्लोजर सपोर्ट किए थे। और यहाँ सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी उस समय अगर हम बांग्लादेश की टेरेन देखते हैं काफी सारे रिवर्स एंड आलास काफी
0: ज्यादा।
2: एग्जैक्टली तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हेल्प जो थी IF ने दी, दैट वाज बाय कैरिंग आउट हेलीकॉन ऑपरेशंस एंड एयरबोर्न ऑपरेशंस। हेलीकॉन ऑपरेशंस का जब हम बात करते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो आर्मी है उसको हेलीकॉप्टर की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना होता। अब ये सुनने में बड़ा आसान सा लगता है लेकिन जब दुश्मन नीचे से फायर कर रहा है उसके इलाके से आप जा रहे हैं, एयरफोर्स वाज एबल टू मेंटेन ए एयर डोमिनेंस, तो वो एयरफोर्स को तो नहीं आने दे रही थी लेकिन नीचे आर्टिलरी की गन्स जो पाकिस्तान के सोल्जर उसके पास भी रखी हुई है तो
0: उनकी
2: पहुंच में है। इस टाइम पे जो है हेलीकॉन ऑपरेशंस कैरी आउट करना काफी मतलब एक साहस भरा कार्य था। और 71 में इंडियन आर्मी में एक तरह देखा जाए तो पहली बार हेलीकॉन ऑपरेशंस इससे बहुत मदद मिली, जैसे मैंने पहले बोला कि रैपिड मूवमेंट में ग्राउंड फोर्सेस के। पूरा अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न सेक्टर में तो हेलीकॉन सॉर्टी इस मतलब जो है IF ने कैरी आउट करी थी ऑलमोस्ट 400 प्लस जी है, और उसमें उन्होंने तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा जो है ट्रुप्स को जो पूरे फुली इक्विप थे उनको जो है मोबिलाइज किया। अगर हम इक्विपमेंट देखें आर्टिलरी गन्स जो है एमिनेशन जो है वाली काफी बड़ी उसमें जो है मोबिलाइज किया था। और हेलीकॉप्टर्स भी उस समय मतलब ऐसा नहीं कि एयरफोर्स का बहुत ज्यादा थे, दे हैड मतलब सर्विसबिलिटी वगैरह सब मिला के जो है उनके जिससे 12 हेलीकॉप्टर 14 हेलीकॉप्टर्स होते थे। तो मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद, देखिए जब रिसोर्सेज कम है हेलीकॉप्टर कम है तो उनको उतनी सॉर्टीज ज्यादा करनी पड़ेगी,
0: चक्कर ज्यादा
2: लगाना पड़ता है। तो आप ये देखिए हर एक चक्कर में उनको मतलब कितना ज्यादा एक्सपोजर है तो उतना ज्यादा खतरा है। तो ये जो
0: बार
2: बार उड़ान थे जो पायलट्स थे उनकी हिम्मत देखिए आप, और वो कंटिन्यूसली कर रहे थे मतलब जो है कंटिन्यूसली रहता था। तो फर्स्ट जो मेजर एयरलिफ्ट किया था इन्होंने पुरफाई जगह की कंपनी थी उसको मतलब उठाया पूरी टांग घंटे में उन्होंने पूरी की पूरी जो है टैलेंट को हेलीलिफ्ट किया था, ठीक है। और इसमें आप ये देखिए तकरीबन जो है 600 से ज्यादा ट्रुप्स थे, 12 टन से ज्यादा इक्विपमेंट था।
0: सर कितना 12 घंटे
2: 12 घंटे में इन्होंने किया था। और इसमें कंट्रोल 66 से 70 सॉर्टीज लगी थी तो उतनी बार वो लगातार जो है
0: उड़ान
2: भर रहे हैं जा रहे हैं और उस समय दुश्मन भी फायर कर रहा है। इट्स अ डेयरिंग ऑपरेशंस जो है बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली दे कैरिड आउट अदर ऑपरेशंस आल्सो जिसमें तो उन्होंने अगेन इंडियन ट्रुप्स को जो है मेघना रिवर क्रॉस कराने में मदद करी थी। और जो बिगेस्ट हेलीलिफ्ट का जो ऑपरेशंस कैरी आउट किया था ब्राह्मण बारिया से नरसिंहगढ़ी की जगह है तो इसमें उन्होंने तकरीबन जो है 1400 आर्म्ड ट्रुप्स। आर्म्ड ट्रुप्स में क्या होता है कि पूरा जवान जो है पूरे इक्विपमेंट के साथ वेपन के साथ एमिनेशन के साथ होता है उसको यहाँ पे ड्रॉप कराया था। तो तंगेल का ऑपरेशन काफी फेमस है जिसमें एक पैरा बटालियन ग्रुप को जो है तंगेल जो जगह है उसके ड्रॉप किया था, ठीक है। उन्हीं ब्रिज होता है जो जमालपुर तंगेल रोड पे था, उसको कैप्चर करने का टास्क था। ये जो ऑपरेशन किया गया था

0: सक्सेसफुल ऑपरेशन जिसमें कि 800 से ज्यादा ट्रक्स जो है वो ड्रॉप किया गया था विद आर्म्स एमिनेशन एंड इवन लाइट व्हीकल्स जीप होती है वो भी ड्रॉप हुई थी। अब देखिए इसको जब प्लान किया जाता है तो जैसे मैंने बताया ना कि नीचे से जब ग्राउंड फोर्सेस है उनसे डर होता है उनके अटैक का डर होता है। जब आप स्पेशली क्या होता है जब ड्रॉप हो रहा होता है पैराग्राउंड में आदमी ऊपर से छलांग लगाता है उससे वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है सोल्जर क्योंकि वो अपना वेपन तो फायर कर नहीं सकता और उसको ये भी नहीं दिख रहा है कि मैं कहाँ लैंड कर रहा हूँ। उसको एक ये भी चिंता रहती है कहाँ लैंड कर रहा हूँ तो उस समय ही एक्सपोज्ड कम्प्लीटली तो वो जो है एनिमी फायर के लिए उस समय तो इसलिए ये जो होता है इसमें प्रॉपर एक सिस्टम होता है पाथफाइंडर एक ग्रुप जाता है जो लोकेशन होती है उसको वो लोग मार्क करते हैं ताकि प्रॉपरली जो है लैंड
1: उतर सके
0: ड्रॉप कर सके। तो ये ऑपरेशन में पहले पाथफाइंडर ग्रुप भी गए थे और इवन दुश्मन को चकमा देने के लिए उनको बुलावे में रखने के लिए एक और ऑपरेशन करीब किया गया था एक और जगह एयर ड्रॉप प्लान किया गया था क्योंकि वहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर था ताकि उनको ये ना पता चले कि कहाँ एक्चुअली ऑपरेशन
1: डिटेल
0: जो प्लान किया गया था ऑपरेशन था और जो है उसकी सक्सेस में आप

स्पेशल मिशंस किए थे, रेड्स की थी, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस है ढाका यूनिवर्सिटी का, जो उनको पता चला था कि पाकिस्तानी ट्रुप्स हैं वहाँ, तो उसके कारण उन्होंने उसमें रेड किया था एंड स्पेसिफिक टारगेट्स को, स्पेसिफिक लोकेशन को डिस्ट्रॉय किया। इसी तरह से 14 दिसंबर को जो ढाका में जो गवर्नमेंट हाउस था, जो गवर्नर हाउस था, उसका रेड बहुत फेमस है, उसमें जो गवर्नर साहब थे, जो सिविलियंस का मिलिट्री ऑफिसर्स का

0: शुरू हुई उसके 30 मिनट के बाद जो है एग्जैक्टली पिन पॉइंट जो है इंडिया फोर्स का उसके ऊपर अटैक किया था एंड उन्होंने उसको इतना ज्यादा बर्बाद किया था कि जो गवर्नर साहब थे डॉक्टर मलिक उनके कैबिनेट ने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया था. दिस इज हाउ दे प्लेड अ वेरी वेरी
1: के भारत पाकिस्तान युद्ध में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारी थल सेना को आगे बढ़ने में किस प्रकार सहायता दी, ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी और भामासर से हम इस युद्ध में सेना के पराक्रम को आगे भी जानेंगे. कीजिए इंतजार कार्यक्रम के अगले एपिसोड का और कार्यक्रम का नाम है हमारी सेना हमारा गर्व. सर इस कार्यक्रम में आप आज भी शामिल रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू बुआ जी. जय हिंद श्रोताओं.
1: तो श्रोताओं ये था कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व. इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंडानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का. मैं थी आपके साथ आपके अपने खले. तो दीजिए इजाजत अब इस कार्यक्रम से. नमस्कार. 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है रेडियो आजाद हिंद.

की कंपोजिशन है, मिस्र चारू दिशी में है। तड़प जिया जाए, जब कृष्ण जी वृंदावन चढ़ के मथुरा चले गए थे तो वो सीन इसमें दर्शाया गया है। जैसे उनकी रथ धीरे धीरे आंखों से उजाल हो जाती है राधा जी की, वो थोड़ी सी कल्पना इसमें।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: बोली गारियों आँखी न भरत गुलाल रसिया नामा ने।

एक कजरी मिश्र के लिए में झीरे झीरे बरस से सावन रस बूंदिया अब आई गए लेना। शब्द इसके कजरी रेनी सीजन में गाया जाता है, झूला भी रेनी सीजन में गाया जाता है। झूला में कृष्ण जी की हिंडोरा की वर्णना होती है, इसमें सिर्फ सावन की वर्णना होती है जो कजरी के रूप में हम लोग बनारस घराने में गाते हैं।

0: कार्यक्रम भारत भारती में आप सुन रहे थे रूपन सामंता का गायन। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे और आपको लिए चलेंगे संगीत की दुनिया में। नमस्कार,
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: तो ये था श्रोताओं आज का हमारा दोपहर का प्रसारण 90.8 MHz पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। हमारा प्रसारण यूं ही रात्रि 10 बजे तक जारी रहेगा, दीजिए अनुमति पूर्वक हले को। और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर।
2: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 107 से वाचन। ऋषि हैं कुत्सांगिरस, देवता हैं विश्वेदेवा, छंद त्रिष्टु।
1: यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृणयन्तः आ वोर्वाचि सुमतिर् ववृत्या दंहोश्चिद्या वरिवो वित्तरासत्। यज्ञ देवगणों के लिए सुखदायक हैं। हे आदित्यगण, आप हमारे लिए कल्याणकारी हों। आपकी श्रेष्ठ विवेकशील प्रेरणा हमें प्राप्त हो, जो हमें कष्टों से संरक्षित करते हुए श्रेष्ठ संपदा प्रदान करे। उपनो देवा अवसा गमन्त्वंगिरसाम सामभिः स्तूयमानाः इंद्र इंद्रियैर् मरुतो मरुद्भिरादित्यैर् नो अदितिः शर्मयंसत। अंगिराओं के सामो गेय मंत्रों से प्रशंसित हुए सभी देवता संरक्षण साधनों से युक्त होकर हमारे यहाँ आगमन करें। इंद्रदेव अपनी शक्ति सामर्थ्यों, मरुत अपने वीरों तथा अदिति अपनी आदित्य शक्तियों के सहित हमें सुख प्रदान करें। तन्न इंद्रस्तद् वरुणस्तद् अग्निस्तद् अर्यमा तत्सविता चनोधात् तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिहि सिंधुः पृथ्वी उत द्यौः। इंद्र, वरुण, अग्नि, अर्यमा और सूर्य देवगण हमारे लिए मधुर अन्न प्रदान करें। हमारी कामना को मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक आदि देव अनुमोदित करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने ऋग्वेद के प्रथम मंडल की सूक्त 107 को सुना। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग न करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। कर

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

19वीं शताब्दी का अंतिम दशक, जब भारत भूमि एक मौन ज्वालामुखी की तरह थी, ऊपर से चुप लेकिन भीतर धधकती हुई, एक सुलगता हुआ समय कि जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम ने एक अत्यंत संवेदनशील और उग्र मोड़ ले लिया था। इस कालखंड में दो स्पष्ट धाराएं उभर रही थीं। एक का रवैया नर्म था, संवैधानिक दायरे में रहते हुए सुधारात्मक मार्ग था ये, और दूसरा रास्ता था सशस्त्र क्रांति का। इसके अग्रदूत थे चाफेकर बंधु और उनके अत्यंत निष्ठावान सहयोगी महादेव विनायक रानाडे, जो एक क्रांतिकारी छात्र थे तथा मात्र 20 वर्ष की आयु में भारत भूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वतन का राग कार्यक्रम में आज एक आत्मीय स्मरण इन्हीं महादेव विनायक रानाडे का। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद पुणे का ब्राह्मण समुदाय, विशेषकर चित्पावन ब्राह्मण समुदाय, अपनी राजनीतिक शक्ति खो चुका था, लेकिन उनकी बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना अब भी अत्यंत तेज थी। 1870 के दशक में वासुदेव बलवंत फड़के के सशस्त्र विद्रोह ने महाराष्ट्र के युवाओं के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। 1890 के दशक में पुणे वैचारिक संघर्ष का अखाड़ा बन चुका था। एक ओर सुधारवादी गुट सक्रिय था तो दूसरी ओर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में युवा आगे बढ़ रहे थे। ये विचारधारा स्वधर्म और स्वराज की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष को आवश्यक मानती थी। महादेव विनायक रानाडे इसी राष्ट्रवादी विचारधारा के गर्भ से निकले एक महान योद्धा थे। उनका जन्म सन 1878-79 के आसपास एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक रानाडे एक साधारण किंतु संस्कारवान व्यक्ति थे। महादेव विनायक रानाडे अपनी शिक्षा के दौरान ही पुणे के उस क्रांतिकारी प्रभाव में आ गए थे जो पुणे की तत्कालीन ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध पनप रहा था। युवा महादेव विनायक रानाडे की आंखों में अपने जीवन को लेकर कोमल स्वप्न नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में भारत की आजादी का संकल्प था। यही कारण है कि शिक्षा के साथ साथ उनका मन क्रांति की ओर झुकने लगा था।

महादेव विनायक रानाडे के क्रांतिकारी जीवन की औपचारिक शुरुआत हिंदू धर्म संरक्षण सभा के माध्यम से हुई थी। इस संगठन की स्थापना सन 1893-94 में चाफेकर बंधुओं द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदू परंपराओं, संस्कृति और मंदिरों की रक्षा करना था। ये संगठन सार्वजनिक रूप से एक धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में कार्य करता था, लेकिन गुप्त रूप से इसमें युवाओं को सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। संगठन की सदस्यता अत्यंत कठोर नियमों के तहत प्राप्त की जाती थी। गीता और तलवार पर हाथ रखकर क्रांतिकारी शपथ लेते थे। ये शपथ केवल शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का व्रत था जिसका पालन वो हर हाल में करते थे। इस संगठन के प्रारंभिक और सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे महादेव विनायक रानाडे। वो न केवल शारीरिक प्रशिक्षण में अग्रणी थे, बल्कि चाफेकर बंधुओं के बीच एक सेतु की भांति कार्य किया करते थे। ये मिलकर जैसे एक ही लक्ष्य के चार स्तंभ थे। इनकी गतिविधियां केवल शस्त्र तक सीमित नहीं थीं, ये जन जागरण का कार्य भी करते थे। संस्था शिवाजी महाराज और गणपति उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार करती थी। इसके साथ ही धर्मांतरण का भी विरोध करती थी। ईसाई मिशनरियों को भारतीय संस्कृति के लिए खतरा मानते हुए उनका विरोध करती थी। महादेव विनायक रानाडे का युवा मन केवल आक्रोश से नहीं भरा था, बल्कि वो प्रतिशोध की ज्वाला भी बन चुका था। उनके जीवन का लक्ष्य था अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंकना। इसी बीच एक महामारी ने ब्रिटिश राज का अत्यंत क्रूर चेहरा जनता के सामने रख दिया। सन 1896 में पुणे में प्लेग फैला। धीरे धीरे इसने एक महामारी का रूप ले लिया। फरवरी 1897 में ब्रिटिश सरकार ने विशेष प्लेग समिति का गठन किया। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी W.C. रेंड को इसका अध्यक्ष बनाया गया। रेंड का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से सैन्य कार्रवाई के पक्ष में था। उसका रवैया अत्यंत संवेदनहीन रहा। रेंड ने प्लेग नियंत्रण के लिए डॉक्टर्स के स्थान पर 800 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को पुणे की गलियों में उतार दिया। इन सैनिकों ने प्लेग की जांच के नाम पर जो कार्रवाई की वो अत्यंत घृणित थी। ये सैनिक आधी रात को लोगों के घर में घुस जाते और घर के सामान को नष्ट कर देते। ये सैनिक पूजा घरों में भी घुस जाते, पूजा स्थान को अपवित्र करते, धार्मिक प्रतीकों का तिरस्कार करते, मूर्तियों को तोड़ते और उन्हें अपमानित करने का कृत्य करते। प्लेग जांच के नाम पर सैनिक महिलाओं को निर्वस्त्र करवाते और उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जाता। लोगों को शिविरों में भेज दिया जाता और अत्यंत अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता था। इन घटनाओं ने महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी।

प्लेग नियंत्रण के बहाने रैंड के अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मच गया था। अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी बुलंद स्वर में आलोचना की। महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं ने रैंड को अत्याचारी और धर्म का शत्रु घोषित कर दिया तथा उसे समाप्त करने की योजना बनाई। 22 जून सन 1897 को रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर पुणे के गवर्नमेंट हाउस में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें रैंड को भी शामिल होना था। क्रांतिकारियों ने रैंड की हत्या के लिए इसी दिन को चुना। क्रांतिकारियों ने सारी आवश्यक जानकारियां जुटाई। वासुदेव हरि चाफेकर ने रैंड की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। महादेव विनायक रानाडे ने प्रमुख सहायक, क्रियान्वयनकर्ता और निगरानी की जिम्मेदारी संभाली। 22 जून को सभी क्रांतिकारी नियत समय और स्थान पर अपने अपने दायित्वों के साथ तैनात हो गए। जैसे ही रैंड की बग्घी निकली, दामोदर चाफेकर ने संकेत दिया। वो बग्घी के पीछे दौड़ने लगे और बग्घी के पर्दे हटाकर रैंड के सिर पर गोली मार दी। रैंड गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में 3 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। रैंड की बग्घी के ठीक पीछे उसके सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आरिस्ट की बग्घी भी थी। बालकृष्ण चाफेकर ने उस पर गोली चलाई और वो घटनास्थल पर ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। महादेव विनायक रानाडे हथियार बंद होकर निगरानी करते हुए वहां मौजूद थे। उन्होंने रैंड और आयर्स्ट की हत्या में सक्रिय सहयोग दिया। अंधेरे और उत्सव के शोर का लाभ उठाते हुए क्रांतिकारी वहां से सुरक्षित निकल गए। इसे 1857 के बाद भारतीय उग्र राष्ट्रवाद की पहली बड़ी घटना के रूप में देखा गया। ये घटना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक जबरदस्त झटका थी। ब्रिटिश प्रशासन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया तथा पुणे में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू की, लेकिन क्रांतिकारी अब तक पकड़े नहीं गए थे। इसी बीच द्रविड़ बंधु गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र शंकर द्रविड़, जो पहले से ही चाफेकर बंधुओं के साथ थे, उन्होंने 20,000 रुपए के लालच में पुलिस को सारी जानकारी दे दी। इसी आधार पर दामोदर हरि चाफेकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने स्वीकार किया कि हिंदू धर्म के अपमान और मूर्तियों को तोड़े जाने का बदला लेने के लिए उन्होंने रैंड की हत्या की। 18 अप्रैल सन 1898 को उन्हें फांसी दे दी गई। बालकृष्ण हरि चाफेकर कुछ समय तक फरार रहे, लेकिन अंततः 1899 में वो भी पकड़े गए। द्रविड़ बंधुओं के विश्वासघात ने महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर को क्रोध से भर दिया। 9 फरवरी सन 1899 को महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर ने खांडो विष्णु साठे के साथ मिलकर द्रविड़ भाइयों को समाप्त कर दिया। उसी रात उन्होंने पुलिस के एक प्रमुख मुखबिर और एजेंट रामा पांडू को भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला। महादेव विनायक रानाडे ने मुकदमे के दौरान जो साहस दिखाया, वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने अपनी याचिका में खुलासा किया कि पुलिस ने उन पर अमानवीय अत्याचार किए। पुलिस चाहती थी कि वो स्वीकार करें कि रैंड की हत्या के पीछे तिलक जी का हाथ है, लेकिन अनगिनत यातनाएं सहने के बावजूद उन्होंने तिलक जी जैसे राष्ट्रीय नेताओं का नाम नहीं लिया। मुकदमे का फैसला आया। किशोर क्रांतिकारी खांडो विष्णु साठे को 10 वर्ष कारावास की सजा दी गई और शेष 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 8 मई सन 1899 को वासुदेव हरि चाफेकर को, 10 मई को महादेव विनायक रानाडे को और 12 मई को बालकृष्ण हरि चाफेकर को पुणे की यरवदा जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। नमन ऐसे अमर बलिदानियों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बाल सभा।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है दादी नानी की कहानियाँ।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, और बच्चों के मम्मी पापा को भी मनीषा का नमस्कार। बाल सभा जैसे ही शुरू होती है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे रेडियो के थोड़ा सा और करीब आ जाते हैं ये सोचते हुए आज कौन सा विषय है। आज बहुत ही मस्त और बहुत ही प्यारा और बहुत जानकारियों से भरा हुआ विषय है बच्चों। आज हम आपकी दादी नानी की कहानियों की बात करने वाले हैं, और आज मैंने इसीलिए बच्चों के मम्मी पापा को भी नमस्ते किया है, क्योंकि ये हर उम्र के इंसान से जुड़ा हुआ विषय है जिसे सुनते ही हमारे मन में बचपन की ढेर सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और आज का विषय है नानी दादी की कहानियाँ। अब देखिए ना दोस्तों, समय कितना बदल गया है। पहले शाम होते ही घरों में बच्चों की आवाज़ें गूंजती थी, आंगन में चारपाइयाँ डाली जाती थी, रसोइयों से रोटियों की खुशबू आने लगती थी, और रात का सबसे सुंदर समय होता था जब बच्चे अपनी दादी, अपने दादा या फिर नाना नानी के आसपास बैठकर कहानियां सुनते थे। कोई बच्चा दादी की गोद में सिर रखे होता था, कोई तकिए को पकड़कर बैठा रहता था, कोई बीच बीच में सवाल पूछता था, फिर क्या हुआ, और दादी भी कहानी ऐसे सुनाती थी जैसे सब कुछ ना उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। ऐसे बताती थी हर बात को, लगता था जैसे सामने आकर खड़े हो गए हैं किरदार। लेकिन आज वही घर, वही बच्चे, पर माहौल बिल्कुल बदल गया है। अब रात को बच्चों के हाथों में मोबाइल होता है, कानों में ईयरफोन होते हैं, आंखों के सामने स्क्रीन होती है। कहानियां अब सुनाई कम जाती हैं, दिखाई ज्यादा जाती हैं। पर क्या सचमुच मोबाइल किए ये छोटे छोटे वीडियो उस अपनेपन की जगह ले सकते हैं जो दादी की आवाज में होता था? क्या कोई कार्टून उस एहसास को दे सकता है जो नानी की गोद में सिर रखकर मिलता था? या कोई पीछे से एक आवाज मोबाइल में ऐसी आ सकती है, अच्छा जरा पास में आ जाओ, आज कहानी सुनाने के बाद तुम सबको बेसन के लड्डू दूंगी, है ना? नहीं आएगी ना ऐसी आवाज, नहीं आएगी, क्योंकि इंसानी रिश्तों में और मशीनरीज में कुछ बेसिक अंतर होते हैं बच्चों। और आज हम इन्हीं बातों पर लंबी और प्यारी बातचीत करेंगे। और आपको पता है, इस बातचीत में मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में भी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची, मेरी दोस्त मातृका मौजूद है। मातृका, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्ते दीदी, और बाल सभा सुन रहे सभी दोस्तों को मेरा भी बहुत सारा प्यार। दीदी, आज का विषय सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से अपने नानी के घर पहुंच गई हूँ। मुझे आज भी याद है, गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होते ही मैं सबसे पहले यह पूछती थी कि हम नानी के घर कब जाएंगे, और जैसे ही वहाँ पहुँचते थे लगता था जैसे पूरी दुनिया बदल गई। ना कोई जल्दी, ना कोई टेंशन, बस खेलना, हंसना और रात को कहानी सुनना। मेरी नानी हर रात नई नई कहानी सुनाती थी। मैं कई बार सोचती थी कि आखिर उनके पास इतनी सारी कहानियाँ आती कहाँ से हैं? कभी राजा रानी की कहानी, कभी जंगल की कहानी, कभी अपने बचपन की बातें। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि वो हर कहानी को इतने भाव से सुनाती थी कि लगता था जैसे सब कुछ हमारे सामने हो रहा है।
2: बिल्कुल सही कह रही हो मातृका तुम। मुझे तो लगता है कि ये दादी नानी की कहानियाँ सिर्फ शब्दों में गुथी हुई पूरे संसार भर के लिए एक माला के समान है। एक ऐसा संसार है जहाँ बच्चे कल्पना करना सीखते हैं, जहाँ एक छोटी सी कहानी के ज़रिए जीवन की बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा दी जाती हैं। और मुझे तो याद है, पता है क्या,
4: क्या दीदी?
2: मेरी दादी रात को खाना खिलाने के बाद सबको बोलती थी, सारे भाई बहन मेरे पास आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके इधर आइए सब लोग। फिर हम लोग भी भड़ भड़ भड़ भड़ भड़ भड़ भड़ सारा काम खत्म करते थे। और अगर किसी दिन दादी ने ये कह दिया कि वो बहुत थक गई हैं और वो कल कहानी सुनाएंगी, तो बस हम सब के चेहरे लटक जाते थे मात्र का। और फिर हम उन्हें मनाते थे, दादी प्लीज़ छोटी सी कहानी सुना दीजिए, छोटी सी दादी, छोटी सी। और फिर बस दादी मुस्कुरा देती थी, अच्छा चलो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, ज़्यादा पीछे मत पढ़ना। लेकिन पता है बच्चे, वो छोटी कहानी भी इतनी मज़ेदार होती थी कि कब वो आधा घंटा निकल जाता था हम लोग को पता ही नहीं चलता था।
4: दीदी, मुझे लगता है कि कहानियों का सबसे सुंदर हिस्सा ये होता था कि उनमें सिर्फ मनोरंजन नहीं होता था, हर कहानी कुछ सिखा कर जाती थी। जैसे मेरी नानी एक कहानी सुनाती थी दो दोस्तों की। एक दोस्त हमेशा मेहनत करता था और दूसरा काम से बचता था। शुरू में तो आलसी दोस्त को बहुत मजा आता था, लेकिन बाद में जब मुश्किल समय आया तो वही मेहनती दोस्त सबकी मदद कर पाया। उस दिन नानी ने हमसे कहा था, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और सच बताऊं दीदी, उस कहानी के बाद जब भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, मुझे वही कहानी याद आ जाती थी।
2: अच्छा चलो, ये तो एक बहुत अच्छी बात है, पर मैं बताऊं मेरी दादी का क्या स्टाइल था।
4: क्या दीदी?
2: उनका स्टाइल ये था, वो अमिताभ बच्चन की तरह धीरे से भारी आवाज में कहती थी, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। आवाज बनाकर बोलती थी तो हम लोग हंसने भी लगते थे, लेकिन बस तुरंत सब भागे भागे जाते थे। मुझे आज भी याद है मातृका, कई बार ऐसा होता था कि छत पे हम लोग लेटे हुए हैं, नींद आ नहीं रही है, मच्छर काट रहे हैं, मच्छरदानी में और गर्मी लग रही है, माँ को कह रहे हैं, माँ प्लीज पंखा चला दीजिए, लेकिन लाइट ही नहीं है, क्या करें। तब फिर वही दादी की आवाज आती थी, कहा ना मैं कहानी सुना रही हूँ। तो मैं कहती थी, दादी अपनी आवाज में बोलिए ना, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चों के साथ समझाते हुए, डांटते हुए, बहुत प्यार से वो कहानी ऐसे सुनाती थी कि अगर तो घर में किसी बच्चे के झूठ बोलने की आदत है तो वो मन ही मन ऐसी कहानी बना देती थी कि झूठ बोलने की आदत बुरी है, हमें ये पता लग जाता था। अगर घर में किसी बच्चे को डर लग रहा है ना, तो हमारी दादी फटाक से बहादुरी की कहानी सुना देती थी। और कहानी सुनाते सुनाते वो हमेशा हमको एक मंत्र भी सुनाती थी। सुनाऊं तुमको?
4: हाँ प्लीज दीदी।
2: वो हमेशा एक मंत्र सुनाती थी, जय बाबा हनुमान, 12 वर्ष के जवान, हाथ में गदा मुंह में पान, जिधर देखो हनुमान ही हनुमान। तो जब मैं ये मंत्र सुनती थी तो मैं कहती थी, अच्छा हर तरफ अगर ईश्वर है तो फिर तो हमें डर नहीं लगना चाहिए। तो ये हमने कहानी से ही सीखा कि कैसे बातों ही बातों में बहादुरी की कहानी सुना दिया जाए। ऐसी कोई बच्चा अगर घर में लालच कर रहा है, जैसे गर्मियों की छुट्टी में क्या हुआ, मात्र का सब बच्चे इकट्ठे हुए है ना, अब कोई चीज़ खाने की आई तो कोई बच्चा कह रहा है ये मैं ज़्यादा लूँगा, कोई बच्चा कह रहा है मुझे कम मिला, फिर पता चला थाली के ऊपर ही सब इकट्ठे झपट पड़े। तो हमारी दादी तुरंत उसी रात को ना एक लालच वाली कहानी सुना देती थी, तो हम सब बड़े शर्मिंदा होते थे कि अरे हम सुबह ही तो आम पे इतना झगड़ा कर रहे थे। तो कुल मिला के वो कहानियाँ नहीं थी दरअसल बेटा, वो क्या थी, वो अपने परिवार को करीब लाने का एक साधन भी थी। और आजकल तो तुमने भी देखा होगा ना मात्र का, ऐसा कई बार होता है कि एक ही घर के सब लोग साथ होते हैं फिर भी कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता, तुमने देखा है ऐसा?
4: हाँ दीदी, आपको पता है मेरे जब कजिन्स मिलते हैं, हम लोग सब साथ में बैठते हैं, तो कोई कजिन मोबाइल चला रहा होता है, कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है। मेरी दादी आती हैं, जब उनसे बोलती हैं कि मोबाइल रख दो, दो बार बोलने पे नहीं सुनते वो तीसरी बार सुनते हैं, और मुझे इतना बुरा लगता है।
2: ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपके बुजुर्ग, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी अगर कुछ बोल रहे हैं तो बताइए मातृका ने कितनी बड़ी बात कही कि एक बार में नहीं सुन रहे हैं, दो बार में नहीं सुन रहे, तीसरी बार उन लोगों को कहना पड़ रहा है, कितनी गलत बात है, बहुत गलत बात है। पर अब क्या, अब तो हम लोग वहां पहुंच गए हैं जहां हम मातृका से कोई कविता सुनेंगे। तो मातृका, आज तुम क्या सुनाने वाली हो?
4: दीदी, आज मैं कविता सुनाऊंगी जिसका नाम है मातृभूमि।
2: ठीक है
4: दीदी, क्या मैं अपनी कविता शुरू करूं?
2: बिल्कुल मातृका, स्वागत है आपका।
4: ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमन छटा निराली पग पग चहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं। हो मस्त झाड़ियों में अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंश पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाई। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी।
2: वाह वाह मातृका, गौरव का भाव भर रहा था जब तुम ये सुना रही थी तब तुम्हारे मन में?
4: हाँ दीदी, बहुत ज्यादा।
2: और यही खास बात है जो हम कविताओं से और कहानियों से सीखते हैं कि जब हम किसी ऐसी ओजपूर्ण कविता को सुनाते हैं तो हमारे कहने का तरीका अलग हो जाता है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, कितना अच्छा लगता है जब हम देश की बात करते हुए गर्व से भर जाते हैं। मातृका, बहुत अच्छी कविता सुनाई तुमने। अब हम आगे अपनी बातों पर आए, उससे पहले मैं हर सप्ताह अपने बच्चों को कुछ सुना रही हूँ, तो आज बचेंद्री पाल जी के जिस अध्याय पे हम पहुँच गए हैं वो है भागीरथी सात बहनें। सुनोगी?
4: हाँ दीदी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी यह सुन के।
2: तो फिर अब शुरू करते हैं। बच्चों, आप भी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे होंगे, ये मुझे पता है। जिस ढंग से मेरा पर्वतारोहण का जीवन ढल रहा था मैं उससे प्रसन्न थी, लेकिन इससे मेरी या मेरे परिवार की आर्थिक कठिनाइयों का समाधान नहीं हुआ। तब फरवरी 1983 में नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन NAF के निदेशक ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह नेहरू संस्थान के प्रशिक्षकों के लिए एक साहसिक कोर्स चलाने के लिए उत्तरकाशी आए और उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए मेरे सहित सात स्थानीय और शिक्षित महिलाओं का चयन किया। मैंने इस प्रतिष्ठित दक्ष तथा वरिष्ठ पर्वतारोही में भरोसा कर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया कि मेरे माता पिता परिवार के आर्थिक बोझ को कम करने की दृष्टि से मुझ पर विवाह करने के लिए दबाव डाल रहे थे। मैंने उनसे ऐसे लोगों के लिए जो निर्धन और जीविका रहित थे कुछ रास्ता निकालने के लिए कहा, ताकि पर्वतारोहण में हमारी रुचि और प्रतिभा का उपयोग हो सके। सुना मातृका?
4: हाँ दीदी।
2: कि कैसे एक ऐसी बच्ची जो खुद गरीबी में अपने जीवन को गुजार रही है वो दूसरे बच्चों के लिए भी साथ साथ सोच रही है और ब्रिगेडियर जो आने वाले थे उनसे ये बात साझा करना चाहती है। दूसरे दिन प्रातः ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने हमें भागीरथी सेवन सिस्टर एडवेंचरस क्लब शुरू करने के लिए NAF के आवेदन पत्र भरने के लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि ये लड़कियों और महिलाओं की एक अलग प्रकार की संस्था होगी जो जोखिम के कार्यों में लगी लड़कियों की सहायता करेगी। उन्होंने वादा किया कि यह योजना प्रशिक्षित लड़कियों और महिलाओं की आर्थिक चिंताओं का ध्यान रखेगी और इस बात से हमारा मनोबल आसमान छूने लगा और मैं मन लगाकर गंभीरता पूर्वक प्रशिक्षण कार्य में जुट गई। सात बहनों में से प्रत्येक ने अच्छा नाम कमाया। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने बताया, हमारा प्रदर्शन पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर था। हमारे प्रवास के अंतिम दिनों तक ब्रिगेडियर हमारे लिए एक पिता की तरह हो चुके थे और मेरे सुझाव पर हमने उन्हें छोटे चाचा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। जब छोटे चाचा ने 28 फरवरी 1983 को उत्तरकाशी छोड़ा तब हम सब की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने 3 महीने के अंदर लौट आने का वादा किया, जिससे वो हमारे साहसिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए मदद कर सके। उसी दौरान हमें स्थानीय बच्चों को चट्टानों की चढ़ाई के लिए ले जाने के लिए कहा गया। हमारे अपने कार्यक्रमों को चलाने की संभावना काफी रोमांचकारी थी। मैं इसकी तैयारी कर चुकी थी। नकुरी से लेकर तेखला में चट्टान आरोहण क्षेत्र तक घूमने और जॉगिंग का अभ्यास करती थी। ये रास्ता एक तरफ से 18 किलोमीटर पड़ता था। इस अभ्यास ने मुझे आरोहण की भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाने में सहायता की। वायदे के अनुसार ब्रिगेडियर जून में आ गए। वो अपने साथ हमारे लिए शिविर लगाने और ट्रैकिंग उपकरणों के 25 सेट साथ लाए, जिससे कि लड़कियों के लिए 2 साहसिक कोर्स साथ साथ चलाए जा सके। सेना की सहायता से उन्होंने तेखला में एक छोलदारी शिविर लगाने की व्यवस्था भी की। पहले समूह में जमशेदपुर से आई 13 लड़कियां थीं, दूसरे दल में मेघालय से आई शिलोंग की 15 चुस्त खासी लड़कियां थीं। प्रत्येक कोर्स में छात्रवृत्ति के आधार पर स्थानीय लड़कियों को सम्मिलित कर 20-20 के समूह बनाए गए। मुझे कोर्स के निदेशक और विजया पंत को उपनिदेशक बनाया गया। क्वार्टर मास्टर तथा चिकित्सा सहायक के कार्य बारी बारी से दूसरी 7 बहनों को सौंपे गए। कोर्स में काम करने के लिए हमें कुछ मानदेय भी दिया गया। कार्यक्रम में विभिन्नता थी। चट्टान आरोहण के लिए 3 दिन रखे गए थे, 1 दिन इसके बाद नदी पार करने के लिए तथा शिविर के लिए था। इसके अतिरिक्त पर्वतारोहण की रस्सियों का उपयोग, रसोई बनाना तथा बीहड़ जंगल में सुरक्षा प्रदान प्राप्त करना भी सिखाया गया। हमारे साथ एक वन्य रेंजर था, जिसने हमें उस क्षेत्र की वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया। 2 छोटी और 1 लंबी यात्रा सहित हमने लगभग 150 किलोमीटर का रास्ता तय किया और 2500 से 3000 मीटर तक की चढ़ाई की उतराई की। लंबी यात्रा के दौरान हमारा सर्वोच्च शिविर लगभग 3000 मीटर पर प्राकृतिक सौंदर्य स्थली डोडी ताल में था। यहाँ पर ठंडे पानी और मछलियों से भरपूर एक सुंदर झील के चारों ओर आकर्षक इंद्रधनुषीय आभा

0: से अपना पहला कोर्स पूरा किया। हमने उन्हें निर्देशन दिया परंतु विस्तार से कार्य करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। उनका सबसे अधिक स्मरणीय योगदान था मंत्रमुग्ध कर देने वाली घटनाओं से भरपूर पर्वतों तथा आरोहण संबंधी विभिन्न विषयों पर उनकी बातें। जब भी छोटे चाचा चिल्लाते, लड़कियों एक और कहानी सुनो, देखो फिर वही बात आ गई। मातृका जो ब्रिगेडियर जी थे, है ना, ज्ञान सिंह जी, जिन्हें ये छोटे चाचा कहती थी, वो भी इन्हें कहानियां सुनाते थे। किसकी? पर्वतों की कहानियां। और खास बात देखिए बच्चों, मैंने बात की जब शुरुआत की थी तब आपसे कहा था कि जो दादी नानी है वो हमेशा आपके व्यवहार को देखकर तुरंत कहानियाँ भी बना लेती थी, है ना, कि अगर कोई बच्चा लालच कर रहा है तो ऐसी कहानी जिसमें लालच दूर हो जाए, कोई डर रहा है तो ऐसी कहानी जिससे डर दूर हो जाए। आप ये देखिए कि उन लोगों की सोचने समझने की क्षमता और बच्चों को समझाने का तरीका कितना अच्छा था। वैसे ही ये जिन्हें छोटे चाचा कह रही हैं, उन्होंने भी क्या किया कि ऐसी कहानियाँ सुनाई जो पहाड़ और पर्वत के अनुकूल हों। जुलाई 83 के मध्य ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, प्रसिद्ध पर्वतारोही चंद्रप्रभा अटवाल, विजया पंत और मुझे लेकर दिल्ली गए। इस समय तक चंद्रा दीदी भागीरथी सेवन सिस्टर्स एडवेंचरस क्लब की अध्यक्ष और मैं उपाध्यक्ष चुन ली गई थी। राजधानी में छोटे चाचा ने टेलीविजन के लोकप्रिय कार्यक्रम घर बाहर में हमारे इंटरव्यू की व्यवस्था कर दी। 3 राष्ट्रीय दैनिक पत्रों में भी हमारा साक्षात्कार आया। हमारे फोटो सहित ये साक्षात्कार और लेख दूसरे दिन सवेरे के अखबार में छपे और जब हम जनपद में खरीदारी कर रहे थे तब अनेक युवाओं ने रोका और पूछा, क्या मैंने तुम्हें टीवी पर नहीं देखा था, अथवा क्या तुम वही महिला हो जिनके चित्र मैंने अखबार में देखे हैं। हमारे छोटे से क्लब भागीरथी सेवन सिस्टर एडवेंचर क्लब ने राजधानी में पहले से ही रंग जमाना शुरू कर दिया था। तो ये था वो अध्याय जो आज आपको मुझे बछेंद्री पाल का सुनाना था। अब मातृका, पहले ये बताओ कि तुम्हें बछेंद्री पाल की ये कहानी कैसी लगी, पर्वतारोहण की, वो जो मेहनत कर रही थी, कैसे उन्होंने अपनी आर्थिक स्थितियों से लड़ा, कैसा लगा?
1: दीदी, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे इससे एक सीख भी मिली कि हमको कभी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए।
0: और मेहनत के बीच में यदि आपकी आर्थिक स्थिति बच्चों आए ना, तो कभी हमें झिझकना नहीं चाहिए आपको सही व्यक्ति देखकर। क्योंकि देखिए बच्चों, एक और बात इस कहानी से हमें सीखने को मिली कि ब्रिगेडियर को उन्होंने छोटे चाचा पहले दिन से कहना शुरू नहीं किया था। ब्रिगेडियर को उन्होंने छोटे चाचा बहुत दिन बाद कहना शुरू किया, वरना पहले तो सर कहती होंगी, है ना। जब उन्हें लगा कि इनसे रिश्ता भी अच्छा है और इन्हें हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बता सकते हैं, तब बछेंद्री पाल ने यह निर्णय लिया होगा कि उन्हें छोटे चाचा कहकर अपने घर की आर्थिक स्थिति बताई जाए। और देखिए, अगर उस वक्त बछेंद्री पाल शर्मा जाती तो क्या होता? तो क्या वो बनती पर्वतारोही? क्या वो सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच पाती? नहीं, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति उनके आड़े आ जाती, लेकिन वो इसको सही व्यक्ति तक पहुंचाने में कोई शर्माई नहीं, कोई झिझकी नहीं, बल्कि सही वक्त सही व्यक्ति देखकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब मुझे ये बात इन्हें बता देनी चाहिए। तो आपकी जिंदगी में कहानियां छोटे छोटे अनुभव से लेकर बड़ी बड़ी समझदारी तक बहुत काम आती हैं बच्चों। अब वापस लौटे मातृका विषय पर।
1: हाँ दीदी, बट विषय पर लौटने से पहले मैं विषय की ही बात करना चाहूँगी।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात हो गई। बताओ क्या कहना चाहती हो?
1: दीदी, आपने जो मुझे वो जय बाबा हनुमान वाली वो मंत्र बताया था ना, आपने मुझे एक इतना बड़ा सल्यूशन दे दिया, मतलब मैं क्या बताऊं। मुझे हमेशा जब मेरी मम्मी ऑफिस जाती है या फिर कहीं काम करने जाती हैं, तो मुझे हमेशा डर लगता है कि कोई चोर ना घुसाए, कोई भूत ना आ जाए, मुझे ऐसे बहुत डर लगता है। और आपने तो मुझे आज इतना बड़ा सल्यूशन दे दिया, अब मुझे जब भी डर लगेगा, मुझे तो आपने बता दिया कि हमारे आसपास भगवान जी रहते हैं, तो अब मुझे जब भी डर लगेगा मैं बोलूँगी जय बाबा हनुमान, 12 वर्ष के जवान, हाथ में गदा मुँह में पान, जिधर देखो हनुमान ही हनुमान।
0: बिल्कुल बच्चों, आपने भी यही करना है कि आप जिनकी भी पूजा करते हैं, है ना, आप जिनसे भी हिम्मत का जो भी आपके लिए स्रोत है, आपके माता पिता हों, आपके दादी बाबा हों, या ईश्वर, या कोई ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें आप बहुत कुछ मानते हैं, आप उनको याद करिए और सच मानिए आपका

0: सर रफू चक्कर हो जाएगा। तो मातृका, अच्छा लगा मुझे कि तुमने स्टूडियो में बैठकर सिर्फ इस कार्यक्रम में ही हिस्सा नहीं लिया बल्कि अपनी लाइफ के लिए कुछ सोल्यूशन भी लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज बच्चों हम जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ना, उतनी ही तेजी से कहीं ना कहीं रिश्तों की गर्माहट थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। शायद यही वजह है कि आज बच्चों के पास बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत बच्चों के मुंह से सुनती हूँ मातृका कि उनको ना अकेलापन महसूस होता है क्योंकि पेरेंट्स ऑफिस में हैं और वो लोग अकेले हैं। ऐसे में जब हम बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं ना तो हम दिमागी रूप से थकने लगते हैं, अकेले पढ़ने लगते हैं या फिर हम पूरे टाइम टीवी देखते रहें। इसलिए बेहतर होता है हम कहानी की किताब पढ़ें। अगर हमारे पास कोई नहीं है ना बड़ा बुजुर्ग सुनाने के लिए, तो बच्चों आप एक और काम कर सकते हैं कि आप कहानियों की अच्छी अच्छी किताबें खरीदिए और आप जब वो कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और गर्मियों की छुट्टी में ये तय कीजिए कि आपको अपने दादी दादा के पास या फिर नाना नानी के पास ज़रूर जाना है ताकि आप उनसे वो कहानियाँ, वो वक्त देख सको, सुन सको जो हम सब ने देखा है कि अगर लाइट चली गई तो कहीं से एक दिया जला लिया या लालटेन जला ली और फिर सब आसपास बैठ गए, पीछे से झींगरों की आवाज़ आ रही है, कभी हवा चल रही है, कभी मज़े आ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। और हाँ, रात में सब लोग नीचे गए, जल्दी से कोई नमकीन चूड़ा ये सब ले आए और फिर खाने लगे। तो ये सब चीज़ें ना आपको साथ रहने का मज़ा, आनंद, ये सब कुछ कहानियाँ सुनते सुनाते आता है।
1: हाँ दीदी, और सबसे मज़ेदार बात ये होती थी कि डर भी लगता था और मज़ा भी बहुत आता था। मेरी नानी भी कभी कभी ऐसी कहानियाँ सुनाती थी कि मैं रात को पानी पीने भी अकेले नहीं जाती थी, फिर मैं मम्मी को उठाकर ले जाती थी।
0: बिल्कुल ऐसा तो हुआ ही होगा क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि अगर हमारे जो भाई बहन हैं जो बाहर से आते हैं, बुआ के बच्चे हैं या ताऊ जी के बच्चे हैं, तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा शरारती बच्चा ज़रूर होता था जो कहता था मैंने भूत बंगला देखा है। भले ही वो कुछ नहीं होता हो लेकिन वो सब बच्चों को डराने का काम करता था। एक और बात बहुत अच्छी होती थी मातृका की, इससे हमारी भाषा बहुत सुधरती थी, हम सुनना सीखते थे, हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है और सबसे बड़ी बात, हमारे दादी दादा ने, हमारे नाना नानी ने हमको संवेदनशील बनाया है, हमें सुनने की आदत डाली है, हमें दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने के तरकीब सिखाई है। क्योंकि कहानी सुनते सुनते बच्चा हर किरदार के साथ जुड़ता है, वो सोचता है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या करता।
1: दीदी, आजकल बहुत सारे बच्चों को हिंदी बोलने में भी दिक्कत होती है, लेकिन जो बच्चे अपने दादा दादी के साथ समय बिताते हैं उनकी भाषा बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो रोज नई नई बातें सुनते हैं, नए नए शब्द सीखते हैं।
0: कितनी अच्छी बात कही है मातृका तुमने। तुम्हें पता है क्या हुआ, एक बार मैंने कहा कि मेरे इस बार बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तो मेरी नानी ने तुरंत मुझसे कहा हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं बहुत देर तक अपनी माँ से पूछती रही इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, लेकिन दरअसल मुहावरों में कही हुई बातें, कहावतें, ये सारी बातें हमें कहीं ना कहीं हमारी भाषा को समृद्ध करती थी और आज भी कर सकती हैं अगर आप बच्चों अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताएं।
1: दीदी, आज मैं घर जाकर सबसे पहले अपनी नानी को फोन जरूर करूंगी और उनसे कहूंगी कि अगली बार मिलने पर मुझे फिर से कहानी सुनानी है।
0: बिल्कुल, तो बच्चों अब चलते चलते हमारा संकल्प लेने का समय आ गया है। जल्दी से धीमे से संगीत के साथ हम सब आंख बंद कर लेते हैं। आप सब आंख बंद करके ये सोचिए कि अब से घर में जो भी बुजुर्ग हैं हमें उनके साथ बैठकर कुछ देर बातें ज़रूर करनी है, उनसे कहानियाँ ज़रूर सुननी हैं। अगर वो आपके पास नहीं हैं तो आप सबको उन्हें हर रोज़ फ़ोन लगाना है, फ़ोन पर बात करनी है। जब भी आपके घर में कोई भी बुज़ुर्ग आए तो आपको उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। उनकी बात एक बार में माननी है, उन्हें कभी पलटकर जवाब नहीं देना है। उनकी दवाइयों का ख्याल, उनकी सेहत का ख्याल रखने में आपको मदद करनी है। और बस इन्हीं संकल्पों के साथ अब समय आ गया है कि हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करें, ठीक है? लेकिन बच्चों, आज रात को सोने से पहले क्या करना है? अगर नानी नाना या दादी दादा आपके पास नहीं है तो अपनी मम्मी पापा से कहिए कि आज हम तभी सोएंगे जब आप हमें एक कहानी सुनाएंगे। और यकीन मानिए, ये आज की रात जो आप शुरुआत करेंगे वो धीरे धीरे धीरे धीरे एक बहुत खूबसूरत आदत में बदल जाएगी। तो बस अब चलते हैं, मातृका चले अब?
1: हाँ दीदी।
0: तो बच्चों, आप अनुमति दीजिए हमें बाल सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। आप सभी को मनीषा का
1: और मातृका का
0: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ ही मैं आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: बाल सभा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। टेक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे साइबर अपराध, चुनौतियां और सुरक्षा के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, हम जानते हैं कि आज हमारे एक क्लिक पर सारी जानकारियां उपलब्ध हैं और ये छोटा सा जो बॉक्स है ना, जिसे हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, वो आज हमारी ज़िंदगी बन चुका है। केवल मोबाइल फ़ोन ही नहीं, उसके अंदर जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेट की। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसके बिना हम अपने फ़ोन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को जकड़ कर रख लिया है। जी हाँ, कुछ भी काम हो हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और इस इंटरनेट ने जहाँ हमें सुविधाएँ दी हैं, तो वहीं हमारे सामने चुनौतियाँ भी खड़ी कर दी हैं। क्या है साइबर अपराध, चुनौतियां क्या हैं, सुरक्षा कैसे की जाए, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने शिवेंद्र कुंभकार जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और हम उनसे जानेंगे कि साइबर अपराध क्या है, चुनौतियां क्या है, सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में।
2: आपने मुझे मौका दिया अपने पक्ष रखने का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू
1: जी। सर, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और साइबर अपराध बहुत तरीके से देखते हैं। आज हम देखते हैं कि जो इंटरनेट है वो हमारी जिंदगी में इतना रच बस गया है कि हम उसके बिना कल्पना नहीं कर पाते हैं। क्या चुनौतियां आज आपके नजरिए से देखने मिल रही हैं?
2: देखिए, दोनों तरह से अपन देख सकते हैं। इंटरनेट का होना अपने लिए बहुत फायदेमंद चीज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट का हद से ज्यादा उपयोग कहीं ना कहीं अपनी आंखों को कमजोर कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट के लिए फोन या टैबलेट या कंप्यूटर्स चाहिए। इंटरनेट के लिए आपको कहीं ना कहीं एक जगह बैठ के या कहीं एक चीज पे फोकस करना पड़ता है। तो अगर हम प्रीवियस से अगर कंपेयर करें, बिफोर इंटरनेट आफ्टर इंटरनेट, तो पहली तो बॉडी की हेल्थ सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। पहले जानकारी लेने के लिए आप लाइब्रेरी जाते थे, रिसर्च करते थे, एक जगह बुक में पढ़ते थे या कहीं रिसर्च मटेरियल में पढ़ते थे। अब आज वो चीज़ आपके हाथ में तो अवेलेबल है, लेकिन उसके चक्कर में आप अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करें, कहीं जाते जाते आप फ़ोन चला रहे हैं, कोई सामने वाला गाड़ी चलाते हुए फोन चला रहा है, तो उसमें रिस्क तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
1: बिल्कुल, रिस्क बढ़ चुका है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही रिस्क की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो साइबर अपराध इस समय बहुत ज्यादा हो चुके हैं। बात करने की तो जो आज़ादी है वो हमें फोन ने दी है, अपराध कहाँ बन जाती है ये बातचीत?
2: देखिए, अपराध यहाँ बन जाती है जहाँ वो बातचीत जिसको आप जानते नहीं हो उसके साथ हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपका ही नंबर है, आपको पता है, मुझे पता है, अब मैं उस नंबर में एक दो डिजिट ऊपर नीचे कर दूं तो एक थर्ड पर्सन का नंबर आ गया।
1: बिल्कुल।
2: अब उससे मैं अगर आपसे जितना फेमिलियर हूं, मैं उस लहजे में बात करूं तो वो तो जानता नहीं है। यहां तक बात करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एग्जाम्पल तौर पे हम एक दूसरे से सबको बहुत पहले से जानते हैं, तो अगर कुछ समय आप रिप्लाई नहीं करेंगे हमारा, तो हम आक्रोश में आके आपको कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वही चीज जो तीसरे पर्सन को कह रहे हैं हम इग्नोरेंस में कि हमने नंबर ही गलत डाला है, तो वो अपराध की श्रेणी में चले जाता है, वो बुलिंग की श्रेणी में चले जाएगा, हैरेसमेंट की श्रेणी में चले जाएगा, जिस जो भी आपने कहा हो उस पर डिपेंड करता है वो किस श्रेणी में जाएगा। तो उस हिसाब से चीजें अवेलेबल बहुत ज्यादा हो चुकी हैं।
1: साइबर अपराध की अगर हम बात करें तो किन किन चीजों को हम साइबर अपराध की श्रेणी में ला सकते हैं?
2: सिंपल में हम बात करें, जो भी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के उससे हों, उनको आप साइबर अपराध में ले सकते हैं, भले ही वो फोन का सिंपल सा मैसेज हो, इंटरनेट पे वीडियो शेयर हो रहा हो, सोशल मीडिया एप्स, उनका उपयोग हो।
1: हैकिंग है, फिशिंग है, पहचान की चोरी है, इन सब के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: देखिए, हैकिंग को हम अगर आम भाषा में बताना चाहें तो हैकिंग है कि आपका डिवाइस बिना आपकी परमिशन के कोई उसको यूज कर रहा है, उसको हम हैकिंग में दे देते हैं। फिशिंग है, आप किसी ने चारा डाला, मछली फंसी तो फंसी, नहीं फंसी तो वो तो बहुत सारों को डाला, कोई ना एक ना एक तो मछली पकड़ में आ ही जाएगी। देखिए, आजकल AI के मामले में डीप फेक बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो पहचान की चोरी इस श्रेणी में जाएगा। लेकिन क्योंकि अपन खुद को सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा प्रेजेंट कर चुके हैं कि और आपने अपना कंसेंट दे चुका है, जैसे अभी बीच में एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा था, गिबली ट्रेंड, जिसमें सब लोग अपनी AI में फोटोज डाल के जिबली बना रहे थे, तो उस ट्रेंड के चक्कर में आपने आपकी खुद की जो पर्सनल फोटोज हैं वो आपने AI सर्वर पे अपलोड करी और उसको बोला कि तुम इसको इस्तेमाल करके हमारी AI इमेजेस बना के दो, तो कहीं ना कहीं तो ये आपको पता नहीं था कि वो AI की फोटो आप यूज कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता था वो स्टोर भी करेगा। आपने उसको पूरा एक्सेस दे दिया उसको जहां पे इस्तेमाल करना है, ट्रेनिंग डेटा में हो, टेस्टिंग डेटा में हो, किसी में भी, वो AI अब खुद के बेहतर सुधार के लिए या कहीं अपने डेटा में स्टोरेज तो है ही, उसमें वो रख के उसको कहीं ना कहीं यूज तो कर सकता है। और आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों की हम अगर बात करें तो डेटा चोरी एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जब आप आपके कंसेंट से ऐसी फोटोज देते हो, कुछ पर्सनल सीन्स भी होंगे जिनको आपने ट्रेंड में डालने के लिए किया होगा, तो वो सारी आपकी डिटेल्स विद फेस डेटा, बैकग्राउंड डेटा, कभी कभी तो अनजाने में ऐसी फोटोज भी अपलोड होती हैं जिसमें जियो लोकेशन टैग्ड हो, तो आपने बकायदा ये कि मैंने ये फोटो इस जगह इस समय इसके साथ ली, इस फोन से ली,
1: अच्छा
2: पूरा डेटा आपने AI को दे दिया।
1: अब वो जो चाहे तो इस्तेमाल करे, आपका तो उसने अभी बना के दे दिया AI वाला, लेकिन फिर वो उसका कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो परमिशन मांगी जाती है और हम देते हैं, फिर अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करें तो क्या वो भी साइबर अपराध में आएगा?
2: गलत इस्तेमाल किसी भी चीज का अपराध की श्रेणी में आएगा। अब अगर वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही है तो वो साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। बात यह है कि कोई कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, इवन गवर्नमेंट इसका दुरुपयोग नहीं करती, लेकिन उसके पास जो डेटा है उसको कोई और उठा के उसका दुरुपयोग करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: उसकी सुरक्षा करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल, तो ये वायरस और मेलवेयर फैलाना भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, ये कैसे काम करता है?
2: देखिए, वायरस और मेलवेयर जनरली फोन्स डिवाइसेस में रहेगा। वायरस और मेलवेयर अगर हम नॉर्मल बातचीत में बोलें तो अपने जिसमें नहीं आएगा। वायरस अलग अलग तरह के होते हैं, मेलवेयर भी अलग अलग तरह के होते हैं। हम अगर वायरस की इसमें ही बात करें तो आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर देना, उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक मान लेते हैं सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, आपको मेल आया, आपने लिंक पे क्लिक किया, वायरस डाउनलोड हो गया। उससे अब वो वायरस किस तरह का उस पर डिपेंड करता है, या तो वो आपके फोन को स्लो कर देगा, कहीं ना कहीं डेटा यूज करने लगेगा, डेटा माइनिंग करने लगेगा, या फिर मोस्टली देखा जाता है कि बिटकॉइन माइनिंग या क्रिप्टो माइनिंग में भी कहीं ना कहीं वो आपके फोन के रिसोर्सेज को यूज करने लगता है। वायरस मेलवेयर दोनों से हो सकता है, कहीं ना कहीं वो आपका डेटा चुरा के अपने पास लॉक कर लेगा। वो रैंसमवेयर में आ जाता है कि मतलब वायरस मेलवेयर का मिक्सचर ही रहेगा रैंसमवेयर, जिसमें वो आपका डेटा को इनक्रिप्ट ऐसा कर देगा कि आपको खुद का डेटा एक्सेस करने के लिए जिसने भी डाला है उसको पैसा देना पड़ेगा।
1: अच्छा,
2: और ऐसा केसेस गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी हुए हैं, प्राइवेट एजेंसी के साथ भी हुए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: जिसमें डिपेंड करता है आपका डेटा कैसा था, सेंसिटिव था कि नहीं था, या कितना आपके लिए जरूरी है, फिर उस हिसाब से वो रहता है।
1: साइबर स्टॉकिंग भी एक शब्द है, ये क्या होता है?
2: साइबर स्टॉकिंग मैं अब आपको समझाऊंगा, क्या आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो, आपका कोई क्लोज रिलेटिव है, उसको किसी एक थर्ड पर्सन के बारे में जानना है जो आपसे रिलेटेड है लेकिन उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो पहले उससे आपसे उनकी आईडी मांगेगा।
1: ठीक है,
2: फिर उस आईडी की पूरी जांच पड़ताल करेगा कि ये इसकी ये वाली आईडी थी, अब इससे इसकी दूसरी सोशल मीडिया लिंक ढूंढते हैं, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं पर्सनली अपनी चीजें ओपन नहीं करता हूँ इतनी डिटेल्स में सोशल मीडिया पे या किसी भी माध्यम में, लेकिन आजकल का ट्रेंड ही है कि हर बच्चा, इन्फ्लुएंसर की हम बात करें या हर एक जो भी एक ये आजकल चला रहा है सोशल मीडिया,
1: ब्रॉडकास्टर्स भी होते हैं, वो भी अपने आप को उसमें बहुत ज्यादा बताना पसंद करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, पब्लिक फिगर होते हैं, नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं।
2: उनकी स्टॉकिंग में हम इसलिए नहीं गएंगे जो कि वो खुद ही इतना ओपन कर लेते हैं कि वो तो जिसको जो देखना चाहे देखे। स्टॉकिंग वो होती है जो बंदा चाहे नहीं लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पड़े रहो, उसके पूरे निकालते रहो। जैसे हम गए कहीं घूमने, हमने डाल दिया, सामने वाले ने देख लिया, अब उसका वो जो भी इस्तेमाल करे, जिस भी सेंस में उसको लेना चाहे वो ले सकता है, लेकिन हमने तो हमारे क्लोज वालों को बताया ना। हमने सब लोग के लिए थोड़ी बताया, हमने तो सिर्फ क्लोज वालों के लिए, ताकि उनको अपडेट रहे कि हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। वो क्लोज वालों के लिए था लेकिन क्योंकि उसको थर्ड पर्सन देख रहा है इसलिए वो साइबर स्टॉकिंग में जाएगा।
1: तो ये मतलब कहना चाहिए कि आपके बिना अनुमति के आपके बारे में कोई जानकारी ना ले सके, फोन की भी ना ले सके, आपके डेटा की ना ले सके, ये सारी चीजें साइबर अपराध में आती। बात तो हो गई हमारी अपराध की, चुनौतियों की तो बात हो गई, कैसे बचा जाए?
2: अभी साइबर स्टॉकिंग की बात चल रही थी तो इसी के इसमें हम देंगे। जनरली जितने भी एप्स हैं, कोई सा भी सोशल मीडिया एप्स हो, उसमें एक यूजर के पास पूरे के पूरे राइट्स रहते हैं कि वो कौन सी चीज उसके किसको शेयर करना चाहे। बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेसी फंक्शंस ओपन रहते हैं। अब वो बाय डिफॉल्ट ओपन इसलिए रहते हैं ताकि जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज से अपनी जो बैकएंड की चीजें हैं, जो कि कंप्यूटर्स को चाहिए डेटा, अब वो डेटा कहाँ से लाएंगे? वो डेटा यूजर्स से ही आएगा। एक कह सकते हैं कहानी है या प्रोवर्ब है, अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट आप हो। तो आपको चीजें तो सुविधाएं तो फ्री में दे रहे हैं या चीपेस्ट रेट में दे रहे हैं, पर प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट तो आप
1: हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो उससे बचने के लिए आप प्राइवेसी फंक्शंस जितने भी हैं उनमें अपनी थोड़ी जागरूक बनने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। एक मेरे हिसाब से एक ग्रेजुएट बंदा या एक 12th pass 10th pass जो भी आज की डेट में श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एजुकेशन आज की श्रेणी में इतनी स्ट्रांग हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी कि सब कुछ अब बताते हैं ओपनली। हमारे टाइम पे तो नहीं था, आपके टाइम पे भी आई एम श्योर नहीं होगा, लेकिन आजकल 7th 8th के बच्चों को एक अच्छी कोडिंग लैंग्वेज सिखाई जा रही है, एजुकेशन करिकुलम में है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं। हमारे टाइम पे वो नहीं था, तो एक आम उसको देख सकता है, लेकिन आज 5 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल डिवाइस है, उसका भी अपना एक आईडी है, तो उसके लिए तो वो सारी चीजें ओपन है। भले ही पेरेंटल कंट्रोल से हम कहीं ना कहीं ब्लॉक लगा लें, लेकिन उसके लिए वो सारी चीजें ओपन है और वो इतना सोचेगा भी नहीं कि मैं प्राइवेसी के बारे में इतना ध्यान दूं। लेकिन जब तक वो उस चीज को लॉक करने की एज में आएगा तब तक वो अपने बारे में बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज कर चुका होगा, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है आगे की उसमें बात करें।
1: एंटीवायरस उपयोग किया जा सकता है
2: इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस, एंटीवायरस मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ, तो इन टर्म्स ऑफ इसमें एंटीवायरस डालना इज मच रिस्कियर। वो कहते जरूर हैं कि जहर का तोड़ जहर होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बाय डिफॉल्ट जो आते हैं और आजकल तो वही इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अपन को डालने की जरूरत नहीं है। मैं विंडोज की बात करूंगा, विंडोज ओएस की सबसे ज्यादा आज की डेट में यूज होने वाला ओएस है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट भी हम बात करें कॉमन सेंस में हो चुका है। उसके अंदर एक है विंडोज डिफेंडर, वो डिफेंडर सबसे अच्छा एंटीवायरस को ब्लॉक कर सकता है, बहुत सारी फायरवॉल सारी सिक्योरिटीज रखता है, लेकिन अगर आप आपके डिवाइस में एंटीवायरस डालते हो तो वो उसी को ब्लॉक कर देता है।
1: अच्छा।
2: तो आपने जो मेन अपना बैकबोन थी, बैकअप था, जब उसी को बंद खत्म कर दिया तो फिर ये एंटीवायरस कैसे बचा पाएगा।
1: तो मतलब कहना चाहिए सतर्कता जरूरी है,
2: नॉलेज रखना इस फील्ड में ज्यादा जरूरी है कि कौन सा एंटीवायरस कंपनी या सॉफ्टवेयर आपका क्या डेटा एक्सेस करता है।
1: तो ये तो बात हो गई एक जानकार वाले व्यक्तियों के लिए, एक जो एक आम नागरिक है जो एक आम फोन इस्तेमाल करता है 15-20 हजार का करता है, और वो जो कंपनियां जब इन्हें बेचती है तो बहुत सारी चीजें बताती है कि दमदार पिक्चर है, दमदार ये है और ऐसा है वैसा, ऐसे लोग साइबर की घातक अपराध से कैसे बच सकते, उनके लिए बिल्कुल एक सरल शब्दों में बात करेंगे।
2: सरल शब्दों में उन लोगों के लिए कि एक लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लर्न तो करना पड़ेगा, बेसिक रखिए, ज्यादा डिटेल में भले ही ना जाइए,
1: बहुत सारी चीजों को डाउनलोड मत करिए अनजान, मतलब
2: अगर आपको कहीं शक हो रहा है तो अपने किसी बच्चे से पूछ लीजिए, आसपास कोई थोड़ा बहुत जानकार हो उससे जानकारी ले लीजिए। मैं ही नहीं कह रहा हूँ आप सामने वाले की 100% बात मानो, बस थोड़ी जानकारी ले लो फिर अपने हिसाब से एक्ट करो।
1: ठीक है,
2: अगर आपको लगता है कि ठीक थी जानकारी तो उस हिसाब से एक्ट करो, नहीं थी तो अपने जो भी आपको लग रहा है उस हिसाब से एक्ट करो, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, एक कैलकुलेटर ऐप रहता है, आपके हिसाब से क्या परमिशन लगनी चाहिए कैलकुलेटर को?
1: कुछ नहीं, बस
2: नॉर्मली रहना चाहिए, कैश स्टोरेज। लेकिन अगर एक कैलकुलेटर ऐप आपकी फोन परमिशन, स्टोरेज परमिशन, मैसेज परमिशन, लोकेशन परमिशन मांग रहा है और आप उसको यस यस यस यस करे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका कंसेंट दे रहे हो कि हाँ भैया मैं ओपन हूँ, आओ कर लो हैक या आओ ले लो मेरा पूरा डेटा।
1: ठीक है,
2: तो कहीं ना कहीं देखना तो अपन को पड़ेगा कि ये वाली ऐप है इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
1: ठीक,
2: कुछ कुछ ऐप्स ऐसी रहती हैं जो मांगती हैं, जिनको मैंडेटरी रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो एक उनके पास डेटा होना जरूरी है कि ये सही आईडी थी कि नहीं थी, ये सही एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम मेल की बात करते हैं तो अगर आपने नोटिस किया हो, आपने कहीं थर्ड कंप्यूटर में आप ही ने लॉग इन किया तो वो मेल आपको आएगा कि आपका ये वाली लोकेशन से हुआ, चाहे आप ही थे कि नहीं थे,
1: आप ही थे कि नहीं थे।
2: अब अगर आपने उसको चेक कर लिया और आपको पता है आप नहीं थे, तो आप तुरंत वहां पे लॉग कर सकते हो कि नहीं है मैं नहीं हूँ, इसको अपन हटा देते हैं।
1: जी बिल्कुल,
2: आप थे तो कोई बात ही नहीं,
1: बात ही नहीं। लेकिन ये अवेयरनेस भी होना चाहिए,
2: ये जानकारी अब आपको पढ़ना आना चाहिए कि ये मेरे को मिला है तो इस समय क्या इस्तेमाल कर सकते।
1: तो मतलब हमारे जितने भी फोन धारक हैं वो अगर कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं और वो अगर कोई जानकारी मांगता है तो बहुत ध्यान से पहले उसे पढ़ें, फिर उसको यस कहें और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा इस समय एक शब्द का प्रचलन और चल रहा है, क्योंकि नई चीजें जिंदगी में आई हैं तो नए नए शब्दावली भी आई है, वो है एक डिजिटल अरेस्ट।
2: जी,
1: ये क्या चीज है, इसे किस तरह से प्रहार होता है और किस तरह से बचना चाहिए?
2: डिजिटल अरेस्ट इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी बात करें कुछ नहीं होता,
1: कुछ नहीं होता है,
2: लेकिन अब लोगों को डर रहता है। डिजिटल अरेस्ट के अंदर होता यह है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया, ऑनलाइन का जमाना सभी करते हैं, उसी का बेस माध्यम जो हम ज़्यादातर केसेस जो डिजिटल रिस्ट में देखे गए अभी तक उसमें बता रहे हैं, तो उसमें बेस ये होता है कि आपने एक्स जगह से आपने ऑर्डर किया, आपका ऑर्डर आया, इसके अंदर कुछ भी एक अवैध पदार्थ पाया गया है, तो इसके अंदर आप कस्टडी में हो, आप वीडियो कॉल करके आपको बताया जाएगा बाकायदा पूरी ड्रेस में कि ये वाला कोट है, ये है, वो है, और उसमें कह देते हैं कि आपके कंप्यूटर डिवाइस या फोन को वीडियो कॉल फुल टाइम चालू रखो, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते,
1: मतलब वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पे नियंत्रण किया जाता है कुल मिला के। तो ये तो कुछ भी बात नहीं हुई, मनोवैज्ञानिक रूप से एक दबाव हो गया,
2: मेंटल प्रेशर इतना डाल दिया जाता है, और कहीं ना कहीं वो चीज आपने ऑर्डर करी ही होती है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती है,
1: तो
2: उसके चक्कर में
1: ऐसे में क्या करना चाहिए?
2: सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है मेरे हिसाब से ऐसे में, तो अगर फोन डिवाइस है तो एयरप्लेन मोड, कंप्यूटर है तो मॉडम बन।
1: अच्छा, ऐसे में पुलिस की कितनी सहायता लेनी चाहिए, क्या सच में बताना चाहिए? कई लोग बता नहीं पाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण की बात करूं, अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में ये बात भी आई थी कि अचानक से आपके पास एक वीडियो कॉल आता है, खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स हो गए या यंगस्टर्स होते थे, तो उनके साथ आया, फिर उन्होंने अश्लील वीडियो दिखाया वहां से, तुरंत वो हो गया कि नहीं, अब इसमें आप आ गए हैं, आप पैसे दीजिए या आप ये करिए तो हम आपको, नहीं तो वीडियो लीक कर देंगे। ये जो चीजें हुई हैं, ये क्या है, इससे कैसे बचें हमारे श्रोता?
2: जब आपने किया ही नहीं है तो वीडियो वायरल होकर क्या ही होगा?
1: पुलिस की सहायता लेना चाहिए,
2: जरूर लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस करते इसलिए नहीं है जो कि खुद डर जाते हैं कि पुलिस हम पे दबाव डालेगी कि तुमने एक्चुअल में किया, तुरंत पुलिस की सहायता ली जाए, FIR की जाए, नजदीकी जो भी साइबर कार्यालय है वहाँ।
1: सबसे पहले तो अपना डिवाइस बंद कर दिया जाए कुल मिला के।
2: नहीं, डिवाइस बंद नहीं करना, जो सामने वाले से वीडियो आए पहले तो उसको ब्लॉक कर दो। अगर उसके पास आपका कुछ डेटा है तो जो भी आपके क्लोज में लोग थे या आपका फ्रेंड सर्कल है उनको सूचित कर दो कि भैया मेरे साथ ये चीज हो रही है, अगर आपके पास कोई पैसे लेने के लिए आता है तो मत देना, ताकि आप खुद को भी सेफ साइड कर लो और सामने वाले को भी सेफ साइड कर लो। और मेरा मानना तो ये है, जो दूसरा साइड है जिसके साथ नहीं हुआ है लेकिन वो क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में है, तो भैया अगर आप इतने अच्छे फ्रेंड सर्कल में हो या क्लोज में हो तो उनके जिसका भी जो भी एरर आ रहा है, जैसे मान ले बहुत सारे वीडियो कॉल्स में देखा जाता है कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में पैसे सेंड कर दो,
1: जी जी जी,
2: या मेरे को यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ पे पैसे नहीं लाया, मेरे को पैसे सेंड कर दो
1: जी।
2: तो जो उनका रिलेटिव हो, जैसे मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी को फोन लगा के बोल दो आंटी तबीयत खराब है कि नहीं है, मेरे पास ये फोन आया था इसलिए मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, अगर है जरूरत है तो आप जरूर सेंड करो। लेकिन जब आंटी ही मना कर दे कि नहीं बेटा मैं तो सस्त हूँ, घर पे हूँ, आ जाओ मिल लो, बहुत दिनों से बात नहीं हुई,
1: तो फिर बिल्कुल तुरंत उस चीज को चेक करें, और फिर उसके बाद पहले उस बात पे पूरी तरीके से भरोसा करें, उसकी तहकीकात करें, फिर उसके बाद काम करें। क्या कानूनी जो बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या कुछ इसके लिए बदलाव भी हुए हैं, कुछ नियम कानून बने हैं भारतीय?
2: कानून तो बहुत सारे बने हैं, कॉमन पर्सपेक्टिव से देखें तो उन कानून का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ बैक एंड सपोर्ट नहीं होगा तो फिर आप जो गलत पक्ष है उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दोगे कि हम तो कुछ भी करें, हम पे कोई निगरानी नहीं होगी, हम पे कोई एक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग अब ओपन हो चुके हैं कि हमारे साथ ये चीज हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में फिर भी हम देखा जाए या एक इमोशनल मेंटल प्रेशर के उसमें देखा जाए, बहुत सारे लोग नहीं बताते अभी भी, लेकिन मैक्सिमम चीजें मैं कहूंगा 20-25% चीजें ओपन हो चुकी हैं। अब वो इतनी अच्छी ओपन हो चुकी हैं कि टाइम के साथ धीरे धीरे बाकी चीजें भी ओपन होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पे अब कंट्रोल आया है।
1: ओपन वाईफाई हमने आजकल देखा है कि रेलवे स्टेशन पे हो गया है, सार्वजनिक क्षेत्र
2: पे हो गया है,
1: सब जगह आजकल मिलने लगा है, तो क्या ऐसी जगह से कई लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलिए हमें
2: नेट मिल गया,
1: फ्री नेट मिल रहा है तो उसका उपयोग कर लिया जाए। अगर आप ऐसी जगह पर नेट एक्सेस करते हैं तो किन चीजों की सावधानी बहुत जरूरी है?
2: मेरा तो ये सुझाव रहेगा ऐसी जगह पे नेट का उपयोग ना ही करो।
1: ठीक है,
2: अगर आपके पास मान लेते हैं डिवाइस में नेट खत्म हो गया, अपन को ऑनलाइन किसी चीज की जरूरत है, भैया रिचार्ज करा लो। डेटा सिक्योरिटी बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
2: ये नहीं कह रहा हूँ हर नेटवर्क में वो रहता है कि आपका डेटा हैक हो जाएगा, लेकिन ओपन नेटवर्क में अगर आप चाहो तो कोई भी एक बंदा आपके डिवाइस को चेक कर सकता है कि वो ओपन डिवाइस से कनेक्टेड है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इन अ सेंस एक व्हाइट हैट और एक रेड हैट हैकर्स होते हैं। मैंने चूंकि पूरा कोर्स किया है इस फील्ड में तो मैं बता सकता हूँ, जो हैकिंग फील्ड होती है, हमने एक एक्सपेरिमेंट सर ने कराया था हमारे, उनने अपना वाईफाई ओपन करवा दिया था, और क्योंकि हमारे पूरे बैच में बहुत सारे लोग थे तो कुछ लोगों ने कनेक्ट किया, उनने सबसे सिंपल सा एक चीज बोली, उनने ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि ये मेरा वाईफाई नेटवर्क है, आप इसको यूज करो. उनने बस नॉर्मल सा कमांड दिया था कि आप आपके क्लोज बंदे को, जो भी आपके क्लास में ही बैठा उसी बंदे को एक पर्टिकुलर ये वाला मैसेज करो. वो मैसेज भी बहुत सिंपल था कि आज मैं इस क्लास में आया हूँ, हमने कल ये सीखा था, नॉर्मल सी समरी थी. जिन लोगों ने उस वाईफाई से कनेक्ट किया था उन लोगों के मैसेज पहुंचे ही नहीं, वो बीच में इंटरप्ट हो गए और उनके पास तीसरा मैसेज पहुंचा जो सिंपल सा एक स्टेटमेंट था, ये गलत है, मुझे नहीं पता, मैं एब्सेंट था. सिर्फ मल सा इतना, मुझे फंसाया जा रहा है, बस इतनी सी तीन चार लाइनें थी उसमें. तो जो दूसरा वाला था, ये तो मैंने किया नहीं, ये कैसे हुआ, ये सिंपल सा उनने हमें एक बेसिक उनने रन डाउन दिया था कि ये भी हो सकता है अगर आप मेरे ओपन नेटवर्क से कनेक्ट करो. अब क्योंकि मैं हूँ, मैं मिसयूज नहीं करूंगा, लेकिन सामने वाला क्या करेगा इसका आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते.
1: बिल्कुल, एआई से भी अभी बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, इससे किस तरह से बचें और किस तरह से जो हमारे जो श्रोता हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखें.
2: मैम, एआई का सबसे बड़ा अभी जो सबसे वो चल रहा है, एक तो एआई वॉइस क्लोनिंग, जिसमें आपको परिजन की आवाज में फोन किया जाता है कि हमें एक्स वाई जेड की जरूरत है, कम से कम हेल्प कर दो, कुछ भी कर दो. दूसरा है डीप फेक. डीप फेक में आपको वीडियो कॉल आता है सामने वाले की शक्ल से, जो भी आपका परिजन है उसी की शक्ल आपको वीडियो कॉल में दिखेगी और उन्हीं का आपको वॉइस भी मिलेगी डीप फेक के अंदर. वो आपसे हेल्प मांगते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं बिना चीजें सोच के हम उनकी हेल्प भी कर देते हैं. वही बात है कि क्रॉस चेक करना यहाँ पे भी जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर हम आपको वीडियो कॉल पे या फोन के माध्यम से कोई ऐसी चीजें मांगता है तो कहीं ना कहीं आज की दुनिया में आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत तो बढ़ चुकी है. इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, अगर हम किसी भी साइबर चीज से बचना चाहें तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, या फिर ओटीपी ना शेयर करना हो गया, अननोन लिंक्स पे क्लिक करना ना हो गया, सिक्योर पासवर्ड होना शुरू हो गया. लेकिन एआई से कैसे बचें, तो सबसे बेस्ट इज टू स्टेप वेरिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्रॉस चेकिंग, इन टर्म्स ऑफ नॉट ओटीपी या मेल यहाँ पे भी आएगा वहाँ पे भी आएगा, वो तो अपनी जगह ठीक ही है, लेकिन एआई खुद एक मशीन है और जो आपके पास ओटीपी भेज रहा है वो भी एक मशीन है. वो कहते हैं कि एआई में जो आप नंबर डालोगे वो रैंडम से आएंगे, लेकिन एआई एक मशीन है. बीच में एक दो हफ्ते पहले एक रिसर्च हुई है
1: जी,
2: रिसेंटली रिसर्च है, उसमें ये साबित किया उसने एक सिंपल से कोड से कि एआई जो नंबर जनरेट करता है ये रैंडम नहीं होते. कोई भी इसको रिवर्स इंजीनियर करके एक्चुअल ओटीपी जो आपको गई है वो भी निकाल सकता है. और वायरस और मेलवेयर के चक्कर में जो कि आपके फोन के अंदर जो भी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं वो तो उसके पास पहुंच ही रहे हैं, तो उसको वो रिवर्स इंजीनियर करने की भी जरूरत नहीं है. आपको बस वो उस लिंक फोटो पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक किया, वायरस आ गया.
1: जो साइबर अपराध करते हैं और जो लोग इस तरह से दिमाग लगाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं?
2: भैया कम कर दो, सरकार सख्त हो चुकी है.
1: अच्छा.
2: पहले भले ही फ्री रेन थी, अब वो फ्री रेन नहीं बची है
1: जी.
2: अब हर सरकार, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल भी हम बात करें तो हर सरकार बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है और बहुत जल्द जल्द एक्शन ले रही है.
1: तो आप भले कितनी ऊंची उड़ान उड़े लें, आपके पर
2: कभी ना कभी तो फंसोगे. डिजिटल फुटप्रिंट अपना हर समय छूट जाता है, भले ही वो हैकर का हो, आपका हो, मेरा हो, डिजिटल फुटप्रिंट हर जगह है.
1: बिल्कुल.
2: अब उस डिजिटल फुटप्रिंट को यूज सामने वाला कैसे करेगा
1: जी?
2: पॉजिटिव में करेगा तो वो उसकी बात अलग है, नेगेटिव में करेगा तो उसकी बात अलग है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
2: लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट वही है कि एक चोरी के सीन में कुछ ना कुछ सबूत मिलता है. इन टर्म्स ऑफ डिजिटल, हम क्राइम की बात करें, साइबर की बात करें, तो डिजिटल फुटप्रिंट आपका कहीं ना कहीं मिल ही जाता है.
1: तो कुल मिलाकर ये कहने की बात है कि जो हमारे जो श्रोता है वो इस बात का ध्यान रखें कि जितने अच्छे तरीके से आप अपने फोन का उपयोग करते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं, उतनी ही सतर्कता, उतनी ही जागरूकता भी जरूरी है. वास्तविक बने रहिए. कुछ भी ऐसा लगता तो पहले क्रॉस चेक करें. ज्यादा फेमस होने के चक्कर में अपनी चीजों को डिस्क्लोज ना करें, सेफली रखें, अपने पासवर्ड अच्छे से रखें और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने और अपनों के साथ रहें.
2: मैम, मैं कहना चाहूंगा जितने भी श्रोता हमको सुन रहे हैं, जो भी हैं, कभी भी अपनी ओटीपी या पर्सनल डिटेल, कार्ड का हो गया, सीवीवी हो गया, या कोई भी थर्ड पर्सन आपसे ओटीपी मांगे तो उसको ओटीपी कभी ना दीजिए. सबसे बेस्ट और सिक्योर मेथड अगर रखना है तो वो है ओटीपी का. आप दो ही मत, आपका जो रिस्क है हैक होने का या डेटा जाने का वो बहुत कम हो जाता है. अगर आपसे कोई मांगता है, वैसे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, भले ही वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, आपसे ओटीपी मांगेगा ही नहीं. सबने अपने अपने डिस्क्लेमर डाल के रखें कि हमारी ओर से ओटीपी नहीं मांगा जाएगा. लेकिन अगर कोई बाय चांस मांगता भी है तो पहले तो आप उससे उसकी आईडी वगैरह ले लीजिए, फिर भी ओटीपी ना दीजिए, आईडी की फोटो लेके पुलिस में कंप्लेंट कर दो, लेकिन ओटीपी ना दो
1: जी।
2: सबसे बेस्ट सिनेरियो ये
1: नो मतलब नो। बेहद सार्थक और विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मुझे मौका दिया अपनी पक्ष रखने का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
1: ये रही हमारी आज की जानकारी टेक गुरु में कि किस तरह साइबर अपराध हैं, चुनौतियां हैं और उसमें कैसे सुरक्षा हो सकती है। परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुन्नानी का, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैखवार। तो आज का कार्यक्रम बस यहीं तक, और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 MHz पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को। कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, कार्यक्रम के पिछली कुछ कड़ियों से हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के इतिहास की उन घटनाओं और उन महत्वपूर्ण मोड़ों की, जिसके कारण हमारे देश की सशस्त्र सेनाएं आज के इस प्रतिष्ठित मुकाम पर पहुंची हैं। श्रोताओं, ऐसा ही एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है सन 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। जैसा कि हमने कार्यक्रम की पिछली कड़ी में इसका जिक्र भी किया था कि इस युद्ध के होने के क्या कारण थे और ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण भारत ने इस युद्ध में ऐसी निर्णायक भूमिका निभाई, जिसके कारण एक नए देश यानी बांग्लादेश का जन्म हुआ। चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि इस युद्ध की विजय में हमारी सेना के तीनों अंगों ने अपने शौर्य और पराक्रम का जौहर किस तरह दिखाया कि मात्र 14 दिनों के भीतर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। हमारी इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए इससे जुड़े हर तथ्य को लेकर हमारे बीच एक बार फिर उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
3: जय हिंद श्रोताओं। 71 का जो युद्ध हुआ था
2: जी,
3: उसमें जो हमारे को विजय हासिल हुई थी, उसमें तीनों जो अंग हैं सेना के
2: जी,
3: आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनकी जो ज्वाइंटमैनशिप थी वो काफी यूनिक थी
2: जी।
3: वाजिब है कि इसी कारण से जो है हमें विजय भी प्राप्त हुई
2: जी,
3: है
2: बिल्कुल।
3: तो इन तीनों अंगों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था
2: जी।
3: इसको हम विस्तृत में जानने के लिए मैं चाहूंगा कि हम एक एक करके, जैसे आज हम इंडियन एयरफोर्स का जो रोल था उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे
2: जी। बिल्कुल, जैसा कि उसका तो आदर्श वाक्य है सर, कि नभा स्पर्शम दीप्तम, यानी गौरव के साथ आकाश को छूना।
3: बिल्कुल सच कहा आपने, बिल्कुल सही कहा
2: जी।
3: यही जो विक्ट्री है उन्होंने प्राप्त करी
2: जी, बिल्कुल गौरव के साथ।
3: बिल्कुल बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स जो है इट प्लेड ए मेजर रोल ड्यूरिंग 71 वॉर
2: जी।
3: उनका जो सपोर्ट था आर्मी को ग्राउंड वॉरफेयर में और नेवी को सी में, इट एक्चुअली टर्न टू बी ए विनिंग फैक्टर फॉर दिस वॉर। तो 71 में अगर हम देखें जो इंडियन एयरफोर्स थी उसका एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन हो चुका था
2: जी।
3: और वो एक काफी फॉर्मेडेबल फोर्स बन चुकी थी, जिसमें कि मतलब आपको बताना चाहूंगा कि वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एयरफोर्स हो चुकी थी। यानी कि यूएसए, यूएसएसआर, चाइना और फ्रांस के बाद जो है
2: भारत का नंबर
3: भारत
2: था।
3: की एयरफोर्स का नंबर आता था
2: जी।
3: एंड इंडियन फोर्स हैड अराउंड 39 स्क्वाड्रन्स एट दैट टाइम, जिसमें से कि 5 बॉम्बर स्क्वाड्रन्स थे और इसमें से जो 39 में 15 जो स्क्वाड्रन्स थे उनके पास सुपरसोनिक फाइटर प्लेन्स के थे।
2: अच्छा जी।
3: क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज चलने वाले जो होते हैं
2: जी।
3: और हमारे को जो देश में जो प्रोटेक्शन के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, जिसमें कि हमें दुश्मन के आने वाले कोई जहाज है या मिसाइल है उसके बारे में पता चल जाता है
2: जी।
3: और ये हमारे देश की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एयरफील्ड्स के ऊपर इम्पोर्टेंट वाइटल इंस्टॉलेशंस जो होते हैं वहाँ लगे होते हैं सब जगह पे। तो इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट था उस समय।
2: ये भी सर इंडियन एयरफोर्स का ही हिस्सा
3: जी, इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा होता है। तो इसमें जो रेडार कंट्रोल जो गन्स थी और सरफेस टू एयर मिसाइल्स वगैरह थी वो इंडक्ट हो चुकी थी, तो उस कारण से सिस्टम हमारा काफी मजबूत था। और इसके अलावा एयरफोर्स में जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, हैप्टर्स थे, मैरिटाइम रेकी स्क्वाड्रन थी उनके इन्वेंट्री में, तो इन सब के कारण जो है जो इंडियन एयरफोर्स थी वो एक बहुत ही इफेक्टिव आर्म बन चुकी थी,
2: सशक्त वायुसेना थी,
3: जी। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें उस समय पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 13 स्क्वाड्रन थी जिसमें से कि 12 उसने वेस्टर्न फ्रंट पे डिप्लॉय करी हुई थी और एक जो है यानी बांग्लादेश में स्क्वाड्रन थी। एंड कंपैरेटिवली जो इंडियन एयरफोर्स थी उसके बाद 28 स्क्वाड्रन थी जो वेस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉयड थी और 11 ईस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉयड थी। तो इंडियन एयरफोर्स हैड ए प्रॉपर डोमिनेंस ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। जब ये युद्ध शुरू होने वाला था तो इंडियन एयरफोर्स हैड वेरी वेरी क्लियर कट टास्क ग्राउंड पे जो फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एब्सोल्यूट एयर डोमिनेंस क्रिएट करना है। एंड उसके लिए जो है हमको अपने जितने ऑपरेशंस हैं काउंटर ऑपरेशंस हैं वो सब करने हैं, अब उनके जो एयर बेसिस हैं उनकी सुरक्षा प्रॉपर करनी है और नेवी को जो है सपोर्ट देना है बाय प्रोवाइडिंग मैरिटाइम सपोर्ट देना है उनको, और जो भी मतलब आर्मी के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट है जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह प्रोवाइड करने हैं, वो दीज टास्क वर क्रिस्टल क्लियर एंड दीज ऑब्जेक्टिव वर क्रिस्टल क्लियर टू एन एयरफोर्स, और इसके लिए काफी थॉरो प्लानिंग प्रिपरेशन हो चुका था। तो हुआ फिर वही कि जैसे हमने जिक्र किया था कि स्कर्मिशेस बढ़ती गई और नवंबर के बाद जो है टेंशन काफी बढ़ गया था दोनों कंट्रीज में, और 3 दिसंबर को वॉर का आगाज हुआ जो कि पाकिस्तान ने जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए थे हमारे वेस्टर्न फ्रंट में एयरफील्ड्स पे। तो उसके बाद जो है एयरफोर्स हमारी इंडियन एयरफोर्स कमेंस्ड ऑपरेशंस इमीडिएटली, और जैसे कि मैंने कहा था कि ये ऑपरेशंस उन्होंने बहुत ही थॉरली प्लान करे हुए थे और इनको जब कंडक्ट भी किया उन्होंने बहुत अच्छे मतलब इंटेंसिटी के साथ किया। आप ये समझिए कि जो इंडियन एयरफोर्स थी दे हैड अ प्रॉपर डोमिनेंस मतलब अबोव द पाकिस्तान एयरफोर्स, मतलब इतना डोमिनेंस था कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक तरह से डिफेंसिव मोड में डाल दिया था।
2: बात यही उठती है कि जब वो जानते थे कि हम इतनी सशक्त वायुसेना के साथ यहाँ हैं तो भी उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हम पर हमला करें, पहले हमला
3: करने वाली बात तो ऐसा है कि इनफैक्ट उनका ये सोच है, उनकी अपनी डॉक्ट्रिन थी कि हम पहले हमला करके जो है इनको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं।
2: हाँ, जी।
3: तो ये तो उनकी सोच थी, लेकिन जब उन्होंने किया उससे पहले ही सिंस इंडियन एयरफोर्स वाज रेडी तो जितने लाइक उस समय प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि जो एयरफील्ड जो थे आगे उसके अलावा जो डेप्थ में भी हमारे जो एयरफील्ड थे तो एयरक्राफ्ट वगैरह जो है वो पीछे मूव कर चुके थे।
2: अच्छा, यानी पहले से हमें आभास था कि अब हमला होने वाला है,
3: हमें मालूम था, इट वॉज वेरी वेल मतलब सब कुछ पता था कि ये आज हो गया कल होगा, मतलब होना तो है। एंड पाकिस्तान ने किया वो उनकी डॉक्ट्रिन के हिसाब से किया था,
2: वो हमेशा से उनकी पॉलिसी रही,
3: है। एंड हमारी पॉलिसी ये रही है कि हम जनरली कभी वी आर नेवर द फर्स्ट वन टू अटैक ऑन एनीवन, है ना। जैसा कि अब हम इस जिक्र कर रहे थे कि इस वॉर में दोनों फ्रंट पे लड़ाई हो रही थी, वेस्टर्न फ्रंट पे भी हो रही थी, ईस्टर्न फ्रंट पे भी हो रही थी। तो अगर हम जिक्र करें वेस्टर्न फ्रंट का तो वेस्टर्न फ्रंट में आईएफ के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा फ्रंटेज है, मतलब रन ऑफ कच्छ से शुरू होके लद्दाख तक
2: जी।
3: इतना बड़ा मतलब उनके पास फ्रंटेज था जिसमें कि वो सारे के सारे उन्होंने ऑपरेशंस कैरी आउट किए और इनकी एग्रेसिवनेस थी जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जिसके कारण जो है पाकिस्तान एयरफोर्स में इन्होंने अपना कंप्लीट डोमिनेंस बनाया था। अच्छा, इसके कारण क्या होता है, जब एयर में डोमिनेंस होता है तो ग्राउंड फोर्सेस होती है आर्मी होती है उनको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है,
2: एक आत्मविश्वास बढ़ता
3: है, दूसरों को पता होता है कि हम एटलीस्ट ऊपर से हम सेफ हैं। है ना, तो जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि हमारे सबसे बड़ा खतरा क्या होता है ग्राउंड पे, हम जब मूव करते हैं तो आर्टिलरी की जो फायरिंग आ रही होती है, एयरफोर्स की जो फायरिंग होती है, उसी से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है,
2: बचाव होता है,
3: उससे बचाव हो जाता है। तो आईएफ ने काफी अच्छे ऑपरेशन इसमें वेस्टर्न फ्रंट पे कैरी आउट किए थे। स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो ऑपरेशन थे उसमें उन्होंने कराची का की हमारी ऑयल इंस्टॉलेशन था उसमें अटैक किया था, रेड किया था। फिर रावलपिंडी में जो अटॉक की ऑयल रिफाइनरी थी उस पर अटैक किया था, मंगला डैम में पावर हाउस जो है डिस्ट्रॉय किया था, उस पर भी अटैक किया था, एंड इवन जो पाकिस्तान एयरफोर्स बेस था पेशावर में और भी काफी जो बेसिस थे वहां पे रेड्स करे थे। एंड एक इंट्रोडक्शन मिशन होते हैं जिसमें कि जैसे जो कॉन्वॉयज जा रहे हैं, व्हीकल्स कॉन्वॉयज होते हैं, ट्रेन जो मूव कर रही होती हैं विद द मिलिट्री स्टोर्स एंड ऑल, है ना, इम्पोर्टेंट ब्रिजेस जो होते हैं, तो IAF हैड मेजर सक्सेस इन दीज एस्पेक्ट्स। एंड इवन मतलब दे वर एबल टू अटैक कराची हार्बर एरिया एंड नेवल एस्टेब्लिशमेंट एंड मनोरा, तो काफी अच्छे मतलब ये जो ऑपरेशंस थे जिसके कारण जो है पूरे वेस्टर्न फ्रंट में IAF हैड ए डोमिनेंस, प्रॉपर डोमिनेंस ऑफ द एरिया। देन एक और एयरफोर्स का जो एक बहुत बड़ा टास्क होता है क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड कराना। क्लोज एयर सपोर्ट का मतलब होता है जैसे हम आम प्रोसेस जब जारी होती है, आर्मी जब जारी होती है, जब उनको जरूरत होती है उस समय जो है एयरफोर्स मदद करती है। क्या अब बहुत बड़ा फेमस और हम सबको मतलब मेरे ख्याल से पता है वो बैटल ऑफ लोंगे वाला है, जनरली जो है बॉर्डर मूवी के बाद तो बहुत ही फेमस हुई थी। तो लोंगे वाला की मैं आपका मैं जिक्र यहाँ करना चाहूंगा क्योंकि इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल IAF ऑपरेशन। लोंगेवाला जो है जैसलमेर सेक्टर में लोकेटेड है और ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट जो अप्रोच है पाकिस्तान से जैसलमेर की तरफ उसके ऊपर लोकेटेड है। तो इस वाइटल लोकेशन से जो है जैसलमेर का मतलब डिफेंस होता था। इसमें जो थी ये कंपनी डिफेंडेड लोकेलिटी थी जिसमें 23 पंजाब रेजिमेंट की कंपनी ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। कंपनी कमांडर फेमस उस समय मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे जो बाद में ब्रिगेडियर सब बने थे, महावीर चक्र अवार्ड मिला था जिन्हें। तो ये कंपनी डिफेंडेड लोकेलिटी के ऊपर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा भीषण अटैक किया जिसमें कि पूरी एक पाकिस्तान की ब्रिगेड थी, मतलब आप इससे अंदाजा लगे कि एक कंपनी और एक ब्रिगेड में 12 कंपनी, तो एक कंपनी के अगेंस्ट 1:12 के रेशो में और साथ में एक आर्मर्ड रेजिमेंट, तो कितना मतलब भारी अटैक आया। एंड कंपनी वॉज फाइटिंग वेरी ब्रेवली होल्डिंग द फोर्ट, ठीक है, उनको आगे नहीं जाने दे रही थी। लेकिन जब आपको एक अंदाजा तो होता है कि 1:12 के रेशो में जब हम लड़ रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि जब हम नहीं इसके आगे नहीं लड़ पाएंगे, तो उससे क्या है जैसलमेर के लिए अप्रोच ओपन हो जाएगी, जैसलमेर विल बी थ्रेटन्ड। सो फाइनली आर्मी गेव SOS कॉल टू एयरफोर्स कि भाई ये ऐसा चल रहा है। एंड ऑन 5th December नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है एयरफोर्स केम फॉर द क्लोज एयर सपोर्ट। एंड आप ये देखिए बाय मिड डे एयरफोर्स हैड ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड 15-16 टैंक्स ऑफ पाकिस्तान और उन्होंने काफी भारी मात्रा में जो है पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे जो अटैक कर रहे थे उनको जो है उनके ऊपर नुकसान पहुंचाया, जो उनकी व्हीकल्स थी उस पर नुकसान पहुंचाया, गन्स पे नुकसान पहुंचाया। एंड मतलब टू द एक्सटेंट कि ये जो अटैक था पीटर्ड ऑफ हो गया, मतलब जो है फेल हो गया, असफल हो गया, और बहुत मेजर अटैक था एक्चुअली देखा जाए तो। ये IAF हैड टू इट्स क्रेडिट ऑलमोस्ट उसके बाद जो 2 दिन लगातार इंडियन एयरफोर्स उनके ऊपर हमले करती रही, उन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट 37-38 टैंक्स जो है बर्बाद किए, नष्ट किए। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मेजर चीज होती है, मेजर जो है एक विक्ट्री होती है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्लोज एयर सपोर्ट्स। ऐसे ही वेस्टर्न फ्रंट पर उन्होंने जो है IAF ने पाकिस्तान के काफी गन पोजिशंस, जो उनके व्हीकल्स थे, ट्रेन्स थी जो कैरी कर रही थी, उनको नष्ट किया। एंड उन सेक्टर में कहूता लोकेशन है वहां पे पाकिस्तान का कंसंट्रेशन था जिसमें कि वो लोग अटैक का प्लान कर रहे थे अगले दिन पुंछ सेक्टर में। एयरफोर्स कैरिड आउट अ रेड ऑन दैट एंड दे डिस्ट्रॉयड द कंप्लीट पाकिस्तान आर्टी गन्स जो थी, एंड साथ ही साथ उन्होंने जो फोर्स थी अटैक करने के लिए आ रही थी उसको भी उन्होंने बहुत इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने वो अटैक कैंसिल कर दिया, नहीं कर पाए थे। तो ये क्या होता है, हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं क्लोज एयर सपोर्ट का, दिस इज हाउ द सिनर्जी एंड द कोऑर्डिनेशन जॉइंटमैनशिप कम्स अप, जिसके कारण जो है मतलब आपको विजय प्राप्त होती है।
4: यानी इतना अद्भुत समन्वय जो था वो सन 1971 के ही युद्ध में देखने को हमें मिला सबसे पहली बार।
3: नहीं, उससे पहले भी अगर हम को याद हो हमने 47-65 में भी किया था, ऑफकोर्स जो है हमेशा से जो है करती आ रही है, सपोर्ट करती आ रही है। आज हम थोड़ा उसको विस्तृत में जानकारी दे रहे हैं क्योंकि 71 में जो है एयरफोर्स वॉज वेरी फॉर्मिडेबल फोर्स, काफी
4: सशक्त भी हो गई थी ना,
3: सशक्त हो गई थी इसी कारण से ना। तो आज हम जो है उसका काफी जिक्र कर रहे हैं। तो सिमिलरली मतलब जो है IAF कैरिड आउट ऑपरेशन इन हाजीपीर पास था, कारगिल था, छम सेक्टर था, मतलब हर जगह पे उन्होंने जो है काफी नुकसान पहुंचाया। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे मेंटेन्ड टोटल डोमिनेंस। अच्छा, इसके अलावा भी जो है इंडियन एयरफोर्स है और भी बहुत सारे तरीके से जो है इस वॉर में, देखिए एक तो उनका अपना रोल था, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स था, वो एयरक्राफ्ट से जो है मतलब जो डोमिनेंस ले रहे थे कि पाकिस्तान के एयरफोर्स को नहीं आने दे रहे थे। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुस के स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स थे उसके ऊपर वो लोग जो है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और साथ ही साथ जो है आर्म फोर्सेस को, नेवी को भी मतलब सपोर्ट कर रहे थे। तो उसमें इवन जो है कैजुअल्टी इवैक्यूएशन जो काफी बड़ा घायलों को जो शिफ्ट करना, उसके साथ साथ जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट में जो है सामान पहुंचाने में जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं उसकी मदद से जो है जो ट्रूप्स का मूवमेंट है। एंड स्पेशली इस समय क्या हुआ था, क्योंकि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर दोनों जगह एक्टिव थे
4: जी,
3: तो हुआ है ऐसा कि जो है ईस्टर्न सेक्टर से ट्रूप्स को है वेस्टर्न सेक्टर में मूव किया है। ठीक है,
4: अच्छा।
3: एंड वो पॉसिबल यही हुआ हो पाया बिकॉज ऑफ द
4: एयरफोर्स। सर, अब मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी तक आपने पश्चिमी मोर्चे के बारे में बात की कि पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय वायुसेना ने अपना क्या योगदान दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि इसी दौरान हमने पूर्वी मोर्चे पर भी लड़ाई की है, तो यहाँ पर वायुसेना अपनी क्या भूमिका निभा रही थी।
3: सी, लड़ाई एक दिन शुरू हुई थी और IAF ने जैसे पश्चिम वेस्टर्न फ्रंट पे जो है उन्होंने रोल अदा किया, इन सिमिलर फैशन उनका रोल ईस्टर्न फ्रंट पे भी था। ईस्टर्न फ्रंट पे तो थर्ड को उन्होंने शुरू किया है एंड बिलीव मी फोर्थ को जो पाकिस्तान एयरफोर्स है जो बांग्लादेश में है उस समय के इस पाकिस्तान में बिल्कुल इनएफेक्टिव हो गई थी। मतलब इंडियन एयरफोर्स हैड अ टोटल डोमिनेंस ऑफ दैट एरिया बाय नेक्स्ट डे।
4: अच्छा,
3: दैट काइंड ऑफ ऑपरेशंस दे कैरिड आउट।
4: तो सर ये भी ये बताता है कि उनका बांग्लादेश पर यानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं था वहाँ की सरकार का, ना तो सैनिक के तौर पर या सैन्य तौर पर, ना आर्थिक तौर पर।
3: बिल्कुल सही कहा आपने
4: जी।
3: और उस समय तक मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था कि अब हमारे बस की बात नहीं है इसको अपने साथ बना के रखना
4: जी।
3: एक तो क्या होता है वो डिमोरलाइजिंग फैक्टर आ चुका होता है
4: जी।
3: जो लोग लगातार वहाँ पे एक्टिव है, काम कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो आर्म फोर्सेस रहे हो, दिस वाई फील की मतलब उनमें भी एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर तो आ ही गया होगा
4: जी,
3: है ना।
4: जिस तरह से सर अंग्रेजों को ये सन 42 या 40 से लग गया था कि अब देश छोड़ना पड़ेगा।
3: एग्जैक्टली, तो शायद वही बात थी। तो ईस्टर्न फ्रंट में अगर हम जिक्र करेंगे तो IAF कैरिड आउट सेम काइंड ऑफ ऑपरेशंस, उसमें उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट अगेन रोल प्ले किया था, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस कैरी आउट किए थे, क्लोज एयर सपोर्ट के किए थे। और यहाँ सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँ कि उस समय अगर आप बांग्लादेश की टेरेन देखते हैं तो उसमें काफी सारी रिवर्स एंड नाला काफी ज्यादा है,
4: वो पूरा डेल्टा इलाका ही है।
3: एग्जैक्टली, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हेल्प जो थी IAF ने दी, दैट वाज बाय कैरिंग आउट हेलीबॉर्न ऑपरेशंस एंड एयरबॉर्न ऑपरेशंस।
4: अच्छा,
3: हेलीबॉर्न ऑपरेशंस का जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो आर्मी है उसको हेलीकॉप्टर की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना होता है। अब ये सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन जब दुश्मन नीचे से फायर कर रहा है उसके इलाके से आप जा रहे हैं, देखिए एयरफोर्स वाज एबल टू मेंटेन एयर डोमिनेंस, तो वो पाक एयरफोर्स को तो नहीं आने दे रही थी, लेकिन नीचे आर्टिलरी की गन्स है, जो पाकिस्तान का सोल्जर है उसके पास भी एक राइफल भी है ना, तो
4: उनकी पहुंच में।

0: राइज किया. और अगर हम इक्विपमेंट देखें, आर्टिलरी गन्स जो है, एमिनेशन जो है, वानी इतना काफी भारी इक्विपमेंट होता है, उसको उन्होंने मतलब जो है मोबिलाइज किया था. और हेलीकॉप्टर्स भी उस समय मतलब ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स के पास बहुत ज्यादा थे. दे हैड मतलब सर्विसिबिलिटी वगैरह सब मिला के जो है उनके 10-12 हेलीकॉप्टर, 14 हेलीकॉप्टर्स होते थे. तो मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद, देखिए जब रिसोर्सेज कम है, हेलीकॉप्टर कम है, तो उनको उतनी शॉर्टेज ज्यादा करनी पड़ती थी,
1: चक्कर ज्यादा लगाने पड़ते.
0: तो आप ये देखिए हर एक चक्कर में उनको मतलब कितना ज्यादा एक्सपोजर है, तो उतना ज्यादा खतरा है. तो ये जो
1: बार बार उड़ान
0: जो पायलट्स थे उनकी हिम्मत देखिए आप,
1: बिल्कुल सर.
0: और वो कंटिन्यूअसली करते थे, मतलब जो है कंटिन्यूअसली रहता था, इट इज नॉट दैट कि रुक के ब्रेक कर रहे हैं. तो फर्स्ट जो मेजर एयरलिफ्ट किया था इन्होंने, 4-5 GR की कंपनी थी उसको मतलब जो है पूरी बटालियन का एक्चुअली लिफ्ट किया था, कोलारा से सेलेक्ट करके एक जगह है वहां गए थे. तो 12 घंटे में इन्होंने पूरी की पूरी जो है बटालियन को हेलीलिफ्ट किया था, ठीक है. और इसमें आप ये देखिए कि तकरीबन जो है 600 से ज्यादा ट्रुप्स थे, 12 टन से ज्यादा इक्विपमेंट था.
1: सर कितना, 12 घंटे?
0: 12 घंटे में इन्होंने किया था. और इसमें कन्फर्म 66 से 70 शॉर्टेज लगी थी. तो उतनी बार वो लगातार जो है
1: उड़ान
0: भर रहे हैं, जा रहे हैं, और उस समय दुश्मन भी फायर कर रहा है. इट्स अ डेयरिंग ऑपरेशंस जो है,
1: बहुत पराक्रम की बात है सर.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो सिमिलरली दे कैरिड आउट अदर ऑपरेशंस आल्सो, जिसमें कि उन्होंने अगेन इंडियन ट्रुप्स को जो है मेघना रिवर क्रॉस कराने में मदद करी थी. और जो बिगेस्ट हेली लिफ्ट का जो ऑपरेशंस कैरी आउट किया था, ब्राह्मण बारिया से नरसिंहगढ़ी की जगह है
1: जी.
0: तो इसमें उन्होंने तकरीबन जो है 1400 आर्म ट्रुप्स जो है, आर्म ट्रुप्स में क्या होता है कि पूरा जवान जो है पूरे इक्विपमेंट के साथ, वेपन के साथ, एमिनेशन के साथ होता है. तो उसको उतना वजन होता है, तो वॉल्यूम बढ़ता है
1: जी.
0: और उसको उनको जो है उन्होंने क्रॉस कराया था. इट वाज अ मेजर ऑपरेशन कैरिड आउट बाय देम. सिमिलरली एक और जो काफी जिसमें मदद मिली थी, दैट वाज अ पैरा ड्रॉप. जो पैरा बटालियंस होती हैं उसको यहाँ पे ड्रॉप कराया था. तो तंगेल का ऑपरेशन काफी फेमस है, जिसमें एक पैरा बटालियन ग्रुप को, पूरे ग्रुप को जो है तंगेल जो जगह है उसके नॉर्थ में इन्होंने ड्रॉप किया था, ठीक है. पुंगली ब्रिज होता है जो जमालपुर तंगेल रोड पे था, उसको कैप्चर करने का टास्क था. ये जो ऑपरेशन किया गया था जिसमें पूरे की पूरी जो है पैरा बटालियन जो है एयर ड्रॉप हुई थी, उसमें 48 एयरक्राफ्ट लगे थे. तो मतलब कितनी बड़ी फोर्स थी जिसमें पूरे का पूरा ट्रांसपोर्ट जो है हुआ था. एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन जिसमें कि 800 से ज्यादा ट्रुप्स जो हैं को ड्रॉप किया गया था विद आर्म्स, एमुनेशन एंड इवन लाइट व्हीकल्स, जो जीप होती है ना, वो भी ड्रॉप हुई थी.
1: क्या बात.
0: अब देखिए इसको जब प्लान किया जाता है, तो जैसे मैंने बताया ना कि नीचे से जब ग्राउंड फोर्सेस हैं उनसे डर होता है, उनके अटैक का डर होता है. जब आप स्पेशली क्या होता है, जब ड्रॉप हो रहा होता है पैरा ड्रॉप में, आदमी ऊपर से छलांग लगाता है, उससे वो सबसे वल्नरेबल होता है सोल्जर.
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि वो अपना वेपन तो फायर कर नहीं सकता,
1: कर सकता,
0: और उसको ये भी नहीं दिख रहा है कि मैं कहाँ लैंड कर रहा हूँ. उसको एक ये भी चिंता रहती है कहाँ लैंड करने वाला, तो उस समय ही एक्सपोज्ड कंप्लीटली. तो वो जो है एनिमी फायर के लिए उस समय वो रहता है. तो इसलिए ये जो होता है इसमें प्रॉपर एक सिस्टम होता है कि पाथफाइंडर एक ग्रुप जाता है, जो लोकेशन होती है उसको वो लोग मार्क करते हैं ताकि प्रॉपरली जो है लैंड कर सकें, उतर सकें, ड्रॉप कर सकें. तो ये ऑपरेशन में पहले पाथफाइंडर ग्रुप्स भी गए थे, और इवन दुश्मन को चकमा देने के लिए, उनको बुलावे में रखने के लिए एक और ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था.
1: अच्छा.
0: एक और जगह एयर ड्रॉप प्लान किया गया था जो कि वहां से करीब 20-21 किलोमीटर दूर था.
1: हाँ.
0: ताकि उनको ये ना पता चले कि कहाँ एक्चुअली ऑपरेशन हो रहा है.
1: दुश्मन कंफ्यूज
0: जी कंफ्यूज
1: डिटेल
0: में जो प्लान किया गया था ऑपरेशन था, और जो है उसकी सक्सेस में आप ये सोचिए कितना बड़ा मतलब आईएफ का हाथ था, जो है रोल था उन्होंने किया. एंड दैट्स व्हाई इट बिकेम वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशंस. इसी तरह से और भी मतलब जो अगर हम देखें, आईएफ ने जो है काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कैरी आउट किए थे ईस्टर्न फ्रंट पे. उन्होंने स्पेशल मिशंस किए थे, रेड्स की थी. उसमें सबसे ज्यादा फेमस है ढाका यूनिवर्सिटी पे, जो उनको पता चला था कि पाकिस्तानी ट्रुप्स हैं वहां पे. तो उसके कारण उन्होंने उसमें रेड किया था एंड स्पेसिफिक टारगेट्स को, स्पेसिफिक लोकेशन को उन्होंने जो है रेड में डिस्ट्रॉय किया था. हाँ. इसी तरह से 14

0: जो ढाका में जो गवर्नमेंट हाउस था, जो गवर्नर हाउस था
1: जी, जी,
0: उसका रेट बहुत फेमस है
1: जी, बिल्कुल।
0: उसमें जो गवर्नर साहब थे, जो सिविलियंस का, मिलिट्री ऑफिसर्स का, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जो है उनके कॉन्फ्रेंस होने वाली
1: होने
0: थी,
1: वाली थी
0: तो ये जानकारी मिली थी इंडियन आर्म फोर्सेस को। तो उसको डिस्ट्रॉय करने का जो है इंडियन एयर फोर्स को टास्क दिया गया था। एंड जब वो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई उसके 30 मिनट के बाद जो है एग्जैक्टली पिन पॉइंट जो है इन एयर फोर्स ने उसके ऊपर अटैक किया था। एंड उन्होंने उसको इतना ज्यादा बर्बाद किया था कि जो गवर्नर साहब थे डॉक्टर मलिक, उनके कैबिनेट ने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया था। दिस इज हाउ दे प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट, है ना
1: जी। तो श्रोताओ, आज हमने जाना कि भारतीय सेना ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारी थल सेना को आगे बढ़ने में किस प्रकार सहायता दी। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी और भामासर से हम इस युद्ध में सेना के पराक्रम को आगे भी जानेंगे। कीजिए इंतजार कार्यक्रम के अगले एपिसोड का, और कार्यक्रम का नाम है हमारी सेना हमारा गर्व। सर, इस कार्यक्रम में आप आज भी शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू पूर्वा जी, एंड जय हिंद श्रोताओं।
1: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का। मैं थी आपके साथ आपके अपने पूर्वा खले। तो दीजिए इजाजत अब इस कार्यक्रम से। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक भारत के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारे देश की सरहदों की अटूट ढाल यानी हमारी भारतीय थल सेना के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: शिवरात्रि को देखते हुए देश भर में सुरक्षा के
2: दादू, दादू।
3: हाँ बेटा।
2: दादू इधर आइए ना बालकनी में।
3: अरे बेटा मैं आराम कर रहा हूँ।
2: दादू प्लीज आइए ना।
3: ओफो, चलो चलो आता हूँ।
2: इधर आइए ना दादू।
4: बताओ बताओ बेटा।
2: ये देखिए ना दादू।
4: हाँ।
2: रोज सुबह सुबह मैदान में जो ये लोग दौड़ते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते, इतनी मेहनत करते, दादू ये सब सेना के लोग हैं।
4: हमारी प्यारी बिटिया ये देख रही थी मतलब। हाँ बेटा, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। भारतीय सेना के जवान।
2: दादू ये भारतीय थल सेना क्या? क्या ये सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए हजारों लोगों का एक समूह है?
4: नहीं बिटिया, भारतीय थल सेना सिर्फ एक फोर्स नहीं है, इसे हजारों लोगों का समूह भी नहीं कहेंगे। ये तो हमारे देश की आन बान और शान है। ये हर खतरे के सामने खड़ी वो दीवार है जो देश को सुरक्षित रखती है। ये वो भरोसा है जिसकी वजह से हर भारतीय निडर होकर जीता है बिटिया।
2: मतलब दादाजी, भारतीय थल सेना हमें सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया गया एक योद्धाओं का समूह है।
4: बिल्कुल बिटिया, और सेना सिर्फ सीमाओं को ही नहीं बचाती, वो तो पूरे देश का विश्वास भी बचाती है। ये विश्वास कि देश सुरक्षित हाथों में है।
2: दादू ये सेना क्यों बनी? पहले लोग खुद की रक्षा नहीं कर सकते थे क्या?
4: देखो बिटिया, एक समय था जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर जगह अलग अलग राजा, अलग अलग सेना और लगातार संघर्ष हुआ करते थे। ऐसे में छोटे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, यहाँ तक कि देश की आम जन की रक्षा का उत्तरदायित्व इन सैनिकों के पास था। तब विदेशी आक्रांता देश की संपत्ति को लूटने, जमीन हड़पने के लिए भारत पर हमला किया करते थे।
2: अरे बाप रे। यानी बाहरी ताकतें भी हमला करती थी और देश के अंदर भी अस्थिरता थी दादाजी।
4: हाँ बेटा, और तभी देश के कुछ दूरदर्शी और ताकतवर बुद्धिमान मार्गदर्शकों ने एक संगठित सेना बनाने का विचार किया। एक ऐसा बल जो पूरे देश की रक्षा कर सके। 1 अप्रैल 1895 को एक संगठित सैन्य ढांचे की शुरुआत हुई और 1947 में आजादी के बाद इस नए भारत के अनुसार फिर से बनाया गया।
2: मतलब ये सेना इतिहास से लेकर आज तक देश के साथ खड़ी है दादाजी। पर दादू, सेना का काम सिर्फ युद्ध लड़ना ही है क्या?
4: नहीं बिटिया, सेना का काम तो इससे भी और ज्यादा है, बहुत बड़ा है।
2: वो भला कैसे?
4: देखो बेटा, जैसे सीमाओं की रक्षा करना, दुश्मनों से मुकाबला करना, आतंकवाद से लड़ना, आपदा में लोगों की मदद, ये सब सेना ही करती है।
2: अच्छा।
4: हाँ, जब बाढ़ आती है, देश में कहीं भी भूकंप आता है या इसके अलावा भी कोई संकट होता है, तो सबसे पहले दुर्घटना स्थल पर जो पहुंचता है वो है हमारी थल सेना।
2: मतलब ये सैनिक असल में हमारे रक्षक है दादू।
4: हाँ।
2: अब एक सवाल है मेरे मन में।
4: पूछो बिटिया।
2: वो ये कि जब असली युद्ध होता है तब क्या परिस्थिति होती होगी?
4: बेटा युद्ध कोई फिल्म नहीं है, ये तो पूरी योजना और अनुशासन से चलता है। जैसे सबसे पहले दुश्मन की जानकारी जुटाई जाती है, फिर हमले की रणनीति बनाई जाती है, तब जाकर फिर ऑपरेशन शुरू होता है और युद्ध लड़ा जाता है।
2: मतलब युद्ध में हर कोई मिलकर लड़ता है।
4: हाँ बेटा, युद्ध अकेले नहीं लड़ा जाता, ना ही जीता जाता, ये तो टीम वर्क है बिटिया।
2: दादू क्या आज की सेना पहले जमाने की सेना जैसी ही है?
4: नहीं बिटिया, आज की सेना बहुत आधुनिक है। नया कलेवर, नई तकनीक, नया युद्ध कौशल।
2: वो भला कैसे?
4: देखो बेटा, राइफल, मशीन गन, टैंक, मिसाइल, ड्रोन, सैटेलाइट, बेहतरीन परमाणु हथियार, आज क्या कुछ नहीं है हमारे पास। हम हर लिहाज से दुनिया के किसी भी अन्य विकसित देश की सेना की तरह ताकतवर हैं।
2: दादू
4: हाँ?
2: तो इसका मतलब अब युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि तकनीक से भी जीता जाता है।
4: हाँ बिटिया बिल्कुल शाबाश।
2: दादू
4: हाँ बेटा,
2: ताकतवर बनने के लिए ट्रेनिंग भी तो करनी होती होगी ना?
4: बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है, जैसे सुबह 4 बजे उठना, लंबी दौड़, पहाड़ चढ़ना, हथियार चलाना, मानसिक मजबूती, कठिन परिस्थितियों में जीना, डर पर काबू पाना।
2: दादू
4: हाँ बेटा,
2: ये जवान देश की रक्षा कैसे करते हैं? पहाड़ों में, बर्फ में, रेगिस्तान में, जंगलों में, चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, आखिर ये हर मौसम और विपरीत स्थिति में डटे कैसे रहते हैं दादाजी?
4: क्योंकि बिटिया इनके लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं है, इनके लिए तो ये देश की रक्षा का प्रण है, प्रण। तभी तो इतनी सम्मानित है हमारी गौरवशाली थल सेना।
2: दादू
4: हाँ बेटा,
2: भारतीय थल सेना का उद्देश्य क्या है?
4: बिटिया भारतीय थल सेना सिर्फ युद्ध लड़ने वाली ताकत नहीं है, ये देश की संप्रभुता, अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल है। भारतीय थल सेना भारत की तीनों शस्त्र सेनाओं में सबसे बड़ी है, जो जमीन पर रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करती है।
2: दादू
4: हाँ बेटा,
2: आपने भी ना भारतीय थल सेना के बारे में इतना कुछ बताया है मुझे, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी।
4: हर बड़ी ताकत की तरह भारतीय थल सेना की भी एक लंबी कहानी है। आज जिस सेना को हम भारतीय थल सेना कहते हैं, उसकी नींव बहुत पहले यानी 1 अप्रैल 1895 को रखी गई थी। ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ।
2: हाँ?
4: लेकिन बेटा क्या तुम एक दिलचस्प बात जानती हो?
2: वो क्या भला दादाजी?
4: जब हमारा भारत आजाद नहीं था तब इस सेना को ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था।
2: सच में दादू? फिर तो उस समय ये सेना अंग्रेजों के अधीन रही होगी, क्योंकि तब हमारा देश आजाद नहीं था।
4: हाँ बिटिया, उस समय भारतीय सैनिक अंग्रेजी हुकूमत के तहत काम करते थे, लेकिन बहादुरी और साहस तब भी उनमें आज जितना ही रहा होगा, मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ।
2: अच्छा?
4: हाँ बेटा।
2: दादू तो फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी हमारी भारतीय थल सेना कब बनी?
4: 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तब उसी सेना को नए भारत के अनुसार फिर से संगठित किया गया और तब बनी हमारी अपनी भारतीय थल सेना।
2: मतलब दादू आज की सेना सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि आजादी के बाद नए भारत की ताकतवर तस्वीर भी है।
4: हाँ बिल्कुल बिटिया, इस सेना ने सिर्फ सीमाओं की रक्षा ही नहीं की बल्कि आजाद भारत को मजबूत बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और अब भी अपनी जिम्मेदारी को ये बखूबी अंजाम दे रहे हैं।
2: दादू तो इसका मतलब हमारा हर सैनिक अपने साथ एक इतिहास भी लेकर चलता है।
4: हाँ बिटिया, हर वर्दी के पीछे सदियों का इतिहास, बलिदान और गौरव छुपा हुआ है। इसकी जड़ें भले ही बहुत पुरानी हैं, लेकिन आधुनिक भारतीय सेना का स्वरूप आजादी के बाद बहुत ज्यादा मजबूत हुआ और लगातार और ताकतवर होता जा रहा है।
2: तो क्या दादू ये सेना हमेशा से सीमा पर ही रहती है?
4: नहीं बिटिया, सीमा पर दुश्मन से मुकाबला करना इनका मुख्य काम तो है, लेकिन इसके अलावा भी ये देश के हर संकट में सबसे पहले खड़ी होती है। जब कहीं बाढ़ आती है, भूकंप आता है या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होती है, तब सबसे पहले भारतीय सेना ही राहत और बचाव के लिए पहुंचती है बेटा।
2: मतलब ये सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ती बल्कि जीवन रक्षक भी है दादाजी।
4: बिल्कुल, युद्ध में दुश्मन से लड़ना और संकट से अपने लोगों को बचाना, यही है भारतीय सेना की असली पहचान।
2: इतनी कठिन जिंदगी होती है इन देशभक्तों की, घर से दूर रहकर दादाजी अपने परिवार के लिए इन्हें डर नहीं लगता?
4: डर तो हर इंसान को लगता है बिटिया, लेकिन एक सैनिक अपने डर से बड़ा होता है, क्योंकि उसके दिल में देश के लिए प्यार और जिम्मेदारी होती है। जब पूरा देश चैन की नींद ले रहा होता है, तब हमारी भारतीय सेना का भारतीय जवान बर्फीली पहाड़ियों पर, रेगिस्तान की तपती रेत में और घने जंगलों में जाग कर पहरा देता है बेटा।
2: दादू, तभी तो हम सुरक्षित हैं ना, बिना किसी खौफ के हम अपने देश में कहीं भी आ जा सकते हैं।
4: हाँ बिटिया, भारतीय थल सेना सिर्फ एक बल नहीं है, ये हर भारतीय की सुरक्षा की 100% विश्वास की गारंटी है।
2: दादू,
4: हाँ,
2: जब युद्ध होता है तो क्या सच में सैनिक आमने सामने लड़ते हैं?
4: हाँ बिटिया, लेकिन जब भी युद्ध होता है तो वो सिर्फ हथियारों का नहीं होता, बल्कि हौसले और बलिदान का भी होता है।
2: ये तो आपने सही कहा दादाजी। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि 1965 का युद्ध हो, 1971 का ऐतिहासिक युद्ध हो या फिर कारगिल की बर्फीली चोटियाँ, हर बार भारतीय थल सेना ने असाधारण साहस दिखाया है।
4: हाँ बिटिया, ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर जहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहाँ हमारे जवानों ने दुश्मनों को कई बार पीछे खदेड़ा है। यही नहीं, कई वीर सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के ध्वज हमारे तिरंगे को सबसे ऊंचा रखा है।
2: अच्छा दादू।
4: हाँ बेटा।
2: क्या सैनिक अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर रहते हैं?
4: हाँ बेटा, कई कई महीनों तक वे अपने घर, अपने बच्चों, अपनों से दूर रहते हैं। कोई त्योहार हो या कोई खुशी का मौका, उनकी ड्यूटी उनके लिए सबसे पहले आती है बेटा।
2: तो इसका मतलब हम जो त्योहार मनाते हैं उसके पीछे भी उन वीर जवानों का ही त्याग होता है दादाजी?
4: बिल्कुल होता है बेटा। जब हम दिवाली पर दीप जलाते हैं, तब कोई जवान सीमा पर अंधेरे में कहीं दूर दराज के निर्जन बीहड़ में पहरा दे रहा होता है।
2: अच्छा दादाजी।
4: हाँ बेटा।
2: अगर कोई देश की सेवा करना चाहे तो क्या वो भारतीय थल सेना में जा सकता है?
4: क्यों नहीं बिटिया, भारतीय थल सेना देश के युवाओं के लिए सबसे सम्मानजनक करियर में से एक है। यहाँ कई रास्ते हैं, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और अब अग्निवीर योजना के माध्यम से भी युवा सेना में शामिल हो सकते हैं। रुचि बेटा, अब तुम क्या सोच रही हो?
2: दादू, अब मेरा पुराना वही सवाल, क्या लड़कियां भी इसमें जा सकती हैं?
4: तो बेटा, मेरा भी वही पुराना जवाब। बिल्कुल, आज भारतीय सेना में महिलाएं भी अधिकारी बनकर देश की सेवा कर रही हैं। चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या कॉम्बैट सपोर्ट रोल हो, सेना में सिर्फ नौकरी नहीं मिलती बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, सम्मान और देश सेवा का अवसर मिलता है बेटा।
2: दादाजी, तो भारतीय सेना में जाना सिर्फ करियर नहीं, हर देशभक्त भारतीय का एक सपना है।
4: हाँ बिटिया, एक ऐसा सपना जो हर भारतीय के दिल में बसता है और जो जय हिंद कहते वक्त शरीर के हर रोम को देशभक्ति के जोश से भर देता है।
2: दादू।
4: हाँ बेटा।
2: आपने अभी CDS का नाम लिया था, ये क्या है? क्या इससे सेना में जाया जा सकता है?
4: हाँ बिटिया, CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसके माध्यम से युवा भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बन सकते हैं। ये परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा साल में 2 बार कराई जाती है।
2: दादाजी।
4: हाँ बेटा।
2: ये किस तरह का एग्जाम होता है, इसमें किस तरह की तैयारी करनी होती है, जरा ये भी तो बताइए।
4: हाँ हाँ बेटा, इसमें लिखित परीक्षा होती है जिसमें अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित जैसे विषय आते हैं। इसके बाद होता है SSB इंटरव्यू, जहां उम्मीदवार की सोच, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को परखा जाता है।
2: सच दादू, यानी यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पर्सनैलिटी भी मजबूत होनी चाहिए।
4: बिल्कुल, एक सैनिक सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अपने साहस और चरित्र से बनता है बिटिया।
2: तो फिर बता ही दीजिए कि इसकी तैयारी कब और कैसे शुरू करनी चाहिए।
4: देखो बेटा, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के दौरान CDS की तैयारी शुरू कर सकते हैं।
2: अच्छा।
4: रोजाना समाचार और सामान्य ज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, साथ ही गणित और अंग्रेजी की पकड़ भी मजबूत होनी चाहिए। शारीरिक फिटनेस, दौड़, पुशअप, अनुशासन और सबसे जरूरी है कैडेट में आत्मविश्वास और नेतृत्व भावना का होना।
2: दादू।
4: हाँ बेटा।
2: सेना में कौन कौन सी पोस्ट होती है?
4: ये कोई आम पोस्ट नहीं है बेटा, सेना में इसे रैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
2: रैंक कहा जाता है।
4: हाँ, जो एक जिम्मेदारी और नेतृत्व की पहचान होती है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, और इन सबसे ऊपर जनरल का पद होता है। हर रैंक के साथ जिम्मेदारी और सम्मान दोनों बढ़ते जाते हैं।
2: दादू।
4: हाँ।
2: यानी भारतीय थल सेना हमारे वो रक्षक है जिनके लिए कर्तव्य सबसे ऊपर है और देश सबसे पहले।
4: हाँ।
2: आपने भारतीय थल सेना के बारे में इतना कुछ बताया, लेकिन ये इतनी बड़ी फोर्स आखिर काम कैसे करती है? इतने सारे सैनिक, उन्हें कौन संभालता है भला? क्या इसमें भी कोई सिस्टम होता है दादाजी?
4: देखो बेटा, इतनी बड़ी सेना को संभालने के लिए बहुत मजबूत और व्यवस्थित कमांड सिस्टम होता है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना बेटा, सबसे ऊपर होते हैं थल सेना अध्यक्ष, जिन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है, जो पूरी भारतीय थल सेना का नेतृत्व करते हैं। उनके नीचे कई वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो अलग अलग विभागों और क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालते हैं, यानी हर स्तर पर एक साफ जिम्मेदारी तय होती है।
2: अच्छा, हर रैंक के अधिकारी की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? जरा विस्तार से ये भी तो बताइए ना दादाजी।
4: बताता हूँ बेटा, जरा पानी दो पहले।
2: ये लीजिए आपका पानी।
4: लाओ बेटा। तो सुनो बेटा, लेफ्टिनेंट एक छोटी टुकड़ी का नेतृत्व करता है। शुरुआत यहीं से होती है।
2: अच्छा।
4: कैप्टन को अपने सैनिकों का मार्गदर्शन और छोटे ऑपरेशन को संभालना होता है। मेजर ऑपरेशन की योजना और क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल पूरी बटालियन की जिम्मेदारी उठाता है और ब्रिगेडियर एक ब्रिगेड का नेतृत्व करता है।
2: और लेफ्टिनेंट जनरल?
4: हाँ बेटा, लेफ्टिनेंट जनरल जैसे उच्च पद के अधिकारी बड़े स्तर की रणनीति बनाते हैं और कई यूनिट्स का नेतृत्व करते हैं बेटा। और इन सबसे ऊपर की रैंक होती है जनरल, यानी थल सेना अध्यक्ष।
2: वाओ दादू, ये तो कमाल है। अच्छा बताइए कि सेना में सैनिकों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है?
4: बहुत कठिन और अनुशासित ट्रेनिंग होती है बेटा इनकी। शारीरिक ट्रेनिंग जिसमें दौड़, चढ़ाई, बाधाएं पार कराई जाती हैं, हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, युद्ध रणनीति, कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की कला, ये सब सिखाई जाती है। उन्हें आधुनिक हथियार चलाना और अत्याधुनिक तकनीक से लैस उपकरण चलाना भी सिखाया जाता है।
2: अच्छा दादाजी।
4: हाँ,
2: इनकी ट्रेनिंग किन संस्थानों में होती है?
4: इसकी ट्रेनिंग देश के प्रमुख संस्थानों इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होती है। यहीं से तैयार होकर देश के युवा एक काबिल अधिकारी बनते हैं बेटा।
2: आपने बताया था कि सैनिकों को हर तरह की कठिन ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन क्या उनकी ये ट्रेनिंग सच में इतनी मुश्किल होती है कि वो हर तरह के मौसम और जगह पर काम कर सके?
4: सेना की ट्रेनिंग का मकसद ही यही होता है कि एक सैनिक हर मौसम, हर जगह खुद को ढाल सके। उन्हें ऐसी परिस्थितियों में भी काम करना सिखाया जाता है जहां आम इंसान कुछ घंटों में ही हार मान लेते हैं।
2: मतलब दादू, हमारे सैनिक दुनिया की सबसे कठिन जगहों पर भी ड्यूटी करते हैं।
4: बिल्कुल बिटिया, और ऐसी ही एक जगह है जहां जाना ही अपने आप में एक परीक्षा है।
2: कौन सी जगह दादू?
4: वहां सिर्फ दुश्मन ही नहीं होता बेटा, बर्फीले तूफान, ग्लेशियर की दरारें, ऑक्सीजन की कमी और हर पल मौत का खतरा। फिर भी हमारे जवान 24 घंटे हर मौसम में उस बर्फ की दीवार पर खड़े रहते हैं।
2: दादू, इतनी कठिन जगह पर रहना, वो भी लगातार, ये तो बहुत ही जोखिम भरा होगा दादाजी।
4: इसलिए तो उन्हें कहा जाता है हिमवीर, क्योंकि वो सिर्फ दुश्मन से नहीं प्रकृति से भी लड़ते हैं बेटा, और हर हाल में तिरंगे की रक्षा करते हैं।
2: अच्छा दादू,
4: हाँ
2: भारतीय थल सेना में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है?
4: परमवीर चक्र। ये भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है बेटा, जो युद्ध के दौरान असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है।
2: जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला था, जिन्होंने कारगिल युद्ध में ये तिल मांगे मोर कहते हुए दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा किया था और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया था। ये तो सच में हीरो होते हैं दादाजी।
4: बिटिया, ये सिर्फ हीरो नहीं होते, ये इस देश की सांसें हैं। सांसें, ये वो ताकत है जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। हम जिन खतरों से बेखबर हैं, ये जवान रोज उनका सामना करते हैं बेटा।
2: पर दादाजी,
4: हाँ
2: सेना में इतने सारे अधिकारी और सैनिक होते हैं, तो हर किसी को कैसे पता होता होगा कि उसे क्या करना है? कोई गलती नहीं होती क्या उनसे?
4: यही तो सेना की असली ताकत है बिटिया। स्पष्ट आदेश, क्लियर ऑर्डर्स और कड़ा अनुशासन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। सेना में हर काम एक तय व्यवस्था के तहत होता है बेटा। इसे कहते हैं कमांड सिस्टम।
2: कमांड सिस्टम? ये क्या होता है दादू, और ये कैसे काम करता है?
4: देखो बेटा, सेना में आदेश ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। सबसे ऊपर होते हैं थल सेना अध्यक्ष, उनके नीचे अलग अलग वरिष्ठ अधिकारी, फिर यूनिट कमांडर और फिर सैनिक। इस पूरी व्यवस्था को ऐसे बनाया गया है कि हर सैनिक को साफ पता हो उसे कब, कहां और कैसे काम करना है। समझी?
2: मतलब सब कुछ पहले से ही तय होता है।
4: इसी वजह से युद्ध जैसी कठिन स्थिति में भी कोई भ्रम नहीं होता।
2: अच्छा दादू, ये कमांड स्ट्रक्चर या जिसे तकनीकी विस्तार भी कहते हैं, ये क्या होता है?
4: दरअसल पूरे देश को सेना ने अलग अलग कमांड्स में बांटा है, ताकि हर क्षेत्र की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सके। जैसे कि उत्तरी कमांड जम्मू कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी कमांड पश्चिमी सीमा क्षेत्र, पूर्वी कमांड पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी कमांड दक्षिण भारत, मध्य कमांड मध्य क्षेत्र। बेटा
2: ओ, अब समझ में आया। हर कमांड अपने अपने क्षेत्र की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभालती है।
4: बिल्कुल सही बेटा। और हर कमांड के अंदर भी कोर डिवीजन, ब्रिगेड, बटालियन जैसी इकाइयां होती हैं। इसी मजबूत व्यवस्था की वजह से सेना हर परिस्थिति में तेज और सटीक निर्णय ले पाती है।
2: यानी सेना एक मजबूत सिस्टम में बंद कर हमारे देश की रक्षा करती है दादाजी।
4: हाँ बेटा, एकदम सही समझा तुमने। तुम जानती हो, एक बटालियन में लगभग 600 से 900 सैनिक होते हैं। कितने होते हैं?
2: 600 से 900 सैनिक?
4: हाँ, और कई बटालियन मिलकर एक बड़ी ताकत बनाती है।
2: ओ, मतलब जैसे स्कूल में सेक्शन, क्लास और फिर पूरा स्कूल।
4: हाँ बिल्कुल वैसा ही बेटा।
2: अच्छा दादाजी, इनके काम करने का तरीका कितना सिस्टमैटिक है ना?
4: हाँ बेटा, हर सैनिक को उसकी ड्यूटी और जिम्मेदारी दी जाती है। आदेश ऊपर से नीचे तक पहुँचते हैं और हर कोई अनुशासन से काम करता है। इसी वजह से इतनी बड़ी सेना भी एकजुट होकर काम कर पाती है।
2: अच्छा दादू, क्या ये सेना आधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है?
4: बिल्कुल बेटा, आज की भारतीय सेना में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीकों का भरपूर उपयोग किया जाता है। जैसे संचार प्रणाली, जिन्हें तुम आजकल जेंजीज क्या बोलते हो?
2: नहीं दादाजी।
4: सोचो बेटा, कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार, सैटेलाइट, डिजिटल मैपिंग वगैरह वगैरह।
2: मतलब सब कुछ बहुत प्लानिंग से होता है दादाजी।
4: तो सेना का हर कदम सोच समझकर और एक सुनियोजित योजना के साथ उठाया जाता है बेटा।
2: दादू, अब समझ में आया कि इतनी बड़ी सेना कैसे एक साथ मिलकर हमारे देश की रक्षा करती है।
4: क्योंकि बिटिया, ये सिर्फ सैनिकों का समूह नहीं है, बल्कि अनुशासन, विश्वास और देशभक्ति का संगम है। भारतीय थल सेना वो शक्ति है जो हर खतरे के सामने दीवार बनकर खड़ी रहती है। ये वो विश्वास है जिसके कारण हर भारतीय निडरता से जी पाता है बेटा।
2: दादू, आपने भारतीय थल सेना के बारे में इतना कुछ बताया, लेकिन एक बात और बताइए, इतनी बड़ी फोर्स की कमांड भला कौन संभालता है?
4: देखो बेटा, भारतीय थल सेना सिर्फ बहादुरी से नहीं, बल्कि एक मजबूत संगठन और अनुशासन से चलती है। इसका नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास होता है और इसका नेतृत्व करते हैं थल सेना अध्यक्ष।
2: वाह, इतना बड़ा नेटवर्क है ये तो। अच्छा दादू, ये बताइए कि सैनिकों को कौन कौन से हथियार चलाने सिखाए जाते हैं?
4: बेटा, उन्हें आधुनिक हथियारों की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे राइफल, मशीन गन, ग्रेनेड, टैंक जैसे T-90 और अर्जुन, इसके अलावा मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस वगैरह।
2: मतलब यहाँ भी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस होती है दादाजी।
4: हाँ बेटा, आज की सेना सिर्फ ताकत नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का भी मजबूत संगम है। ये सेना सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से चलती है। वॉकी टॉकी और वायरलेस सेट ड्रोन और सर्विलांस कैमरे, ये सब अब रूटीन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हैं।
2: मतलब वो दूर छुपकर बैठे दुश्मन को भी आसानी से देख सकते हैं।
4: हाँ बिटिया, रडार और ड्रोन की मदद से दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। सबसे जरूरी, हर संदेश कोड भाषा में भेजा जाता है बेटा, ताकि दुश्मन उसे समझ ना सके।
2: वाह, मतलब सेना बहुत स्मार्ट भी होती है दादाजी।
4: तो यही टेक्नोलॉजी सेना को और भी ताकतवर बनाती है बेटा।
2: दादू, युद्ध में ऑपरेशन के दौरान कैसा मंजर होता होगा ना, मैं तो ये सोचकर भी कांप रही हूँ। जब सच में युद्ध होता होगा तो सेना कैसे काम करती है दादाजी?
4: युद्ध में हर कदम योजना के अनुसार होता है बिटिया। सबसे पहले दुश्मन की जानकारी जुटाई जाती है, फिर रणनीति बनाई जाती है और उसके बाद सैनिक अलग अलग टीम में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इन्फेंट्री आगे बढ़ती है, टैंक सपोर्ट देते हैं, तोपखाना दूर से हमला करता है और कमांडर पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित करता है।
2: सुनकर ही कितना रोमांचक लग रहा है दादाजी। इसका मतलब सब एक साथ मिलकर

0: और स्टेमिना बढ़ाने का अभ्यास कराया जाता है।
1: अच्छा।
0: फिर आता है बेटा हथियार प्रशिक्षण, जिसमें राइफल, मशीन गन, पिस्तौल, ग्रेनेड फेंकना, लक्ष्य भेदन, फायर कंट्रोल और सुरक्षा नियम सिखाए जाते हैं। उसके बाद युद्ध कौशल या युद्ध रणनीति, जिसमें टीम मूवमेंट, नक्शा और कंपास या दिशा सूचक पढ़ना, रात में ऑपरेशन का अभ्यास कराया जाता है।
1: अच्छा दादाजी, मैंने सुना था कि इन जवानों को सर्वाइवल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, वो भला किस तरह का अभ्यास होता है?
0: हाँ बेटा, सर्वाइवल ट्रेनिंग में जंगल में जीवित रहना सिखाया जाता है। वहाँ कम संसाधनों में कैसे काम करेंगे, ठंड, गर्मी, बारिश, हर मौसम में टिके रहने की परीक्षा होती है बेटा। फिर आता है मानसिक प्रशिक्षण, ये सबसे कठिन अभ्यास है। इसमें तनाव में निर्णय लेना, डर पर नियंत्रण, अनुशासन और नेतृत्व करना सिखाया जाता है।
1: इतना कठिन अभ्यास? अच्छा दादू, क्या उन्हें आधुनिक तकनीकें भी सिखाई जाती हैं?
0: बिल्कुल बेटा, उन्हें ड्रोन संचालन, कम्युनिकेशन सिस्टम, नाइट विजन उपकरण आदि तकनीकों का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है।
1: दादू, ये तो बहुत ही मुश्किल होता होगा ना? इतनी ताकत पाने के लिए ट्रेनिंग भी कितनी जी जान लगा कर करनी होती होगी ना?
0: हाँ बेटा, बहुत कठिन। सुबह से लेकर रात तक दौड़, पहाड़ चढ़ना, बाधाएं पार करना, हथियार चलाना और कठिन हालात में जीना, इन सबको गर्म लोहे सा तपाकर सब कुछ सिखाया जाता है बेटा।
1: सेना में आगे कैसे बढ़ते हैं दादाजी?
0: सेना में पद धीरे धीरे बढ़ते हैं बेटा। जैसे सबसे पहले लेफ्टिनेंट के पद से शुरू होकर कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर और फिर जनरल तक पहुंचा जाता है।
1: मतलब हर कदम पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, सही कहा ना मैंने दादू?
0: हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इसके अलावा उन्हें अपने देशवासियों से सम्मान भी तो मिलता है।
1: दादू, क्या हमारे सैनिक देश के बाहर जाकर भी देश का गौरव बढ़ाते हैं?
0: बिल्कुल बिटिया, संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भारतीय सेना दुनिया में शांति स्थापित करने का काम करती है।
1: तो सेना का असली काम क्या होता है?
0: तीन बड़े काम होते हैं, देश की सीमा की रक्षा करना, युद्ध में दुश्मन से लड़ना, देश के अंदर संकट में मदद करना, यही सेना का असली काम है।
1: और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आए, जैसे बाढ़, भूकंप, तब भी सेना आती है?
0: हाँ बिटिया, जब कोई मुसीबत आती है तो सेना ही सबसे पहले मदद के लिए खड़ी होती है बेटा।
1: और मैं सेना में जाना चाहूँ तो?
0: हाँ बेटा बिल्कुल, 12वीं के बाद NDA और ग्रेजुएशन के बाद CDS, बाकी की तैयारी के लिए पढ़ाई, जिसमें मैथ्स, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी का अभ्यास और रोज व्यायाम, अनुशासन, आत्मविश्वास, ये ही चाहिए बस। बाकी सेना सिर्फ नौकरी नहीं है बेटा, ये एक अनुशासन से भरा हुआ जीवन है।
1: अच्छा दादाजी, सियाचिन के बारे में बताइए ना।
0: सियाचिन जहाँ तापमान 50 तक जाता है बेटा,
1: वहाँ कोई भी रह सकता है क्या?
0: सिर्फ हमारे शेर दिल सैनिक, इसीलिए उन्हें हिमवीर कहते हैं बेटा।
1: दादू।
0: हाँ बेटा।
1: अब समझ में आया कि हमारी सेना क्या है।
0: भारतीय थल सेना सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करती, ये देश की आत्मा की रक्षा करती है बेटा।
1: समझ गई दादाजी, आज आपने थल सेना के बारे में जो भी बताया, मैं उसे हमेशा याद रखूंगी और मेरे देश के हर जांबाज का मैं हमेशा सम्मान करूंगी। जय हिंद दादाजी।
0: जय हिंद बेटा, जय हिंद। अच्छा चलो, अब मैं आराम करूंगा बेटा।
2: अभी आप सुन रहे थे रेडियो नाटक देश के संस्थान, सरहदों की अटूट ढाल, भारतीय थल सेना। श्रोताओं, आपके साथ मैं भगवती सक्सेना,
3: मैं दीपक नेमा।
2: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन किया अमित गुंदानी ने, समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का, लेखन किया स्वाति गिरी ने, प्रस्तुति थी रेडियो आजाद हिंद की। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: नमस्कार श्रोताओं, आजाद हिंद में हम रोज करते हैं कुछ ऐसे वीर महापुरुषों की बातें जो अपने आप में अद्वितीय रहे हैं। वो लोग जो एक मिसाल बनकर आज भी सारे जग को रोशनी दे रहे हैं। उन वीरों की बातें यहां करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि सभी को उन जैसा ही बनने की प्रेरणा मिले और सभी का उद्धार हो।
1: इसी कड़ी में एक और मोती आज जोड़ा जाएगा और ये मोती है लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1856 को पंजाब में अपने नाना के घर दुड्डिक के ग्राम में हुआ। लाला जी का पैतृक घर लुधियाना जिले में जगराव नाम के छोटे से कस्बे में था, जहां लाला जी के पिता राधा कृष्ण जी स्कूल में शिक्षक थे। वे उर्दू के अच्छे ज्ञाता और स्वामी दयानंद के परम भक्त थे।
0: लाला जी को सेवा और साहित्य से गहरा प्रेम था। माना जाता है कि उन्हें

0: उन्होंने जाना कि कितनी परेशानी के बीच स्वयं को रखकर लाजपत ने घर और उनकी देखभाल की है और नौकर के न होने पर भी सारा काम खुद किया है, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। बेटे को तकलीफ देने के लिए जब उन्हें ग्लानी हुई और उन्होंने लाजपत से ये कहा तो लाजपत ने उन्हें रोक दिया। पिता की सेवा को अपना परम कर्तव्य मानते हुए उन्होंने इसे अपना सुख बताया।
1: बालक लाजपत की ये बात सुन पिता को पूरा भरोसा हो गया कि बेटा जरूर बड़ा होकर देश सेवा में ही अपना जीवन समर्पित कर देगा। शायद उनके आशीर्वादों के ही फलस्वरूप लाला लाजपत राय भारत के सबसे निष्ठावान सेवकों में से एक माने जाते हैं।
0: सही है, माता पिता के आशीर्वाद के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। लाला जी ने पिता की इस बात को गांठ बांध लिया और विद्यार्थी जीवन से ही सेवा कार्य में लग गए। वे अपने पिता की ही तरह उर्दू में लेख भी लिखते और भाषण भी करते। इससे उनकी योग्यता में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हुई। जब उन्होंने वकालत पास की तो सभी नतीजे बहुत ही बढ़िया आए।
1: फिर उन्होंने हिसार में वकालत शुरू की, क्योंकि बुद्धि उनकी विलक्षण थी और बोलने में तो वो तेज थे ही। बस बहुत जल्द सफलता उनके कदम चूमने लगी। बस एक बात यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि वो जो भी कमाते उसका अधिकांश हिस्सा वो सेवा कार्यों में लगा देते। हिसार में उन्होंने ही आर्य समाज की शाखा स्थापित की। इस कार्य हेतु अपने पास से 1500 रुपए की राशि उन्होंने दान की। हिसार में ही संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना उन्होंने की और भी बहुत कुछ केवल सेवा के उद्देश्य से किया।
0: लाला जी की कई सारी विशेष बातें हैं जो हम जानेंगे इस गीत के बाद।

0: बजाए चल। हिसार में अपने कार्यों से लाला जी बहुत प्रिय नेता हो गए थे। आर्य समाज का मुख्य कार्य अछूतोद्धार था। लाला जी की भी इसमें विशेष रुचि थी। उन्हें किसी एक समुदाय को इस तरह समाज से काट देना ठीक नहीं लगता था। उन्होंने कांगड़ा और संयुक्त प्रांत के पहाड़ी इलाकों में जाके अछूतों के लिए बहुत काम किया।
1: किसी भी व्यक्ति के उद्धार में सबसे बड़ा हाथ होता है शिक्षा का, पर इस शिक्षा के प्रचार के लिए पैसा चाहिए होता है। लाला जी ने इसी काम के लिए 40,000 रुपये दान किए। इस पैसे से अछूतों के लिए पाठशालाएं खोली गईं। इसके अलावा आर्य समाज के स्कूलों में भी अछूतों को स्थान दिलाने की दिशा में बहुत काम किया। उनके ही प्रयासों से ये छात्र गुरुकुलों में भर्ती हो सकते थे।
0: नौजवानों की शिक्षा दीक्षा को लेकर लाला लाजपत राय बड़े चिंतित रहते थे। हूँ भी क्यों ना, आखिर देश का भविष्य नौजवान पीढ़ी ही तो होती है। अगर इसी पीढ़ी में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार अच्छी तरह न हुआ तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। अंग्रेजी स्कूलों में भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता था। इसके अलावा वो बहुत ही महंगे और खर्चीले भी थे। कॉलेज से लड़के पढ़कर निकलते थे तो वे बस साहब बन जाते थे। व्यवहारिक पक्ष से वो कमजोर भी होते थे। उनके मन में स्वदेश प्रेम नहीं के बराबर होता था।
1: इस बात पर लाला जी अक्सर सोचा करते थे कि ऐसा कॉलेज खोला जाए जिसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और संस्कृत भी पढ़ाई जाए। इससे ही नौजवानों में अपने इतिहास के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न होगा। ये विचार बहुत ही अच्छा था। इसका खर्चा भी वे कम ही रखना चाहते थे ताकि सभी को समान रूप से शिक्षा मिल सके, खासकर गरीब तबके के जहीन विद्यार्थियों को।
0: लाला हंसराज की मदद से लाहौर में कॉलेज भी खुल गया। इस कॉलेज का नाम दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज रखा गया। इस कॉलेज के लिए सरकारी सहायता लेना लाला जी को बिल्कुल गवारा न था। सभी सरकारी कॉलेजों के मुकाबले भी यहाँ की फीस सबसे कम थी। लाला लाजपत राय ने कॉलेज चलाने के लिए बहुत सा धन एकत्रित किया। फिर ऐसे ही कॉलेज भारत के कई और शहरों में भी खोले गए। इन कॉलेजों से ऐसे ऐसे क्रांतिकारी और देशभक्त पैदा हुए जिन्होंने भारत की उन्नति के लिए बहुत कार्य किया।
1: लाला जी ने शिक्षा को आगे बढ़ाने में जो कार्य किया वो अतुल्य है, पर तुम अपना कार्य भूल रहे हो इतिहास। श्रोताओं को एक अच्छा सा देशभक्ति गीत तो सुनवाओ।
0: हाँ।

0: इस गीत के बाद अब आगे भी तो बताओ, और क्या क्या किया लाला जी ने?
1: अब तुम तो जानते ही हो कि कितने देशभक्त और सेवा भाव वाले व्यक्ति थे लाला जी। एक बार की बात है, उन दिनों देश में अकाल पड़ा, लाला जी से रहा न गया। उन्होंने पीड़ितों की सेवा करने का निश्चय कर लिया। प्रभावित इलाकों में जाकर वे अन्न और दूसरी सहायता पहुंचाने में लग गए।
0: वे क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। उन्होंने उर्दू दैनिक वंदे मातरम में लिखा, मेरा मजहब हक परस्ती है, मेरी मिल्लत कौम परस्ती है, मेरी हबादत खलक परस्ती है, मेरी अदालत मेरा अंतःकरण है, मेरी जायदाद मेरी कलम है, मेरा मंदिर मेरा दिल है, और मेरी उमंगें सदा जवान हैं।
1: धर्म के बारे में उनका विचार था, धर्म सिखाया नहीं जा सकता, वो उसी वातावरण में उन्नति पाता है जिससे विचारों की मलिनता हटा दी गई हो। धर्म ठीक विचार है, सही अनुभव है और उचित कार्य है। कितने लोग ऐसी सुलझी हुई बात कह पाते हैं?
0: उनके ये शब्द तो अनमोल हैं। जो धर्म वर्तमान सामाजिक ढांचे को कर्मों के आधार पर सही बताए और जायदाद विरासत और विवाह के कानून की बाबत प्रचलित विचारों का पक्ष ले, वो धर्म झूठा है। इस कड़कती हुई बात से उनके व्यक्तित्व का रौब और साहस झलकता है।
1: कई बार जेल यात्राएं की, कई बार उन्हें छल से फंसाया भी गया, पर अपने साहस को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जेलों में भी रहे तो पुस्तकें लिखते रहे। महान अशोक, श्री कृष्ण और छत्रपति शिवाजी पर उन्होंने पुस्तकें लिखी। इटली के महान क्रांतिकारियों मेजिनी और गैरिबाल्डी पर भी उन्होंने पुस्तकें लिखी। वे अच्छे लेखक थे, अंग्रेजी के विद्वान थे, परंतु पुस्तकें उर्दू में ही लिखते थे। साधारण जनता के समझ में आने वाली भाषा उन दिनों उर्दू ही थी।
0: मांडले की जेल यात्रा से लौटते ही उन्होंने वकालत छोड़ दी, देश को ही समर्पित हो जाने का फैसला ले लिया। 1914 में कांग्रेस ने उन्हें एक डेप्यूटेशन पे इंग्लैंड भेजा। लाला जी काम खत्म हो जाने के बाद भी वहीं बने रहे, फिर वहां से जापान चले गए। जापान से लौटने को ही थे कि विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। भारत सरकार ने उन्हें लौटने की आज्ञा नहीं दी, इसलिए वे दोबारा इंग्लैंड होते हुए अमरीका निकल गए। वहां उन्होंने देश हित में काफी काम किया। उनकी पुस्तक यंग इंडिया वहां बहुत प्रसिद्ध हुई।
1: अरे इतिहास, अपनी धुन में इतने मगन हो कि गीत का समय हो गया ये भी भूल गए?
0: मैं इतिहास हूँ, कुछ नहीं भूलता। ये लो, तुम्हारा पसंदीदा देशभक्ति गीत भी लगा दिया। श्रोताओं के साथ तुम भी इसका आनंद लो।

0: हाँ, गीत तो बहुत ही सुंदर था, पर इससे भी सुंदर बात ये है कि तुम लाला लाजपत राय की बातें सुना रहे हो, आगे तो सुनाओ।
1: हाँ, तो आगे की बात ये है कि जब वे स्वदेश लौटे तो उन दिनों कांग्रेस का आंदोलन जोरों पर था। कलकत्ता के अधिवेशन में लालाजी इसके प्रधान चुने गए, पर थोड़े ही दिनों बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, पर बिना इसकी परवाह किए वो देश सेवा में रत रहे।
0: 1928 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया। कांग्रेस ने इसे बॉयकॉट किया और जहां भी ये कमीशन गया इसे विरोध ही झेलना पड़ा। देश भर में काले झंडों से इसका स्वागत किया जा रहा था। ऐसे ही जब ये जत्था लाहौर पहुंचा तो स्टेशन पर हजारों की भीड़ ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाना शुरू कर दिया।
1: लोगों की अपार भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लालाजी सबसे आगे विरोध में खड़े थे, इसलिए कई लाठियां उनके सीने में एक साथ लगी। भय से पीछे हट जाने के बजाय उन्होंने गर्जना की कि मेरी छाती पर लगा एक एक वार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की काठी में एक एक कील साबित होगा।
0: पंजाब केसरी थे वो, पर आखिर थे तो इंसान ही, कितना सहते। छाती लाठियों के वार से सूज गई और बुखार रहने लगा। अंत में इन्हीं वारों की वजह से उनके प्राण निकले और 17 नवंबर 1928 को वे धरती धाम से कूच कर गए।
1: भारत माँ के इस लाडले ने अपने जैसे कई वीर सपूतों को बनाने में अप्रतिम योगदान दिया और अपना ही नहीं कईयों का जीवन सफल किया। ऐसे महान देशभक्तों को शत शत नमन।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे,
3: तब तक के लिए नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के याद

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

0: पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।
1: सुनकर

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम एवं कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित कार्यक्रम काव्य कुंजन।

0: आज हम आपको सुना रहे हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा का वाचन। पिछले भाग में आपने सुना था कि संसार के चक्र को देखकर सिद्धार्थ कितने विकल हैं। पिछले भाग में आपने ये भी सुना था कि सिद्धार्थ के घर छोड़ने के पश्चात यशोधरा के मन में किस किस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। अब आगे सुनिए।
1: लीजिए सुनिए सिद्धार्थ के सौतेले भाई नंद का पश्चाताप।
2: आरे, ये मुझ पर कैसा अत्याचार! राज्य तुम्हारा प्राप्त मुझे ही था तब का अधिकार। छोड़ा मेरे लिए हाय, क्या तुमने आज उदार। कैसे भार सहेगा संप्रति राहुल है सुकुमार। आर्य, ये मुझ पर अत्याचार। नंद तुम्हारी थाती पर ही देगा सब कुछ वार। किंतु करोगे कब तक आकर तुम उसका उद्धार। आर्य, ये मुझ पर कैसा अत्याचार।
1: सिर्फ नंद ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ के गृह त्याग के पश्चात उनकी सौतेली माता महाप्रजावती के विलाप का करुण दृश्य है अगला काव्यांश।
3: मैंने दूध पिलाकर पाला, सोती छोड़ गया पर मुझको वह मेरा मतवाला। कहां न जाने वह भटकेगा, किस झाड़ी में जा अटकेगा। हाय उस

निकले भाग्य हमारे सूने, वस्त दे गया तू दुख दूने, किया मुझे कैकई तूने, हाँ कलंक यह काला, मैंने दूध पिलाकर पाला। कह मैं कैसे इसे सहूंगी, मरकर भी क्या बची रहूंगी, जी जी से क्या हाय कहूंगी, जीते जी यह ज्वाला,

0: दूध पिलाकर पाला।
1: सौतेली माँ का ये विलाप कैसे थमेगा? कैकेयी के समतुल्य समझ रही है आज खुद को महाप्रजापती। उधर कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोदन शोकग्रस्त होकर विचार मग्न है कि मैंने सिद्धार्थ का वीत राग कैसे कैसे मिटाना चाहा, लेकिन फिर भी रोक ना सका सिद्धार्थ को।
2: मैंने उसके अर्थ यह रूपक रचा विशाल, किंतु भरी थाली गई, उलट गया वह थाल, चला गया रे चला गया, छला न जाए हाय वह यह मैं, चला गया रे चला गया। खींचा मैंने गुण सतान, निकल गया वह बाण क्षमा, खींचा मैंने गुण सतान, निकल गया वह बाण समान, ममते तेरा मान महान, दला गया रे दला गया, चला गया रे चला गया। स्वस्थ देह सा था यह गेह, गया प्राण सा वह निस्नेह, अश्रु व्यर्थ हैं अब यह मेह, जला गया रे जला गया, चला गया रे चला गया। उसे फूल सा रखा पाल, गया गंध सा वह इस काल, यह विषफल कांटे सा साल, फला गया रे फला गया, चला गया रे चला गया। धिक सब राज पाट धन धाम, धन्य उसी का लक्ष्य ललाम, किंतु कहूं कैसे हे राम, भला गया रे भला गया, चला गया रे चला गया।
1: महाराज शुद्धोधन को भोग विलास ऐश्वर्य फीके लग रहे हैं। अब वे अपने अगले काव्यांश में अपूर्व धैर्य धारणी यशोधरा से संवाद करते हैं।
2: धीरा है यशोधरे तू, धैर्य कैसे मैं धरूं, तू ही बता उसके लिए मैं आज क्या करूं।
3: उनकी सफलता मनाओ तात मन से, सिद्धि लाभ करके वे लौटे शीघ्र वन से।
2: तू क्या कहती है बहू, पाऊं मैं जहां कहीं, चतुर चरों को भेज खोजूं भी उसे नहीं।
3: तात नहीं।
2: कैसी बात बेटी, यह भूल है।
3: किंतु खोज करना उन्हीं के प्रतिकूल है, तात सोचो क्या गए वे इसी अर्थ हैं, खोज हम लावे उन्हें क्या वे असमर्थ हैं।
2: बेटी वह प्रौढ़ है क्या, वत्स भोला भाला है,
3: पा लिया उन्होंने किंतु ज्ञान का उजाला है।
2: गोपे यह गर्व और मन क्या उचित है।
3: जो मैं कहती हूं तात, हाय वही हित है।
2: जान पड़ती तू आज मुझको कठोर है,
3: धर्म लिए जाता मुझे आज उसी ओर है।
2: तू है सती, मान्य रहे इच्छा तुझे पति की, मैं हूं पिता, चिंता मुझे पुत्र की प्रगति की। भूला वह भूला, उठा रखूं क्या उपाय मैं,
3: उनसे भी भोला तुम्हें देखती हूं हाय मैं।
1: महाराज शुद्धोधन और यशोधरा का संवाद सुन पाषाण हृदय भी पीड़ा से भर उठे, तो प्रजा का भी हाल विकल है।
4: भाई रे हम प्रजा जनों का हाय भाग ही खोटा, दिखा दिखा कर लाभ अंत में आ पड़ता है टोटा। रोते रहे सभी पुर परिजन, राज्य छोड़कर राम गए वन, पड़ा रहा वो धाम धरा धन, खड़ा रहा पर कोटा। भाई रे हम प्रजाजनों का हाय भाग ही कोटा। गए आज सिद्धार्थ हमारे, जो थे इन प्राणों के प्यारे, भार मात्र कोई अब धारे, राज धूल में लोटा। भाई रे हम प्रजा जनों का हाय, भाग ही खोटा। हम हो कितने ही अनुरागी, हुए आज वे सब कुछ त्यागी, कैसे इस विभूति का भागी, होता ये घर छोटा। भाई रे हम प्रजा जनों का हाय, भाग ही खोटा। लो ये छंदक आया, पर कंथक शून्य पृष्ठ क्यों आया, हे भगवान ना जाने कौन समाचार ये लाया।
1: प्रजा खुद के भाग्य को कोस रही है, ऐसे में सिद्धार्थ का प्रिय सारथी छंदक नगरवासियों और कुटुंबियों को संबोधित करके सिद्धार्थ के संदर्भ में कहते हैं।
4: कहूं और क्या भाई, आना पड़ा मुझे, मैं आया मुझको मृत्यु ना आई। मारो तुम्ही मुझे, मर जाऊं सुख से, राम दुहाई। झूठ कहूं तो सुगति ना देवे मुझको गंगा माई। जोग भ्रष्ट थे आर्य, उन्हीं की धुन थी उन्हें समाई। राज्य छोड़ सन्यास ले गए, रज ही हाय रमाई। सोने का सुमेरु भी उनके निकट हुआ था राई। अस्त्र वस्त्र भूषण क्या उनको नहीं शिखा भी भाई। हाय काट डाले वो केश, चिकने चुपड़े कोमल कच्चे, सच्चे सुरभि निवेश। शोभित ही रहता है शोभन, रख ले कोई वेश, दिया समान उन्होंने।

0: देश तुम अपने हो, जीव मात्र का हित मेरा उद्देश्य।
1: छंदक के लौटने के बाद सिद्धार्थ के सन्यास लेने के बाद जब यशोधरा को पता चलती है तब वो ऐश्वर्य और विलासता त्यागने का निश्चय करती है।
2: जाओ मेरे सिर के बाल, आली कर्तरी ला, मैंने क्या पाले काले व्याल, उलझे यहाँ न ये आपस में सुलझे वे व्रतपाल, डसे न हाय मुझे एड़ी तक विस्तृत ये विकराल, कसे न और मुझे अब आकर हेम हीर मणिमाल, चार चूड़ियां ही हाथों में पड़ी रहें चिरकाल, मेरी मलिन गूदड़ी में भी है राहुल सा लाल, क्या है अंजन अंग राग जब मिली विभूत विशाल, बस सिंदूर बिंदु से मेरा जगा रहे यह भाल, वह जलता अंगार जला दे उनका सब जंजाल। आज नया उत्सव है धन, आहा इस उमंग का क्या कहना, सुनी अखियों ने भी निरख सखी क्या अपूर्व कहना पहना, वर्तमान मेरा आहा है अतीत का ध्यान, किंतु हाय इस ज्ञान से अच्छा था अज्ञान, यह जीवन भी यशोधरा का अंग हुआ, हाय मरण भी आज न मेरे संग हुआ, सखी वह था क्या सभी स्वप्न जो भंग हुआ।

वियोग देती उन्हें विदा में गाकर, भार झेलती गौरव पाकर, यह निश्वाय न उठता हाकर, बनता मेरा राग न रोग, मिला नहा इतना भी योग। पर वैसा कैसे होना था, वह मुक्ताओं का बोना था, लिखा भाग्य में तो रोना था, यह मेरे कर्मों का भोग, मिला नहा इतना भी योग। पहुंचाती मैं उन्हें सजाकर, गए स्वयं वे मुझे लजाकर, लूंगी कैसे वाद्य बजाकर, लेंगे जब उनको सब लोग, मिला नहा इतना भी योग। दूं किस मुंह से तुम्हें उलहना, नाथ मुझे इतना ही कहना, हाय स्वार्थनी थी मैं ऐसी, रोक तुम्हें रख लेती, जहां राज्य भी त्याज वहां मैं जाने तुम्हें न देती। आश्रय होता या वह बहना, नाथ मुझे इतना ही कहना, विदा न लेकर स्वागत से भी वंचित यहां किया है, हंत अंत में यह अविनय भी तुमने मुझे दिया है, जैसे रखो वैसे रहना, नाथ मुझे इतना कहना। ले न सकेगी तुम्हें वही बढ़, तुम सब कुछ हो जिसके, यह लज्जा यह शोभ भाग्य में लिखा गया कब किसको, मैं अधीन मुझको सब सहना, नाथ मुझे इतना ही कहना। अब कठोर हो वज्रदपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी, मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्य पुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा, फिर भी हटकर हाय व्रथा ही उन्हें उन्होंने था, किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। क्यों कर सिंधु करूं अपने को मैं उनकी नर नारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। देख कराल काल सा किसको कांप उठे सब भय से, गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नागदत्त जिस हय से, वह तुरंग पलित कुरंग सा नत हो गया विनय से, क्यों न गूंजती रंग भूमि फिर उनके जय जय जय से, निकला वहां कौन उन जैसा प्रबल पराक्रमकारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना, सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप बखाना, खेद किसी ने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना, भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना, उस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरे रूप रंग यदि तुझको अपना गर्व रहा है, तो उसके झूठे गौरव का तूने भार सहा है, तू परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा है, फूला दिन किस अंधकार में डूबा और बहा है, किंतु अंतरात्मा भी मेरा था क्या विकृत विकारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मैं अबला, पर वे तो विश्रुति वीर वली थे मेरे, मैं इंद्रियासक्ति
पर वे कब थे विषयों के चेरे। ऐ मेरे अर्धांगी भाव क्या विषय मात्र थे तेरे। हा अपने अंचल में किसने ये अंगार बिखेरे। है नारित्व मुक्ति में भी तो अहो विरक्ति बिहारी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी फिर उसकी क्या गति है। पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरत है। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मत है। मैं भी नहीं अनाथ जगत में मेरा भी प्रभु पति है। यदि मैं पति व्रता तो मुझको कौन भार भय भारी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। यशोधरा के भूर भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली तरस न खाओ कोई उस पर। आओ भोली भाली तुम्हें न सहना पड़ा दुख यह मुझे यही सुख आली। वधु वंश की लाज दैव ने आज मुझी पर डाली। बस जातीय सहानुभूति ही मुझ पर रहे तुम्हारी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। जाओ नाथ अमृत लाओ तुम मुझ में मेरा पानी। चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी। प्रिय तुम तपो सहूं मैं भरसक देखूं बस मैं दानी। कहां तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। तुम्हें अप्सरा विघ्न न व्यापे यशोधरा कर धारी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। सखी प्रियतम है वन में किंतु कौन इस मन में। दिव्य मूर्ति वंचित भले चर्म चक्षु गल जाएं। प्रलय पिघल कर प्रियना जो प्राणों में ढल जाएं। जैसे गंध पवन में सखी प्रियतम है वन में।

प्रतीत, यही बड़ा बल जन में, सखी प्रियतम है वन में। भक्त नहीं जाते कहीं, आते हैं भगवान। यशोधरा के अर्थ में अब भी यह अभियान। मैं निज राजभवन में, सखी प्रियतम है वन में।

हे राम, यहीं इसी आंगन में सखी प्रियतम है वन में। मरण सुंदर बन आया री, शरण मेरे मन भाया री, आली मेरे मन स्ताप से पिघला हुआ वह इस बार, रहा कराल कठोर काल सो हुआ सदै सुकुमार, नर्म सहचर सा छाया री, मरण सुंदर बन आया री, अपने हाथों किया विरह ने उसका सब श्रृंगार, पहना दिया उसे उसने मृद मानस मुक्ताहार, विरुण विहंगों ने गाया री, मरण सुंदर बन आया री, फूलों पर पद रख कूलों पर रच लहरों से रास, मंद पवन के स्पंदन पर चढ़ बढ़ आया सविलास, भाग्य ने अवसर पाया री, मरण सुंदर बन आया री, फिर भी गोपा के कपाल में कहां आज यह भोग, प्रियतम का क्या यम का भी है दुर्लभ उसे सुयोग, बनी जननी भी जाया री, मरण सुंदर बनाया री, स्वामी मुझको मरने का भी दे न गए अधिकार, जिए जल जल कर काया री, मरण सुंदर बनाया री, जलने को ही स्नेह बना उठने को ही वाष्प बना है, गिरने को ही मेह बना जलता स्नेह जलावेगा ही, फोले वाष्प फलावेगा ही, मिट्टी मेह गलावेगा ही, सब सहने को देह बना जलने को ही स्नेह बना।

मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया, हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया। सूखा कंठ पसीना छूटा, मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा, दूर गई वह छाया। मेरा ताप और तप उनका, जलती है हा जठर मही, मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा व्यथा सही। जागी किसकी बाष्प राशि, जो सूने में सोती थी, किसकी स्मृति के बीज उगे ये सृष्टि जिन्हें बोती थी। सखी वसंत से कहाँ गए वे, मैं ऊष्मा सी यहाँ रही। मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा व्यथा सही। तब मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया, हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया। सूखा कंठ पसीना छूटा, मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा, दूर गई वह छाया। मेरा ताप और तप उनका, जलती है हा जठर मही, मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा व्यथा सही। जागी किसकी बाष्प राशि, जो सूने में सोती थी।

थी, विश्व वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी। किसके भरे हृदय की धारा शतधा होकर आज बही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। उनकी शांति कांति की ज्योत्सना जगती है पल पल में, शरदा तप उनके विकास का सूचक है थल थल में। नाच उठी आशा प्रतिदल पर किरणों की झलझल में, खुला सलिल का हृदय कमल खिल हंसों के कलकल में। पर मेरे मध्यान बता क्यों तेरी मूर्छा बनी वही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। हेम पुंज हेमंत काल के इस आतप पर नारूं, प्रिय स्पर्श की पुलकावली में कैसे आज विसारूं। किंतु शिशिर ये ठंडी सांसें हाय कहां तक धारूं, तन गारूं मन मारूं पर क्या मैं जीवन भी हारूं। मेरी बांह गही स्वामी ने, मैंने उनकी छांह गही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। पेड़ों ने पत्ते तक उनका त्याग देख कर त्यागे, मेरा धुंधलापन कोहरा बन छाया सबके आगे। उनके तप के अग्नि कुंड से घर घर में हैं जागे, मेरे कंप हाय फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे। पानी जमा परंतु न मेरे खट्टे दिन का दूध दही, मैंने ही क्या सहा सभी।

आस तंत कब टूटे, दिन मुख दम के पल्लव चमके, भवने नवरस लूटे। स्वामी के सद्भाव फैलाकर फूल फूल में फूटे, उन्हें खोजने को ही मानो नूतन निर्जय झूठे। उनके श्रम के

फल सब भोगे यशोधरा की विनय यही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। कूक उठी है कोयल काली, ओ मेरे वन माली, चक्कर काट रही है रह रह सुर भी मुग्ध मतवाली। अंबर ने गहरी छानी यह भू पर दुगनी ढाली, ओ मेरे वन माली, समय स्वयं यह सजा रहा है डगर डगर में डाली। मृदु समीर सहब।

ध्यान से ले को पल की लाली, फूल उठी है हाय मान से प्राण भरी हरियाली। ओ मेरे वनमाली, ढलक न जाए अर्ध आंखों का, गिर ना जाए यह थाली, उड़ ना जाए पंछी पाखों का, आओ हे गुणशाली, ओ मेरे वनमाली। उनका यह कुंज कुटीर वही, झड़ता उड़ अंश अबीर जहां, अलि को किल कीर शिखी सब हैं, सुन चातक की रट पीव कहां। अब भी सब साज समाज वही, तब भी सब आज अनाथ यहां, सखी जा पहुंचे सुध संग कहीं, यह अंध सुगंध समीर वहां, दरक कर दिखा गया निज सार जो, हंस दाड़िम तू खिल खेल, प्रकट कर सका ना अपना प्यार जो, रो कठिन हृदय सब झेल। बलि जाऊं चात की, बलि जाऊं इस रट की, मेरे रोम रोम में आकर यह कांटे सी खटकी, भटकी हाय कहां धन की सुध, तू आशा पर अटकी, मुझसे पहले तू सनाथ हो, यही विनय इस घर की। फलों के बीज फलों में फिर आए, मेरे दिन फिरे नहाए, गए घन कह कह वार न घिर आए, वे निर्झर झिरे नहाए, मैं भी थी सखी अपने मानस की राजहंसिनी रानी,

0: यशोधरा अपनी सखी से कह रही हैं, जीवन आनंद से बीत रहा था। राजहंसनी के समान प्रियतम के साथ विहार कर रही थी, लेकिन आज ये स्वप्न सा लगता है। मेरे मन का सुख प्रियतम के वियोग में शुष्क हो गया है और मैं निराश हो गई हूँ।
1: अभी आपने सुना राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा का वाचन। आज के भाग में आपने सुना कि सिद्धार्थ के संबंधी किस तरह सिद्धार्थ के घर छोड़ने पर विलाप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यशोधरा का पश्चाताप कि अब मैं राजसी जीवन जीकर क्या करूंगी। आज ये भाग यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनांकन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, और कलाकार थे विकास अवस्थी, मनीषा चतुर्वेदी, वर्षा सिंह और वत्सला चौबे। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।